बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता, महसूस

You're listening to number one, I'm playing Bollywood's biggest hits. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. हम पॉडकास्ट के बारे में बातें करें तो आपको बता दूं कि अनफिल्टर ड्राइव सैंडी और रुज़बे के साथ में WWE फॉर्मर सुपरस्टार शेंकी सिंह, ये एक 7-foot-tall रेसलर है जिन्होंने एक स्मॉल टाउन इन हरियाणा से ग्लोबल WWE स्टेज तक ये पहुँचे हैं. और पॉडकास्ट में इन्होंने काफ़ी बातों को शेयर किया है सैंडी और रुज़बे के साथ में, तो आप ये ज़रूर सुने इनका ट्रूथ अबाउट WWE, क्या वो स्क्रिप्टेड होता है एंड व्हाट्स रियल, brutal journey of getting into that from India, life behind the scenes or injuries, risks or physical toll of entertainment wrestling. साथ ही में सलमान खान के साथ में काम करना इसके लिए कैसा रहा, द ग्रेट खाली के साथ ट्रेन करना इनके लिए कैसा रहा, ये सभी कुछ के लिए आप 5599 पर टेक्स्ट करें ड्राइव और ऑडियो और वीडियो ऑफ द एपिसोड का लिंक आपको मिल जाएगा. वीडियो प्रोडक्शन इंस्पायर्ड बाय मीडिया वर्क्स, इंस्पायर मीडिया वर्क्स दैट डू मार्केटिंग, रियल एस्टेट और इवेंट वीडियोज. आप केतन से बातें कर सकते हैं और भी जानकारी के लिए. ब्रेकफास्ट कैचअप के लिए भी ये भी पॉडकास्ट विजय और पूजा के साथ में होता है फ्रॉम द ब्रेकफास्ट शो बिट्स और कॉन्वर्सेशंस, तो आप BF टेक्स्ट करते हैं 5599 पर तो कैचअप ब्रेकफास्ट के लिए जो पॉडकास्ट है वो आपके पास लिंक आ जाएगा और सारे डिटेल्स भी आ जाएंगे आपके पास. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ.

0: rock and roll. Download Rover to listen Hum 80s Jukebox.
1: अरे सुनो, मुझे इस डोसा बैटर के साथ फ्री कंटेनर मिला।
2: फ्री कंटेनर तो अच्छा है, लेकिन डोसा कैसा था?
1: डोसा तो ठीक ही था, लेकिन कंटेनर देखो कितना अच्छा है।
2: फ्री गिफ्ट्स लोग भूल जाते हैं, असली टेस्ट के लिए ही वापस आते हैं। इंट्रोड्यूसिंग द न्यू चटनी रेंज फ्रॉम अम्मास फूड, ट्रेडिशनल कोकोनट, टैंगी टोमेटो और क्रंची पीनट चटनी, परफेक्ट विद अम्मास इडली और डोसा बैटर। अम्मास फूड, 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव, नाउ अवेलेबल एट ग्रोसरी स्टोर्स नियर यू।
3: रेडियो पे गानों की फरमाइश की जा सकती है, अपनों के नाम संदेशे भेजे जा सकते हैं, मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना। उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं। कशिश प्रीमियम बासमती राइस, ईट बेटर लिव बेटर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग इन टू www.kashishfood.co.nz। Available at all leading stores.
4: A story of love, memory and longing against the backdrop of the partition of India.
5: ये हो सकता है अपने दिल के अंदर एक लड़की को रखना जिसे 78 years से देखा तक नहीं।
4: Director Imtiaz Ali's romantic period drama मैं वापस आऊंगा, starring Diljit Dosanjh, Nasiruddin Shah, Shalmari Bagh and Vedang Raina.
5: ये प्यार जहर की तरह होता है पता है, इसकी एक भी बूंद अंदर रह गई ना आखिरी समय में चैन से मरने भी नहीं देता।
4: मैं वापस आऊंगा, नाउ शोइंग इन सिनेमास। डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फोरम फिल्म्स, रेटिंग टीबीसी।
6: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ? बोली, बस मेरा फोकस है।
7: हाँ। अच्छा
6: बताओ तुम्हारा फोकस? फोकस साडा कुछ नहीं।
7: मिसेस सिंह,
8: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन ने।
9: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन, फोकस किचन, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू। कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।
10: बॉलीवुड के सबसे बड़े हिट गाने
11: कभी भी कहीं भी।
12: गुड आफ्टरनून एवरीवन, जस्टिल जारी है ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स, बेस्ट और बेजोड़ बेहतरीन गाने, हिट और हॉट सॉन्ग्स, सिर्फ बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स हम आपके लिए लेकर आते हैं। कुछ इंटरेस्टिंग खबरें तो आपके साथ हम शेयर करते ही रहते हैं, और मैंने सोचा ये भी आपको बता दूं कि इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन का स्क्रीनशॉट लेना बहुत ज़रूरी है। कुछ अर्जेंट एक्सेस के लिए आप अगर कुछ ढूंढेंगे नहीं मिलता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। ऑफलाइन अगर आप हो जाते हैं, इंटरनेट ख़त्म हो जाता है या वाईफाई जहां पर आप जाते नहीं होता है, तो स्क्रीनशॉट लेना इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल बुकिंग नंबर्स, डायरेक्शंस या रिसीट्स फॉर क्विक एक्सेस, तो स्क्रीनशॉट आप ज़रूर ले। वन टच रूल भी अप्लाई करें अपने लाइफ में, जो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। जहाँ पर पॉसिबल हो सकता है, हैंडल एन आइटम ओनली वंस। आपको चाहे पेपर फाइल करना है या ईमेल रिप्लाई करना है या कोई भी ऑब्जेक्ट को पुट अवे करना है इमिडिएटली, तो आप वो भी करें। वन टच रूल मतलब एक चीज़ को आप पहले पूरी तरह निपटा लें। हमेशा क्या होता है कि हम सोचते हैं कि वो चीज़ हमने कर दिया है, क्योंकि जब हम करने जाते हैं तो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, दिमाग में आ जाता है कि शायद हमने कर दिया है, लेकिन बाद में रियलाइज़ करते हैं कि नहीं हुआ था। और अगर कुछ इम्पोर्टेंट हो या अर्जेंट हो तो प्रॉब्लम्स भी हो सकती है प्रोफेशनल लाइफ में, इसलिए आपको एक काम पूरी तरह से करके देन यू हैव टू मूव ऑन टू दी अदर। इसलिए वन टच रूल कभी कभी नहीं, मैं सोचता हूँ मेरे लिए अक्सर बहुत फ़ायदेमंद होता है। मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ, कुछ देर में साइंस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी लेकर आएंगे।

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: एक के बाद एक आपके फेवरेट सॉन्ग्स हम लेकर आते हैं हम पर बिकॉज वी प्ले बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ दी एफ आई एच हॉकी वीमेंस नेशनल नेशंस कप ये नॉर्थ हार्बर में आ रहे हैं फ्रॉम 15th to 21st of June और हम इज प्राउड टू ब्रिंग यू स्टिक विद हम ये आपका चांस होगा टू बी बिहाइंड द वेंटेज ब्लैक स्टिक्स वीमेन जब ये अपना टाइटल डिफेंड करेंगे ऑन होम सॉइल 8 कंट्रीज़ है वर्ल्ड क्लास हॉकी होंगे एंड वन ऑफ द बिगेस्ट इंटरनेशनल हॉकी इवेंट्स होगा जो न्यूजीलैंड में आपने देखा है 4 years अगर आपको यहाँ पर रहना है तो मतलब जाना है इस इवेंट में तो आपको हमें सुनते रहना है क्योंकि आपका फेवरेट अनाउंसर आपको कॉल करने के लिए बोलेगा फिर आपको हॉकी टेक्स्ट करना है 5599 पर फॉर योर चांस टू विन अ डबल पास टू द गेम्स और हमें स्टैंड्स को पैक करना है वी हैव टू मेक सम नॉइज और हमारे वेंटेज ब्लैक स्टिक्स वीमेन को सपोर्ट करना है टिकट्स आप hockeynz.flicket.co.nz से ले सकते हैं स्टिक विद हम और बी पार्ट ऑफ द एक्शन मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूं

0: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
1: Here at Bunnings, you can warm up any outdoor space this winter. Gas heaters are great for the backyard. It's a portable thing, so you can move it around, and we've got the fire pits, make it feel cozy and warm.
2: Secure your home with an RLEX 7-watt solar sensor LED floodlight, only $49.90. Get around a Glow Tambo steel fire pit, $98. And solid energy roundwood firewood is just $15.95.
1: Get your outdoor space winter ready for less. Bunnings Warehouse. Lowest prices are just the beginning.
3: You're listening to number one, I'm playing Bollywood's biggest hits. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ। क्या आप भी माता सीता का किरदार निभाना चाहते हैं ऑन स्टेज? तो अशोक से आज ही बातें करें, मास्टर अशोक से 021-179-5459 पर। न्यूजीलैंड आर्ट एंड कल्चर चैरिटेबल ट्रस्ट ब्रिंग्स यू श्री राम लीला, सेव द डेट, 8 अगस्त को ये होने जा रहा है और डिवाइन थिएट्रिकल एक्सपीरियंस होगा। और भी जानकारी कुछ दिनों में आपको हम देंगे। मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ, सुनते रहो हम प्लस बॉलीवुड।
4: Pajabi swag is on.

0: Just chill.
1: Aapka moment. Krish ka magic. Only on Hum.
2: वेलकम बैक एवरीवन, जस्ट चिल में आपका स्वागत है एक बार फिर. मैं क्रिश आपको वेलकम करता हूं, क्योंकि फर्स्ट आवर पर बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा है आपके साथ में. आपके साथ जो इंटरेक्शन होती है, जो गाने हम प्ले करते हैं, और भी बढ़कर और भी प्यारे इस घंटे पर भी लेकर आएंगे आपके लिए. साइंस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो मैं लाता हूँ अक्सर आपके लिए, अभी मैं आपको बताऊँगा कि ऑक्टोपस मिरर्स यूज़ करते हैं टू फाइंड फूड दे कैन नॉट सी. ये इन्फॉर्मेशन मुझे पहले शेयर करना था आपके साथ, लेकिन टाइम नहीं मिला. आज वाले प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे. वेलकम एवरीवन टू द शो. आपके लिए जारी है जस्ट चिल, और साथ ही में एक और इन्फॉर्मेशन भी मैं आपके लिए शेयर करूँगा एज टू हाउ यू कैन इम्प्रूव फोकस और कॉन्सेंट्रेशन कैसे आप और भी बेहतर बना सकते हैं इस घंटे पर. द म्यूजिकल जर्नी कॉन्टिन्यूज. गुड आफ्टरनून एवरीवन.

You're listening to number one humbling Bollywood's biggest hits. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. दिव्य शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से रामकृष्ण मंदिर 25 ऑनस्लो एवेन्यू मनुकाओ में 108 अखंड हनुमान चालीसा पाठ होने जा रहा है. ये 13 यानी 13 जून को होगा. सभी धर्म प्रेमियों को सादर आमंत्रण है. यहाँ पर स्थापना पूजा सुबह 7 से लेकर 8 बजे तक होगा ऑन द 13th ऑफ जून. फिर 8 AM टू 6:30 PM चालीसा पाठ बाय वेरियस मंडलीज और हवन और आरती होगा. प्रसाद और महाप्रसाद भी यहाँ पर आपको दिया जाएगा. और भी जानकारी के लिए आप 021-0299-1219 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आप चालीसा पाठ में भाग लेना चाहते हैं. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ.

0: भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने।
1: अरे सुनो, मुझे इस डोसा बैटर के साथ फ्री कंटेनर मिला।
2: फ्री कंटेनर तो अच्छा है, लेकिन डोसा कैसा था?
1: डोसा तो ठीक ही था, लेकिन कंटेनर देखो कितना अच्छा है।
2: फ्री गिफ्ट्स लोग भूल जाते हैं, असली टेस्ट के लिए ही वापस आते हैं।
3: इंट्रोड्यूसिंग द न्यू चटनी रेंज फ्रॉम अम्मास फूड। ट्रेडिशनल कोकोनट, टैंगी टोमेटो और क्रंची पीनट चटनी, परफेक्ट विद अम्मास इडली और डोसा बैटर। अम्मास फूड, 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव। नाउ अवेलेबल एट ग्रोसरी स्टोर्स नियर यू।

0: Toy plus 24-hour mobile service. For bulk orders, call Ron on 022-175-3941 or visit rpstires.co.nz or their Facebook page. RPS Tires. Drive safe, drive smart.
1: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
2: Indelible Homes, your building expert. Indelible Homes.
3: Non-stop Bollywood.
4: Hum.
3: Playing Bollywood's biggest hits.
5: Just chill.
6: गुड आफ्टरनून एवरी वन, जस्ट चिल आप सुन रहे हैं और मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. प्यारे गाने आपके लिए हम पेश करते रहेंगे एक के बाद एक, आपको बस हमें सुनते रहना है. इंटरेस्टिंग खबरें भी मैं लेकर आया हूँ. क्या आपको पता है कि ऑक्टोपस मिरर्स इस्तेमाल कर सकते हैं टू फाइंड फूड दे कैन नॉट सी. डार्थमाउथ कॉलेज ने 5 जून को इसी साल ये रिसर्च को पब्लिश किया है जहाँ पर ऑक्टोपस ने सीखा है टू यूज़ मिरर्स टू लोकेट हिडन फूड. और ये हिडन एबिलिटी पहले मेनली वर्टेब्रेट्स में देखा गया था. एनिमल्स पहले सक्सेसफुली रिफ्लेक्टेड इन्फॉर्मेशन का इंटरप्रिटेशन कर लेते थे और उनका इंटेलिजेंस इससे पता चलता था. अब ये जो फाइंडिंग है ऑक्टोपस को लेकर न्यू एविडेंस सामने लाता है ऑफ एडवांस्ड सेनलोफोड इंटेलिजेंस. और मिरर बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग हाईलाइट ये करता है कि ऑक्टोपस में भी काफ़ी सोफिस्टिकेटेड और एडवांस्ड कॉग्निशन अबिलिटीज़ है. तो ऑक्टोपस के बारे में तो हमने पहले सुना था ये कितना इंटेलिजेंट क्रीचर है, लेकिन अभी अनदर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस इनमें है जबकि ये हिडन अबिलिटी इनमें पाया गया है. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ, जस्ट चिल आपके लिए जारी.

सुनते रहो जस्ट चिल, क्रिश के साथ है। आज संडे है, 14th June है। अगर आपका भी जन्मदिन है, अ वेरी हैप्पी बर्थडे एवरीवन। मैं गॉड ब्लेस यू और अबंडेंस ऑफ हैप्पीनेस आपको मिले। बेस्ट विशेस हम टीम हम की ओर से भी आपको देना चाहेंगे। टू ऑल आवर लिसनर्स, रोवर पर आप हमें सुन रहे हैं, अ बिग शाउट आउट टू यू। और ऑनलाइन लिसनर्स के लिए भी अगला गाना।

0: Bollywood.
1: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
2: Ladies and gentlemen,
0: unfiltered with Sandy and Rizvi. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished, Instagram friendly stories हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं.

Just chill. You are listening to number one hum playing Bollywood's biggest hits. Krish ka saath hai aur bhi samajik suchnaen aapke liye. Shri Ram Mandir 11 Brick Street Henderson mein part utsav hone ja raha hai 11th anniversary celebrations ke upaksh mein. Ye 10th to 14th June hoga. Key events mein Wednesday ko 10th June ko hoga Ganga aur Gau Puja. Aur Tuesday 11th June ko Ganesh aur Devi Yagna hoga yahan par. 12th June ko Rudra Yagna hone ja raha hai yahan par. और साथ ही में 13th जून को विष्णु यज्ञ और 14th जून को पूजा और अभिषेक यहाँ पर होगा और सभी दिनों पर महाप्रसाद भी दिया जाएगा. और भी जानकारी के लिए आप मंदिर के प्रिस्ट को कांटेक्ट कर सकते हैं 09836 4647 पर. मैं कृष आपके साथ दे रहा हूँ.

0: moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: Good afternoon, everyone. Welcome back to the show. आपके लिए जारी है संडे जस्ट चिल और चिल करते रहो क्योंकि इंटरेस्टिंग खबरें अब तक हम पहुंचाएंगे और जस्ट चिल 6 बजे तक चलता रहेगा और मैं क्रिश आपके साथ दूंगा. आज 14 जून है और ब्यूटीफुल ये जो सफ़र हमारे साथ है आपका साथ मिल रहा है तो और भी हसीन बन गया है और ऐसे ही आप हमारा साथ देते रहिएगा. फिलहाल आपके लिए हम शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत ही वंडरफुल सेगमेंट विच इज़ कॉल्ड टॉक एंड ट्यून्स. देर ना करते हुए लेट्स गेट इनटू इट.
0: टॉक्स एंड ट्यून्स लाइव इन न्यूजीलैंड ऑन सैटरडे ब्रेकफास्ट.
1: वेलकम एवरीवन. टोकन ट्यून्स में आपका स्वागत है और ये जो टोकन ट्यून्स सेगमेंट होता है कुछ ऐसी बातें हम आपके लिए कर लेकर आते हैं स्पेशली जब आप नए होते हैं कंट्री में कैसे कुछ टिप्स आपके लिए ज़रूरत हो बन सकती है या आप कुछ सीख सकते हैं जो चीज़ हम आपको बताएंगे जो हमने सीखा है अपने एक्सपीरियंस के दौरान थोड़ा बहुत रिसर्च किया है कि क्या हमें जानना चाहिए तो वो आपके साथ हम शेयर करेंगे. अगर आप न्यू हैं प्रैक्टिकल टिप्स जब आप यहाँ रिसेंटली शिफ्ट हुए हैं और न्यूजीलैंड आपका अभी भी आप यहाँ पर आए हैं तो कुछ प्रैक्टिकल टिप्स आपके साथ शेयर करेंगे. कुछ गानों को लेकर बातें भी करेंगे जिससे हम रिलेट कर पाएंगे या जिससे हमारी यादें जुड़ी है. इस सेगमेंट में आपका स्वागत है. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ.

प्रैक्टिकल टिप्स की बात किया जाए तो कहा गया है कि लोकल कस्टम्स को जानना बहुत ज़रूरी है। आप ऑब्जर्व करें कि कैसे लोगों को ग्रीट किया जाता है, कैसे आप क्यू मतलब लाइन बनाते हैं अगर कहीं पर आप पेमेंट वगैरह करने जाते हैं, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होता है कि आप लाइन ब्रेक ना करें। इवन ट्रैफिक में भी जब हम होते हैं, कुछ लोग ट्रैफिक ब्रेक करके आप निकलना चाहते हैं तो शायद वो बहुत अच्छी आदतें नहीं होती है। पर्सनली आई थिंक मेरे लिए मैं वो नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है लोग ऑब्जर्व करते हैं एंड दे डू गेट डिसअपॉइंटेड अगर हम ऐसा करते हैं। कम्युनिकेट करना बहुत ही अच्छी बात है, जितना आप करेंगे उतना आप जानेंगे लोगों के बारे में, और अंडरस्टैंडिंग लोकल एटिकेट आपको फास्टर सेटल होने में मदद करेगा और मिसअंडरस्टैंडिंग्स अवॉइड करेगा। सपोर्ट नेटवर्क अपने अराउंड बनाना बहुत ही ज़रूरी है, इस पर बातें करेंगे बहुत ही जल्दी। आप सुन रहे हैं टॉक एंड ट्यून्स ऑन संडे जस्ट चिल क्रिश के साथ।

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
3: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप। West side है ना, west side of Auckland है ये। We have lots of fun basically with the cold weather।
2: कौन है?
3: Hunua और Waitakere।
2: अच्छा Hunua west में?
3: किधर है Hunua?
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja,
4: brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
0: Weekdays 6 to 10 a.m.
5: What kind of businesses run on business fiber? Businesses with no time for downtime, businesses that could flatline when deadlines are missed, and businesses that simply can't afford to be offline. If you need fast restoration when there's a network outage, get your business running on business fiber.
6: Winter ke liye taiyar ho jao with Mitre 10 Mega Westgate or Henderson. With great deals across heating, outdoor gear or home essentials. Plus, spend $20 in-store, enter online and go in the draw to win 5 grand. Sirf June 30th tak. T's and C's apply.
7: Beating pump prices is easy with 40% off bus, train and ferry fares for tertiary students.
8: Thanks, driver.
7: With free off-peak travel for seniors who have hot gold cards.
9: Thank you, driver.
7: 40% off and free weekend travel for kids under 16.
8: Thank you, driver.
7: And 50% off for community service card holders.
9: Thanks, driver.
7: Auckland Transport has 7 different fare discounts to make getting around even more affordable. See if you can save by searching AT Fair Discounts.
10: Buddy, no!
11: Happy is finding the only mud puddle in the park. Animates, we make happy happen.
12: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा। न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काऊ घी। जब खाने में होगी इतनी शुद्धता, इतना स्वाद, तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा।
10: मुझे भी।
12: कशिश प्योर देसी घी, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड। खुशियाँ पकाए, खुशियाँ खिलाए।
13: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ? बोली, बस मेरा फोकस है।
14: हाँ। अच्छा
13: बताओ, तो आड़ा फोकस फोकस साड़ा कुछ नहीं।
14: मिसेस सिंह,
15: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन।

0: Get ready, New Zealand. Hum is proud to bring you Stick with Hum, your chance to support the Vantage Black Sticks women at the upcoming FIH Hockey Women's Nations Cup. Experience world-class international hockey right here at home as top teams battle for glory. Plus, you could win a double pass to the games. Simply listen for the cue to call from your announcer, then text hockey to 5599 to enter. Stick with Hum and get behind our Vantage Black Sticks women.
1: दादी के हाथ की चूरी हो या माँ के हाथ के पराठे, सबका फेवरेट हलवा हो या तवे पे फूली हुई रोटी, हर याद में बसी है कशिश चक्की फ्रेश आटा की वही मीठी खुशबू जो दिल भी जोड़े रिश्ते भी। Eat better, live better now with Kashish Chakki Fresh Atta and Multigrain Atta. Available in all leading stores nationwide. www.kashishfoods.co.nz.
2: At Bunnings, you can keep the cold air out for less with an adored fabric draft stopper, just $10.95. It doesn't cost a lot to winterproof your home. Shop online or in-store. Bunnings Warehouse. Lowest prices are just the beginning.
3: Fall in love with your home again with an ANZ Reno Loan. A home loan top-up of up to $50,000 at just 2.5% per annum, fixed for 3 years. Minimum 20% equity eligibility, lending rules, terms and fees apply. Available for a limited time. ANZ, we do how.
4: Everything you love about Auckland is about to get closer than ever before when the City Rail Link opens this year. New stations will make getting into the city and across Auckland easier and more convenient. Because all those trains, buses and ferries, they're connecting to make one super simple network. Stay out with the family, explore somewhere new. Heading to the game? Sweet as! The new City Rail Link will make it all happen. Search ATCRL to discover more. So, where will you go?
5: The beat of Bollywood.
6: World's best, hamari good brands nahi hai.
5: Tunes, life in New Zealand on Saturday breakfast.
7: Sunday just chill जारी है और काफी लोगों के लिए हम जानकारी लेकर आते हैं Talk in Tunes में और खासतौर पर अभी practical tips हम बता रहे हैं उन लोगों के लिए जो अभी recently New Zealand shift हुए हैं किस तरह से आप जल्दी सेटल हो पाएंगे ये प्रैक्टिकल टिप्स हम ला रहे हैं. सपोर्ट नेटवर्क बनाना बहुत ही ज़रूरी है. कम्युनिटी ग्रुप्स आप ज्वाइन करें, स्पोर्ट्स क्लब या कल्चरल एसोसिएशंस, कोई वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन भी आप ज्वाइन करते हैं तो फ्रेंडशिप बनाना काफ़ी ईजी होता है. ट्रांजिशन में आना ज़रूरी होता है क्योंकि आप लोगों से मिलेंगे, बातों से आप बहुत कुछ सीखेंगे भी यहाँ के बारे में, लोकली कैसे रहते हैं, कहाँ पर चीज़ें हैं, कहाँ पर आपका जो कम्युनिटी रहता है उनके साथ इंटरेक्ट करना बहुत अच्छा रहता है. पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी अंडरस्टैंड करना बहुत ही ज़रूरी है. इस पर बहुत ही जल्दी एक डिस्कशन हम करेंगे आपके लिए. संडे टोकन ट्यून्स जारी है और मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. दिन में शाम 6 तक हमारा साथ रहेगा. वेलकम बैक एवरीवन.

0: कुछ और इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल टिप्स आपके साथ शेयर कर लेता हूँ संडे टॉक इन ट्यून्स में, उन लोगों के लिए जो अभी रिसेंटली न्यूजीलैंड शिफ्ट हुए हैं और एडजस्ट हो रहे हैं यहाँ पर. पब्लिक ट्रांसपोर्ट अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है आपको, जानना अगर जान जाएंगे बसेस, ट्रेन्स और फेरीज किस तरह से काम करते हैं आपके एरिया में, तो सिग्निफिकेंट सेविंग्स भी हो सकता है अगर आप आते हैं तो शायद तुरंत कार लेना मुश्किल होता है. आप थोड़ा सेव करेंगे, थोड़ा बजट को देखकर आप कार लेंगे और जिस टाइम पर आप ले सकते हैं, तो उससे पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में अंडरस्टैंड करना और इस्तेमाल करना शायद ज़रूरी है. एमरजेंसी नंबर्स भी जानना ज़रूरी है कि कौन से नंबर पर आपको एमरजेंसी सर्विसेज मिल सकते हैं, और फाइनेंसेस को केयरफुल मैनेज करना, ये भी एक और बहुत इंटरेस्टिंग टिप है जिस पर हम बात करेंगे आपके लिए.
1: में चाहना चाहते हैं तो कशिका से प्रमोशन क्यों नहीं करवाते हैं. चाहे आप हम के दिन चैट 20 को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माई एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी. बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशंस, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव गॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड. कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755. मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स.
2: डू यू नो व्हाई सो मेनी ऑफ योर नेबर्स आर इंस्टॉलिंग अ शावर डोम शावर टॉप? जस्ट watch the demo video at showerdome.co.nz. You'll see how a shower dome stops steam misting up your mirrors, stops mold and mildew, and saves energy. No extractor fans required. The best thing you can do for your home is install a shower dome. Available now from your local installer.
3: showerdome.co.nz.
4: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
5: Indelible Homes, your building expert.
6: Winter's here, and so much to do at home. Fix the leak, clear the gutters, service the heat pump. When the to-do list calls, AA Home can help tackle all those winter jobs. Search AA Home to book a job today. Your trusted tradies on tap.
7: Adore your floor for less with Flooring Extra's Walk Into Winter Sale. Here's your chance to save on their range of best-selling carpet and hard flooring. Discover the sale at your local Flooring Extra today. Flooring.

0: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा। न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काऊ घी, जब खाने में होगी इतनी शुद्धता, इतना स्वाद, तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा।
1: मुझे भी।
0: कशिश प्योर देसी घी, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड। खुशियाँ पकाए, खुशियाँ खिलाए।

0: news, life in New Zealand on Saturday Breakfast. Aapka Moment, Krish ka Magic, only on Hum.
1: संडे जस्टियल जारी है और मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ और इस सेगमेंट में भी आपका स्वागत है. संडे टॉक एंड ट्यून्स जो लास्ट आवर पर शुरू हुआ था और आपसे बातें हो रही है. कुछ ऐसे प्यारे गाने भी आपके लिए हम पेश कर रहे हैं जिसको हम सुनते आए हैं और आई एम श्योर आपको भी पसंद आ रहा होगा क्योंकि वो गाने भी हम चुन कर लाते हैं जो पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं हमारे लिए. इस घंटे पर भी कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देंगे फॉर समवन हु इज़ जस्ट मूव्ड इन टू न्यूजीलैंड. आप न्यू हैं इस देश में तो कुछ ऐसे टिप्स शायद आपका इस्तेमाल करें आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है. आप ज़रूर असेस करें खुद ही कि कौन सा टिप आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ. इस घंटे पर भी आपका स्वागत है. कुछ और प्यारे गाने सुनाते हैं और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन बहुत ही जल्दी मैं आपके साथ शेयर करूँगा. चिल करते रहो. एनर्जाइज आपको होना ज़रूरी है, रिचार्ज होना ज़रूरी है बिकॉज अ वीक द होल बिजी वीक जो आपके लाइफ में मंडे टू फ्राइडे होता है वो इज़ फास्ट अप्रोचिंग. तो आप आज आराम करते रहो और यहाँ से ऐसे गाने हम पेश करेंगे जो आपको चिल कराएंगे. संडे जस्ट चिल जारी है क्रिश के साथ.

इतिहास की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है। मेरी दुनिया अबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

You're listening to number one, humping Bollywood's biggest hits. Main Krish aapke saath de raha hoon. Indian Ink Theatre Company presents Balloon Dog. Ye ek award-winning performer hai, Jacob Rajan, jo abhi stage par aapke liye lekar aayenge in the world premiere of Balloon Dog, jo ek deeply moving aur timely new production hai, jo Rabindranath Tagore ki kahani Kabuliwala se prabhavit hai. Aur 21st century mein iski setting hai is kahani ki, beautifully tender tale, jisme unexpected friendship between a 5-year-old girl aur ek lonely migrant worker के बीच में होता है. और कहा गया है कि सोल्ड आउट प्रीव्यू सीजन के बाद इंडियन इंक्स लेटेस्ट थिएट्रिकल मास्टरपीस में ह्यूमर, हार्ट, लाइव ओरिजिनल म्यूजिक, डांस और प्योर थिएट्रिकल मैजिक होने जा रहा है, जो बहुत आपको आगे तक लेकर जाएगा, जिसमें रिजिलियंस और ह्यूमैनिटी देखने का मौका मिलेगा, करेज, कनेक्शन और सीइंग वन अनदर बियॉन्ड कल्चर, क्लास एंड सर्कमस्टांस. ये क्यू थिएटर इन ऑकलैंड में होगा 3rd to 20th of June, तो आप ये मिस ना करें. दिस इज़ गोइंग टू बी एन अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस. टिकट्स के लिए iticket.co.nz आप विजिट

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: सिर्फ रोवा पर।
1: दादी के हाथ की चूरी हो या माँ के हाथ के पराठे, सबका फेवरेट हलवा हो या तवे पे फूली हुई रोटी, हर याद में बसी है कशिश चक्की फ्रेश आटा की वही मीठी खुशबू जो दिल भी जोड़े रिश्ते भी। Eat better, live better now with Kashish Chakki Fresh Atta and Multigrain Atta. Available in all leading stores nationwide. www.kashishfoods.co.nz.
2: Thinking about becoming a teacher? Visit the Ministry of Education's Become a Teacher store at the Auckland Showgrounds on the 16th and 17th of June. Discover what teaching involves, explore your study options and find out where a career in teaching could take you.
3: Get ready to save like a champion at Briscoe's with an incredible 60% off all Manchester and massive savings throughout the store. Save like a champion with 60% off all Manchester in Sunday at Briscoe's. See online for T's and C's.
4: Oh my, oh my, Great South Road, greater than ever.
5: South Auckland's buses just became a lot better.
4: Weymouth Road, way better buses.
5: With better bus routes, more frequent buses, more early morning and late night buses and more.
4: Woody, no worries. MIT, A-OK.
5: Search AT Better South Auckland Buses for details.
4: Airport, got your transport.
5: Then turn up and go.
0: Non-stop Bollywood. Hum. Playing Bollywood's biggest hits.
6: संडे जस्टिल जारी है और आपके लिए संडे टॉक एंड ट्यून्स सेगमेंट भी चल रहा है, अभी 4 बजे तक ये चलेगा। कुछ इंटरेस्टिंग साइंस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी लेकर आते हैं। ज़रा सोचिए, एक टाइनी एक्सरे टेलीस्कोप अब आगे चलकर अनलॉक करेगा मून्स हिडन केमिस्ट्री। लूना मिशन सिमुलेशन टीम ने 6 जून को ये रिसर्च पब्लिश किया है, जहाँ पर साइंटिस्ट ने प्रपोज किया है एक लाइट वेट एक्सरे टेलीस्कोप जो लूना एबिट के लिए काम में लाया जाएगा। सिमुलेशन से ये मैप होगा कि मून्स केमिस्ट्री क्या है ग्लोबली, और ऐसे मैप्स रिवील करेंगे मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन इन अनप्रेसिडेंटेड डिटेल। और कहा गया है कि ये इंस्ट्रूमेंट बहुत ही कॉम्पैक्ट और लाइट वेट रहेगा और रिलेटिवली लो कॉस्ट पर बनाया जा सकता है, और इससे लूना एक्सप्लोरेशन को सिग्निफिकेंटली एडवांस भी किया जा सकता है। मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ, इंटरेस्टिंग डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। प्रैक्टिकल टिप्स फॉर दोज जो अभी नए हैं इस देश में, वो भी आपके लिए हम लेकर आएंगे बहुत ही जल्दी। जस्ट चिल जारी है।

0: जब से मेरे
1: Talks and Tunes on Saturday Breakfast.
2: You're listening to number one hum playing Bollywood's biggest hits. कुछ interesting events पर जानकारी तो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे. इसके लिए बस आप हमें सुनते रहो, क्योंकि बहुत ही जल्दी हम आपके आपको बताएंगे कि कहां कहां पर और सामाजिक सूचनाएं हो रहे हैं जिसमें आप भाग ले पाएंगे. 10 practical tips की बात किया जाए तो manage your finances carefully, ये बहुत ज़रूरी होता है. यहाँ पर अपने expenses को track करना during the first few months बहुत ज़रूरी है. New arrivals काफ़ी underestimate कर सकते हैं कॉस्ट को, जैसे रेंट, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस और यूटिलिटीज़. नए देश में अलग अलग खर्चे भी बहुत होते हैं, कुछ ज़रूरतमंद खर्चे भी होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हेल्थ इंश्योरेंस लोग रखना चाहते हैं यहाँ पर. तो इन सभी चीज़ों के लिए आप अपना मैनेज करें फाइनेंसेस केयरफुली. अगर इंग्लिश थोड़ी वीक है तो आप ये भी इम्प्रूव करें. बेसिक इम्प्रूवमेंट इन स्पीकिंग और लिसनिंग भी बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है. आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा सकता है जब आप जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं या नए लोगों से मिलते हैं, उनसे कम्युनिकेट करना बहुत ही आसान हो जाता है. कृष का साथ है.

0: tunes, life in New Zealand on Saturday breakfast.
1: Sunday talk in tunes जारी है और मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ. प्यारे गाने आपके लिए मैं एक बाद एक पेश करूंगा. आज संडे है, 14 जून है, आपका जन्मदिन है, स्पेशल डे है. बहुत सारी बेस्ट विशेज हम की ओर से हम आपको देना चाहेंगे. अगर आप अभी ट्रेवलिंग कर रहे हैं तो केयरफुल रहिएगा. अटेंशन पूरी तरह से रास्तों पर होनी चाहिए, आपके ड्राइविंग पर होने चाहिए. केयरफुल ड्राइविंग बहुत ज़रूरी है और ध्यान से आप चलाएं, सेफली अपने मंजिल तक पहुँचे. बस यही बेस्ट विशेज आपको हम देना चाहेंगे. और जितने लोग रोवा पर सुन रहे हैं आपको भी याद करते हैं. ऑनलाइन लिसनर्स आप कैसे हैं, जहाँ पर भी आप हैं आपको हम याद कर रहे हैं अगले गाने पर. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ.

0: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
1: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा। न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काऊ घी। जब खाने में होगी इतनी शुद्धता इतना स्वाद तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा।
2: मुझे भी।
1: कशिश प्योर देसी घी अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड। खुशियाँ पकाए खुशियाँ खिलाए।
3: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम।
4: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है जैसे कि क्रैकिंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
3: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
4: और पता है मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
3: और दैट्स नॉट गुड। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
5: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18।
6: Nissan Big Deals सिर्फ 22 जून तक। Select new Navara models पर पाइए $5,000 तक की बचत plus accessories भी। Take advantage with the big one on X-Trail and discover the Patrol V8 backed by Nissan's up to 10-year warranty. T's and C's apply.
7: हम time check. हम news brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
8: Good afternoon to you. I'm Jeff Bryan with the latest at 4. US President Donald Trump says an agreement with Iran is scheduled to be signed tomorrow and that the signing would trigger the reopening of the Strait of Hormuz. If signed, it will kick off a new 60-day period of negotiations. What Iranian officials have said, however, about the terms of the agreement has differed from US descriptions. National's finance spokesperson Nicola Willis is accusing Labour of a hidden bill. Willis is alleging Labour is short $18.2 billion to fund what she has interpreted as policy positions. And New Zealand First Leader Winston Peters has been speaking in Cambridge. He's renewed his opposition to the India Free Trade Agreement signed in April. A blossoming rural sector has delivered the strongest field days event in years. Organiser Brett Beagley says the pressure is on to outperform themselves next year.
9: They're taking their time out of their day to come and visit us, so we just want to make sure that people get the best possible experience they can.
8: A woman who was attacked by a shark at Sydney's Coogee Beach yesterday remains in a critical but stable condition. The 35-year-old suffered life-threatening injuries to her lower leg and arms. In sport, the New York Knicks, they are NBA champions after another dramatic come-from-behind win over the San Antonio Spurs on Sky Sport.
10: It's over! Knick fans, this is not a dream! Your long, long wait has ended! After 53 years, the Knicks are finally NBA champions once again!
8: They've taken Game 5, 94-90, bouncing back from a 15-point third-quarter deficit to take a title-winning 4-1 lead in the series. And in football updates with Hisense at the FIFA World Cup, Scotland holding on to beat Haiti 1-0.
7: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill.
11: Playing Bollywood's biggest hits.
12: Put your head to Gandhi.
7: वीक का फिल्मी तड़का।
13: वेलकम टू द फैमिली।
14: सैटरडे बॉलीवुड बस।
15: सब कुछ आपका ही है।
7: आपका मोमेंट, क्रिश का मैजिक, ओनली ऑन हम।
16: वेलकम बैक एवरीवन। संडे जस्टियल जारी है और मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ। अभी आपके लिए शुरू करने जा रहे हैं हम संडे फिल्मी तड़का, मतलब फिल्मी जानकारी लेकर आते हैं। बॉलीवुड में क्या कुछ हो रहा है, आपके फेवरेट स्टार्स क्या कुछ कर रहे हैं, ये भी आपके लिए मैं शामिल करने जा रहा हूँ। जून 2026 बिगेस्ट बॉक्स ऑफिस क्लैश जो होगा, इस पर जानकारी। 9 मेजर फिल्म रिलीज होंगे इन 1 मंथ, मैं आपको इस पर जानकारी दूंगा। सलमान खान ओपन्स अप अबाउट सीरियस हेल्थ इशूज़, ये भी जानकारी आपके लिए है जो आपके साथ हम शेयर करेंगे. नाना पाटेकर चूज अ सिंपल विलेज लाइफ, इस पर भी एक जानकारी हमारे पास है जो आपके साथ हम शेयर करेंगे. आर माधवन रियल लाइफ लव स्टोरी गोज वायरल के बारे में जानकारी इसी घंटे पर. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ, बताने के लिए बहुत कुछ है. जैसे ही समय मिलता है हम आपके साथ शेयर करेंगे वो तमाम इन्फॉर्मेशन. याद रहे सामाजिक सूचनाएं भी हमारे पास है जो इसी घंटे पर हम लेकर आएंगे. अनदर टू आवर्स टू गो, 6 PM तक मैं आपका साथ दूंगा जस्ट चिल में.

संडे फिल्मी तड़का में शुरू करते हैं जून 2026 बिगेस्ट बॉक्स ऑफिस क्लैश जो होने जा रहा है. बॉलीवुड अभी मैसिव रिलीज रश फेस कर रहा है. 9 मेजर फिल्म्स इन 1 मंथ में रिलीज होगा, जिसमें इंक्लूडेड है टाइटल्स लाइक कॉकटेल 2 एंड वेलकम टू द जंगल. और ट्रेड एक्सपर्ट्स का कहना है कि इट कुड लीड टू स्क्रीन फाइट्स एंड स्प्लिट अर्निंग्स बैडली, क्योंकि इतने सारे जो फिल्में हैं के बाद एक रिलीज़ होगी और एक महीने में अगर 9 रिलीज़ होंगे, कॉकटेल एक तरफ तो वहीं पर वेलकम टू द जंगल अक्षय कुमार की फिल्म दूसरी तरफ, तो बहुत ही बड़ा क्लैश ये होने जा रहा है. और इस टाइम तो मैं व्हाट वी रियलाइज्ड इज कि काफ़ी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स अपने फिल्म के डेज को खिसका भी नहीं रहे. दे वुड लाइक टू कीप इट देयर. और अब तो सिर्फ क्लैश ही डिसाइड करेगा कि ऑडियंस किन फिल्मों को पसंद करती है. कृष के साथ है

0: अरे सुनो, मुझे इस डोसा बैटर के साथ फ्री कंटेनर मिला।
1: फ्री कंटेनर तो अच्छा है, लेकिन डोसा कैसा था?
0: डोसा तो ठीक ही था, लेकिन कंटेनर देखो कितना अच्छा है।
1: फ्री गिफ्ट्स लोग भूल जाते हैं, असली टेस्ट के लिए ही वापस आते हैं।
2: इंट्रोड्यूसिंग द न्यू चटनी रेंज फ्रॉम अम्मास फूड, ट्रेडिशनल कोकोनट टैंगी टोमेटो और क्रंची पीनट चटनी, परफेक्ट विद अम्मास इडली और डोसा बैटर। अम्मास फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव, नाउ अवेलेबल एट ग्रोसरी स्टोर्स नियर यू।
3: बाढ़ किसी वक्त भी आ सकती है, क्या आप तैयार हैं? बारिश शुरू होने का इंतजार ना करें, गटरों को साफ रखें, खुली चीजों को बांध लें, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए इमरजेंसी प्लान तैयार रखें। अभी की गई तैयारी बाद के तनाव से बचा सकती है। तूफान से आगे रहें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। अधिक जानकारी के लिए विजिट aucklandemergencymanagement.govt.nz/floods।
4: A story of love, memory and longing against the backdrop of the partition of India.
5: ये हो सकता है अपने दिल के अंदर एक लड़की को रखना जिसे 78 years से देखा तक नहीं।
4: Director Imtiaz Ali's romantic period drama मैं वापस आऊंगा, starring Diljit Dosanjh, Nasiruddin Shah, Shalmari Bagh and Vedang Raina।
5: ये प्यार जहर की तरह होता है पता है, इसकी एक भी बूंद अंदर रह गई ना तो ये आखिरी समय में चैन से मरने भी नहीं देता।
4: मैं वापस आऊंगा, now showing in cinemas. Distribution partner Forum Films. Rating TBC.
6: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ? बोली, बस मेरा फोकस है।
7: हाँ। अच्छा
6: बताओ तो आड़ा फोकस फोकस साड़ा कुछ नहीं।
7: मिसेस सिंह
8: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
9: मॉडर्न क्लासिक शेकर स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड ओटाहू, कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।
10: नॉनस्टॉप बॉलीवुड,
11: हम जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।
10: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स।
12: You're listening to number one, Hum Playing Bollywood's Biggest Hits. Bollywood Sunday filmi tadka jari hai aapke liye. Salman Khan opens up about serious health issues. Salman ne reveal kiya hai ki he's battling a brain aneurysm and AVM. Lekin inhone kaha hai ki ye phir bhi kaam karte rahenge despite the condition. Aur fans ne praise kiya hai inke courage ko. Kaha gaya hai ki... ये इस पर काम कर रहे हैं अपने मेडिकल कंडीशन पर, लेकिन काम अपने फिल्मों पर ये नहीं छोड़ेंगे। नाना पाटेकर ने एक सिंपल विलेज लाइफ को चुना है, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और न्यूज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा बहुत ही जल्दी। फिल्मी तड़का जारी है, संडे जस्टिल प्रोग्राम में मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ।

संडे जस्ट चिल में संडे फिल्मी तड़का आपके लिए जारी है, जिसमें आपके लिए बॉलीवुड न्यूज़ हम लेकर आते हैं। वेटरन एक्टर नाना पाटेकर वायरल हो चुके हैं जब इन्होंने कहा कि ये बॉलीवुड ग्लैमर को छोड़कर एक सिंपल शांत पीसफुल विलेज लाइफ पर जी फोकस कर रहे हैं, और इन्होंने कहा कि सिंप्लिसिटी एंड वैल्यूज़ को ये चुन रहे हैं, क्योंकि ग्लिट्स एंड ग्लैमर की दुनिया बॉलीवुड तो देता है लेकिन शायद पीस छीन लेता है, क्योंकि आप हमेशा ऑन द गो होते हो, दिमाग भी आपका चलता रहता है, लेकिन ज़रा सोचो उन सभी चीज़ से दूर आप जाकर एक शांत और पीसफुल वातावरण में रहते हो, एक ऐसे गाँव में जहाँ पर सिंप्लिसिटी है, ना खेत का खाना है, खेतों में काम है, और चार लोगों से बैठ के बातें करना बहुत आरामदायक ज़िंदगी होता है जो लोग रिटायर होने के टाइम सोचते हैं, और आई थिंक वही नाना पाटेकर ने अपनाया है। संडे फिल्मी तड़का जारी है, मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ।

0: comes with modern designs. With a 10-year master builder guarantee, awards pour in.
1: And award goes to Indelible Homes.
0: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favourite master builder.
2: Kahani of Indelible Homes.
3: Playing Bollywood's biggest hits.
4: Put your head to Gandhi.
5: वीक का फिल्मी तड़का.
6: वेलकम टू द फैमिली.
7: सैटरडे बॉलीवुड बस.
8: सब कुछ आपका ही है.
9: You're listening to number one, Humpling Bollywood's Biggest Hits. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. दिव्य शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से रामकृष्ण मंदिर 25 ऑनस्लो एवेन्यू मनुकाओ में 108 अखंड हनुमान चालीसा पाठ होने जा रहा है. ये 13 यानी 13th जून को होगा. सभी धर्म प्रेमियों को सादर आमंत्रण है. यहाँ पर स्थापना पूजा सुबह 7 से लेकर 8 बजे तक होगा ऑन द 13th ऑफ जून. फिर 8 AM टू 6:30 PM चालीसा पाठ बाय वेरियस मंडलीज और हवन और आरती होगा. प्रसाद और महाप्रसाद भी यहाँ पर आपको दिया जाएगा. और भी जानकारी के लिए आप 021-0299-1219 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आप चालीसा पाठ में भाग लेना चाहते हैं. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ.
10: कभी उसे नूर नूर कहता हूँ,

0: संडे फिल्मी तड़का में और भी इंटरेस्टिंग खबरें आप तक हम लेकर आते हैं। मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ, जस्टियल जारी है आपके लिए। आर माधवन रियल लाइफ लव स्टोरी गोज वायरल। आर माधवन और उनकी पत्नी सरिता बिरजे की जर्नी, 8 साल की डेटिंग और 27 इयर्स ऑफ मैरिज अब वाइडली शेयर किया जा रहा है एज रियल लाइफ बॉलीवुड लव स्टोरी, और फैंस बहुत प्यार दिखा रहे हैं ये खुलासा को लेकर और बहुत प्यार आर माधवन को दे रहे हैं। आपको पता है कि आर माधवन बॉलीवुड में बहुत फेमस है और इक्वली साउथ की सिनेमा में भी ये काफ़ी काम कर चुके हैं और वहाँ के ऑडियंस भी इनको बेहद पसंद करते हैं, तो ये पूरे इंडिया में बहुत फेमस है। और इनका जो लव स्टोरी अभी इन्होंने शेयर किया है, रियल लाइफ लव स्टोरी को लोगों ने बहुत प्यार दिया है जब ये वायरल हो चुका है। AI बॉलीवुड ट्विस्ट ऑन हैरी पॉटर, एक AI वीडियो दिखाया जा रहा है जिसमें बॉलीवुड एक्टर्स हैरी पॉटर्स के कैरेक्टर्स निभा रहे हैं, जैसे रणबीर कपूर, सैफ अली खान, विद्या बालन। ये ऑनलाइन ट्रेंड कर रहा है और वायरल हो चुका है और लोग ये भी पसंद कर रहे हैं फॉर अ चेंज। मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ, संडे फिल्मी तड़का आपके लिए जारी है।
1: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पी, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती है रॉ, इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के।
2: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ थे।
1: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पी ऑन रोवा, स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट।
3: At Bunnings, we've got a wide range of rugs to make your home cozier this winter. From plush rugs to hard-wearing styles for busy areas and fun designs to brighten the kids' rooms. We make cozy easy this winter. Lowest prices are just the beginning.
4: It's a client who tried DIY. It did not work. It's that five-minute job still going 5 weeks later. It's a supplier. Everything is out of stock. There's a lot on the line starting a business. To see how ANZ can help, search ANZ How To. Eligibility criteria, T's and C's apply.
5: Auckland, tayyar ho jao ek sufi raat ke liye. Once upon a time with the legendary Rahat Fateh Ali Khan live in concert. Along with Shah Zaman Ali Khan. Saturday, 25th July at the Trust Arena. Book your tickets on drytickets.co.nz. For sponsorships, call Karam Hundal on 027-514-6477.
6: Playing Bollywood's biggest hits.
7: Budge hit gaane.
1: Aapka moment. Krish ka magic. Only on Hum.
0: Good afternoon everyone. Welcome to Sunday Just Chill. Main Krish aapke saath de raha hu aur hamara saath 6 baje tak rahega. Ye hamara फाइनल आवा है और हमारे जितने भी प्यारे लिसनर्स हमारा साथ दे रहे हैं, थैंक यू सो मच। अभी आपके लिए हम शुरू करने जा रहे हैं संडे ट्रेलर टॉकीज, आने वाली फिल्मों के ट्रेलर पर बातें करने जा रहे हैं हम, और मैं क्रिश आपका स्वागत करता हूं।
1: ट्रेलर टॉकीज ऑन बॉलीवुड बज़।
0: वेलकम एवरी वन टू संडे ट्रेलर टॉकीज़। आज हम काफ़ी फिल्मों के ट्रेलर पर बातें करेंगे। रामायणा मिथोलॉजिकल एपिक ट्रेलर बज है जवानी तो इश्क होना है कॉमेडी ट्रेलर है, और धुरंधर 2 का ट्रेलर तो आपने देख लिया, और आई थिंक राजा शिवाली इसका ट्रेलर आपने देखा होगा। ये फिल्म सिनेमाज में आ चुकी है, लेकिन गिनी विद सनी 2 रोमांटिक कॉमेडी ट्रेलर है। भूत बंगला तो आपने देखा, साथ ही में माइसा ये एक न्यू टीजर कैरेक्टर रिवील है, इस पर हम बातें करेंगे आज प्रोग्राम में। साथ ही में 2 और सामाजिक सूचनाएँ हैं जो आपके साथ हम शेयर करेंगे बहुत ही जल्दी। सुनते रहो हम एंड वेलकम टू द शो। गुड आफ्टरनून एवरीवन, मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ।

संडे ट्रेलर टॉकीज में आपका स्वागत है और मैं क्रिश आपको बताने जा रहा हूँ अबाउट गिनी वेज सनी 2 का रोमांटिक ट्रेलर जो रिलीज कर दिया गया है। ये ट्रेलर एक केओटिक लव स्टोरी दिखाता है जिसमें फैमिली ड्रामा है और मिसअंडरस्टैंडिंग्स है और ह्यूमर है, लेकिन ये मॉडर्न रिलेशनशिप्स और इमोशनल कन्फ्यूजन पर फोकस करता है। सो इट्स गोइंग टू बी रोमांटिक, इट्स गोइंग टू बी कॉमेडी, और कहा गया है कि ये मूवी आप भी पसंद कर सकते हैं अगर आपको ये जॉनर पसंद है। मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ। इनफैक्ट जो और भी मूवी के ट्रेलर है, जैसे कि है जवानी तो इश्क होना है, कॉमेडी ट्रेलर है, ये मूवी भी सिनेमाज में आ चुकी है। ट्रेलर जब रिलीज़ हुआ था तो एक बहुत ही फैमिली फन एंटरटेनर है जिसमें वरुण धवन, मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े ने काम किया है। ट्रेलर में इनफैक्ट कन्फ्यूजन दिखाता है, रोमांस भी दिखाता है और बहुत ही क्योटिक रिलेशनशिप है जो क्लासिक डेविड धवन स्टाइल में प्रेजेंट किया गया था, तो ये भी आप जाकर देखें। मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ।

0: driving you home? The Drive Show with Sandy and Rusby.
1: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
2: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
3: वो भी आई लव यू वाला।
2: मैडम ने पकड़ लिया भी, यहाँ पे किसने बनाया, वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
3: अच्छा आप दिलजीत हो?
2: आए आए बताओगे यार।
0: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.

0: Toto plus 24-hour mobile service. For bulk orders, call Ron on 022-175-3941 or visit rbstires.co.nz or their Facebook page. RBS Tires. Drive safe, drive smart.
1: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ बोली बस मेरा फोकस है
2: हाँ. अच्छा
1: बताओ तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं
2: मिसेस सिंह
3: अरे पम्मी जी मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन

You're listening to Krish on your number one hum playing Bollywood's biggest hits. Aapke support ki zarurat hai. Glow Red for Tell NZ ke liye global awareness campaign hai by Muskan Care Trust NZ, which is shining a light on thalassemia and sickle cell anemia. Ye conditions jo often invisible hote hain lekin lifelong impact ho sakte hain. Kafi patients regular blood transfusions par rely karte hain, often every 3 weeks simply to stay alive. To hamare community में आपकी जरूरत है क्योंकि आपको इनवाइट किया जा रहा है टू सपोर्ट द इंटरनेशनल सिकल सेल अवेयरनेस ब्लड डोनेशन ड्राइव ऑन 20th June जो मनुकाउ एनजेड ब्लड सेंटर में होगा. और भी जानकारी के लिए या अपने डोनेशन को बुक करने के लिए आप www.muskancaretrust.org.nz विजिट कर सकते हैं या फिर फॉलो कर सकते हैं मुस्कान केयर ट्रस्ट एनजेड ऑन फेसबुक. और टुगेदर आप इस बहुत ही नोबल कोज में भाग ले पाएंगे. ग्लो रेड, डोनेट ब्लड and share hope. Main Krish aapke saath de raha hoon.

You're humming along with Krish on your number one hum playing Bollywood's biggest hits. Shahaja Yoga Global Meditation ho rahe hain. Yahan inki or se weekly free meditation sessions diya ja raha hai. Aur yeh sabhi ke liye open hai. Regardless of experience aur free of charge hai. Isse mental well-being, stress ko reduce karna aur inner peace ko promote karna inka lakshya hai. In jaghahon par aap free meditation sessions mein bhaag le paayenge. Maurice Bay, address is Outram Hall 478 Beach Road, Maurice Bay, Auckland. Dates Monday 7:15 to 8:15 p.m. or Mount Albert mein Awairaka C Scouts Hall, Rangeview Road, Murray Helberg Park, Mount Albert. Or ye every Saturday hoga 10 a.m. to 12 p.m. Aur bhi jankari ke liye aarti se baatein aap kar sakte hain 0224048386 par. Aur Hawick address is the Green Room, Uxbridge Center, 35 Uxbridge Road, Hawick. Aur ye every Tuesday hoga 7 to 8 p.m. कांटेक्ट करने के लिए आप 0225669445 पर और जानकारी ले सकते हैं. नॉर्थकोट में एड्रेस है 27 लेक रोड, नॉर्थकोट. एवरी ट्यूसडे यहां पर होता है 7 PM टू 8 PM. ओमकार से और भी जानकारी के लिए बातें करें 0221074452 पर. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूं और भी प्यारे गाने आपको सुनाते हैं.

सिचुएशन ऑफ बिट्रेयल है, इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट दिखाया जाता है और रिवेंज ड्रिवन स्टोरी भी पता चलता है फ्रॉम द ट्रेलर। आपको कैसा लगा आप हमें जरूर बताएं। मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ, सुनते रहो हम।

0: You're listening to Krish.
1: Let's go!
2: संडे जस्टिल यहीं पर ख़त्म हो रहा है दोस्तों. आपने हमारा साथ दिया, थैंक यू सो मच, बहुत ही प्यारा लगा. हमारी मुलाकात अब होती है कल मंडे को, आ जाएंगे आपका साथ देने के लिए. मंडे टू थर्सडे नाइट कैफे लेकर मैं आ जाऊंगा. अपना बहुत ही ख्याल रखे, क्रिश का बहुत सारा प्यार. हैव अ वंडरफुल रेस्ट ऑफ योर संडे एंड ऑल्सो एन्जॉय योर अपकमिंग वीक डेज. काम पर फिर आप घर पर आएंगे और पूरा हफ्ता अच्छी तरह बीते. लेकिन रात को तो मुलाकात होती है, वीक नाइट्स आपसे मुलाकात हम करेंगे नाइट कैफे में. क्रिश का बहुत सारा प्यार.

Avoiding certain people and situations to protect your emotional and mental health is not a weakness, it is wisdom. बात पर गौर करें, अपनी इमोशनल और मेंटल हेल्थ को बचाने के लिए कुछ लोगों और कुछ हालात से दूर रहना ये कोई कमजोरी नहीं है, ये समझदारी है। कुछ लोग हैं शायद आपके ज़िंदगी में जो बहुत ही टॉक्सिक है, लेकिन इनसे आप दूरी बनाए रखने में या फिर दूर होने में हिचकिचाते हैं, लेकिन इनसे दूर हो ही जाना ये समझदारी की बात होती है। तो गौर कीजिए इस बात पर, और इसी बात के साथ में, इस आइडिया के साथ में आइए शुरू करते हैं संडे नाइट मेलोडीज। 14 तारीख जून है, ऑलमोस्ट द मिडल ऑफ जून, छठा महीना शुरू हो चुका है, आधे पर हम पहुंच चुके हैं। आप क्या कर रहे हैं, आपकी इमोशनल और मेंटल हेल्थ क्या ये ऑन ट्रैक है, क्या आप सफा कर रहे हैं, इसके बारे में सोचिए। और कुछ हालातों से बचना, कुछ लोगों से दूरी बनाए रखना ही शायद आपके इमोशनल और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। 6 बजने का आए हैं, मैं हूं जिकाश, आपके साथ में शामिल हो चुका हूं ठीक रात 12 तक। तो अभी से लेकर 6 घंटों तक हम एंजॉय करेंगे कुछ ऑसम ऑसम म्यूज़िक। आपको हम ढेर सारी बातें बताएंगे कि हमारे कम्युनिटी में क्या हो रहा है, खेल कूद में तो भाई बहुत सारा कुछ हो रहा है। नेक्स्ट वीक विल बी द फिनाले ऑफ सुपर रग्बी पैसिफिक। हैज़ योर टीम मेड द कट, यस या नो, इस पर हम बिल्डअप करेंगे, जानकारी कुछ आपके साथ में शेयर करेंगे, और फिर आपसे भी हम कुछ सुनेंगे, कुछ अपनी सुनाएंगे। इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम को हम इंजॉय करते चलेंगे। स्वागत कर रहे हैं आपका ऑन 104.2 FM एंड रोवर पर। नमस्कार, क्योरा।

0: Chikash.
1: हमारे आसपास बहुत कुछ हो रहे हैं एंड कम्युनिटी न्यूज़ में पहले देख लेते हैं कि आप तक कौन क्या जानकारी पहुंचाना चाहता है. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ग्लो रेड डोनेट ब्लड शेयर होप. दिस इज ए अवेयरनेस प्रोग्राम जो मुस्कान केयर ट्रस्ट एनजेड द्वारा प्रमोट किया जा रहा है, सपोर्टिंग ग्लो रेड फॉर थैल एनजेड. दिस इज एन अवेयरनेस फॉर थैलेसीमिया एंड सिकल सेल एनीमिया. इसके बारे में अगर आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो यू कैन हेड टू www.muskancaretrust.org.nz या फिर मुस्कान केयर ट्रस्ट एनजेड को फेसबुक पर आप फॉलो करें, क्योंकि सिकल सेल एनीमिया एंड थैलेसीमिया इज़ अ कंडीशन दैट ऑफन इज इनविजिबल बट कैन हैव अ लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट. इसके कई सारे पेशेंट्स हैं जो रिलाई करते हैं ऑन रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स. वंस एवरी 3 weeks इनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना होता है सिंपली टू स्टे अलाइव. इसके बारे में आप सोचिए एंड इफ यू आर इन अ स्टेट ऑफ डोनेटिंग ब्लड, प्लीज़ डोनेट ब्लड. आई हैव बीन रेगुलरली डोनेटिंग ब्लड और मैंने तकरीबन 3 बार अभी तक ब्लड डोनेट कर दिया है एंड आई एम वेटिंग फॉर द नेक्स्ट चांस जब मैं ऐसा कर सकूँ, क्योंकि इस छोटे से रक्त दान द्वारा आप कई सारे लोगों की ज़िंदगी बचा सकते हैं एंड यू कैन गिव देम होप टू दोज लिविंग विद दीज कंडीशंस. तो एक ब्लड ड्राइव की आयोजना की जा रही है ऑन द 20th of June एट द मनुकाउ एनजेड ब्लड सेंटर, जहां पर हम भी कुछ ना कुछ अपनी तरफ से मदद करेंगे, आप भी अपनी मदद पहुंचाएं और बहुत सारे पीड़ित लोगों तक हम खुशियां या फिर ज़िंदगी पहुंचा सकते हैं. ग्लो रेड डोनेट ब्लड ब्लड ड्राइव हैपनिंग ऑन द 20th of June मनुकाउ एनजेड ब्लड सेंटर में. इसके अलावा श्री राम लीला, एक भव्य राम लीला की आयोजना की जा रही है एंड पिछले साल भी ये हुआ था, बम्प ऑफ अ क्राउड फुल हाउस ये इवेंट था. इसको और भी बढ़ चढ़ कर अब इसकी तैयारी की जा रही है एंड इसके लिए हमें तलाश है फॉर द रोल अ पर्सन टू फिल इन द रोल फॉर माता सीता. इफ़ यू थिंक यू कैन कैरी दिस रोल ऑफ पोर्ट्रेइंग माता सीता ऑन स्टेज, तो आप कॉल कर सकते हैं मास्टर अशोक को ऑन 021-179-5459 पर. न्यूजीलैंड आर्ट एंड कल्चरल चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा ये रामलीला आप तक लाया जाएगा, हैपनिंग ऑन द 8th of August 2026. मोर डिटेल्स आपके साथ हम जैसे समय नज़दीक आता जाएगा और भी जानकारियां हम आपके साथ में शेयर करते चलेंगे. अगर आपके पास भी कुछ इवेंट्स हैं जो आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जिसके बारे में आप जानकारी तमाम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, गेट इन टच विद अस, वी कैन बी अ पावर ऑफ इट एज वेल ऑन buzz@hum.fm पर. दैट्स वेयर यू गॉट टू सेंड योर ईमेल्स.

0: चाहे आप हम के दिन चैट 20 को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी, बसेस बिलबोर्ड्स ट्रेन स्टेशंस स्ट्रीट फर्नीचर डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव गॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755। मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: डिस्कवर द मैजिक एट गो बनाना स्टाइल के, जहां आपके बच्चे सीखेंगे इन अ फन वे। विद 19 ब्रांचेस अक्रॉस ऑकलैंड एंड वाइकाटो, हम हमेशा आपके पास हैं।
2: गो बनाना चाइल्ड केयर इज नाउ ऑफरिंग 30 आवर्स फॉर जस्ट $10 पर वीक फॉर ऑल एजेस।
1: तो जल्दी ज्वाइन करें टू एंजॉय दी स्पेशल ऑफर्स। और सबसे खास बात, गो बनाना चाइल्ड केयर बीचलैंड्स इज नाउ ओपन एंड ऑफरिंग 12 मंथ्स कंप्लीटली फ्री फॉर अ लिमिटेड टाइम। तो देर मत कीजिए, कॉल 0800-46-26-26 टुडे।
2: अवेलेबल एट सिलेक्टेड ब्रांचेस। टीज एंड सीज अप्लाई।
3: A story of love, memory and longing against the backdrop of the partition of India.
4: ये हो सकता है अपने दिल के अंदर एक लड़की को रखना जिसे 78 years से देखा तक नहीं।
3: Director Imtiaz Ali's romantic period drama मैं वापस आऊंगा, starring Diljit Dosanjh, Nasiruddin Shah, Shalmari Bagh and Vedang Raina.
4: ये प्यार जहर की तरह होता है पता है, इसकी एक भी बूंद अंदर रह गई ना तो ये आखिरी समय में चैन से मरने भी नहीं देता।
3: मैं वापस आऊंगा, now showing in cinemas. Distribution partner Forum Films. Rating TBC.
5: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है।
6: हाँ। अच्छा
5: बताओ, तो आड़ा फोकस फोकस साड़ा कुछ नहीं।
6: मिसेस सिंह,
7: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
8: मॉडर्न क्लासिक शेकर स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू। कॉल 09281-3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।
9: Rebel Sport has winter sorted. Layer up with deals on puffers, jackets, sweats and fleece built to keep you warm when the temperature drops. Plus global football fever is kicking off. Grab your fan gear and get game day ready. Only at Rebel Sport. See online for T's and C's.
10: You already share a group chat. Now you can share a discount too. Get 50% off Spark group plans for 6 months when you sign up to an eligible pay-monthly leader plan. New Spark Mobile customers only. T's and C's apply.
11: Zabardast hits.
12: Shuru ho jaye to rukte nahi.
11: Playing Bollywood's biggest hits.
13: Hum.

फीफा वर्ल्ड कप 2026 ये शुरू हो चुका है फ्रॉम फ्राइडे और आज वाज डे थ्री. टुमारो डे फोर में कई सारे नामी टीम, बहुत ही हाई परफॉर्मिंग टीम्स नज़र आने वाली है. जर्मनी अगेंस्ट क्यूरासाओ ये खेलने वाली है कल सुबह 5 पर अंडर ग्रुप ई. ग्रुप एफ के तहत नेदरलैंड्स और जापान ये सुबह 8 बजे खेलेंगे. नाउ व्हाट आई वुड लाइक टू सी इज जापान अपसेटिंग नेदरलैंड्स. शायद थोड़ा मुश्किल पड़ेगा लेकिन तैयारी तो दोनों ही टीमों ने की होगी. देखते हैं सुबह 8 पर जो खेल शुरू होगा इसमें क्या होता है बिटवीन नेदरलैंड्स एंड जापान. फिर कल दिन में 11 बजे आइवरी कोस्ट इक्वाडोर के साथ खेलेगा. एंड आई थिंक आइवरी कोस्ट आर द फेवरेट्स गोइंग इनटू दिस टीम. और फिर ट्यूनीजिया और स्वीडन ग्रुप एफ के तहत कल शाम 2 पर खेलने वाले हैं. तो Have you placed your bets on teams? Yes, no. 104 matches altogether होने वाले हैं in this year's World Cup, जहां पर 48 teams नजर आने वाली हैं.

0: You're listening to Chikash.
1: FIFA World Cup ये तो जारी है. इसके अलावा 2027 Men's Rugby World Cup in the Union Division ये भी बस हमारे सर पर मंडराने वाला है. और this is happening, well actually एक साल से थोड़ा ज़्यादा वक्त अभी बाकी है, पर इसके लिए तैयारियाँ हमें शुरू कर देनी चाहिए as New Zealand going into World Cup, क्योंकि भाई आज संडे है और जून के ऑलमोस्ट मिड तक हम पहुँच चुके हैं. एक साल से थोड़ा ही ज़्यादा समय बाकी है जहाँ पर वी विल बी फीचरिंग इन द वर्ल्ड कप ऑफ कोर्स, लेकिन इसके लिए टीम सिलेक्शन अभी तक नहीं हुआ है. सुपर रग्बी पैसिफिक को के ख़त्म होने का इंतज़ार किया जा रहा है एंड सुपर रग्बी पैसिफिक का फाइनल ये अगले सप्ताह ही खेला जाएगा. क्या आपको मालूम है? वेल इफ़ यू डिडंट नो यू नो नाउ. तो उसके बाद में जो ऑफिशियल्स है दे विल स्टार्ट सेलेक्टिंग प्लेयर्स फॉर द ऑफिशियल या फिर फॉर द ट्रायल ऑल ब्लैक्स टीम, जिसके बाद में टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे और फिर टेस्ट मैचेस के बाद द फाइनल स्क्वाड ऑफ ऑल ब्लैक्स अनाउंस किया जाएगा. दैट विल बी नेक्स्ट ईयर. लेकिन क्या आपको लगता है वो कौन से हाई परफॉर्मिंग प्लेयर्स हैं जिनको ऑल ब्लैक्स टीम में होना चाहिए? हैव यू मेड योर ओन लिस्ट? अगर आपने अपना खुद का लिस्ट बनाया है डू शेयर इट विद अस. देखते हैं कि रग्बी के बारे में और हमारे प्लेयर्स के बारे में आप कितना जानते हैं. वैसे 2027 मेंस रग्बी वर्ल्ड कप ये ऑस्ट्रेलिया में अक्टूबर 1st से नवंबर 13th के बीच में होने वाला है नेक्स्ट ईयर.

0: वो दिन जब मोहब्बत खत्म में होती थी,
1: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज ना होना,
0: और गानों में

लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: Yeah.
1: और अपनी जिंदगी को आप यहीं गुजर बसर करने वाले हैं. यू आर इन द प्रोसेस ऑफ बाइंग अ होम एंड मेकिंग न्यूजीलैंड योर फॉरएवर होम. तो इस ग्रेट कंट्री के बारे में, इसकी हिस्ट्री के बारे में और न्यूजीलैंड के फेस्टिवल्स के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है. नाउ आई एम हिंटिंग टूवर्ड्स और हिंटिंग अबाउट मातरिकी फेस्टिवल. क्या आप इसके बारे में जानते हैं? इफ़ यू हैव किड्स एट स्कूल तो इनसे आप पूछे, इनको मातरिकी के बारे में स्कूल्स में सिखाए जाते हैं एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए भी कि आप इसके बारे में जानें. मातरिकी फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाएगा हियर इन तमाकी मकोरो, मतलब ऑकलैंड में, फ्रॉम द 4th ऑफ जुलाई टू 19th ऑफ जुलाई. और इसके लिए एक पब्लिक हॉलीडे भी गजेट किया गया है. इसके बारे में भी जानकारी आपको हम प्रदान करेंगे बस थोड़ी देर में. तो अपना खुद का रिसर्च कीजिए, मातरिकी फेस्टिवल क्या है एंड व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर न्यूजीलैंडर्स. यहाँ के लोकल्स के लिए, माओरी कम्युनिटी के लिए दिस इज़ लाइक क्रिसमस. तो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट और आपके लिए भी ये बहुत ही ज़रूरी है आप इसके बारे में जानें, क्योंकि आप न्यूजीलैंड को अपना घर मानते हैं. तो घर के सभी मेंबर्स के बारे में, उनके लाइक्स और डिसलाइक्स, उनके फेस्टिवल के बारे में जानना भी बहुत ही ज़रूरी है. मातरिकी फेस्टिवल के बारे में जानकारी बस थोड़ी देर में.

0: rock and roll. Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: सोना संसार पापा टोटो के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे।
2: चूड़ी, कंगन, पायल, बाली, झुमके और चोकर, ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन्स मिलते हैं, समझे?
1: सोना संसार पापा टोटो, जहां था वहां अभी भी है। शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स, पापा टोटो।
3: सोना संसार, 138 ग्रेट साउथ रोड, पापा टोटो। सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर गोल्ड।
4: Nissan Big Deals सिर्फ 22 जून तक। Select new Navara models पर पाइए $5,000 तक की बचत, plus accessories भी। Take advantage with the big one on X-Trail and discover the Patrol V8, backed by Nissan's up to 10-year warranty. T's and C's apply.

Hey Bula and welcome back to Sunday Night Melodies जहाँ पर मैं जिकाश आपका साथ दे रहा हूँ. मातृवीकी के बारे में हम बस थोड़ी देर में बातें करेंगे. क्या आपको मालूम है कि हमारा नेक्स्ट पब्लिक हॉलीडे कौन सा है? वेल इफ़ यू नो डू लेट मी नो 5599 पर अपना जवाब भेजिए. इसके बारे में हम बातें करेंगे और इस घंटे पर वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट द यूनाइटेड नेशंस कैलेंडर. इसके अंतर्गत कौन से अपकमिंग इम्पोर्टेंट डेज को सेलिब्रेट या फिर ऑब्जर्व किया जाने वाला है फॉर द मंथ ऑफ जून. आज है 14th June. टुडे इज़ वर्ल्ड ब्लड डोनर डे. वेरी इम्पोर्टेंट डे और वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है फॉर एवरीवन इन द वर्ल्ड. इसके बाद में टुमारो वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस है. 16th June को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस है. तो इन सभी पर थोड़ी थोड़ी झलकियाँ, थोड़ी थोड़ी बातें हम करते चलेंगे in this hour right here on 104.2 FM and on Rover. मैं हूँ जिकाश, आपका स्वागत कर रहा हूँ. क्योरा

ऑलराइट, मातरिकी फेस्टिवल के बारे में हमने कहा था आपको हम बताने वाले हैं। दिस ईयर मातरिकी डे है ऑन द 10th ऑफ जुलाई एंड दिस इज हैपनिंग इन द स्कूल हॉलीडेज। तो ऑसम अपॉर्चुनिटी है टू गेट टुगेदर विथ योर किड्स, योर फानो, योर फैमिली एंड लर्न अबाउट मातरिकी फेस्टिवल। अगर आप अभी तक इसके बारे में नहीं जानते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जिस देश में रहते हैं उस देश के कल्चर, उस देश के फेस्टिवल्स के बारे में जानकारी रखें। मातरिकी फेस्टिवल सेलिब्रेट्स द माओरी न्यू ईयर विद कम्युनिटी गैदरिंग्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द माओरी कम्युनिटी। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप इसके बारे में सीखें। यहाँ पर इस फेस्टिवल को मनाने के लिए कम्युनिटी गैदरिंग्स होते हैं, कल्चरल परफॉर्मेंसेस होते हैं, स्टार गेजिंग एंड फीस्ट्स अक्रॉस ऑकलैंड। थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि ऑकलैंड में 4 जुलाई से 19 जुलाई के बीच में इस फेस्टिवल को ऑब्जर्व किया जाएगा। और इस फेस्टिवल को कई तरह से लोग मनाते हैं, देयर आर अ लॉट ऑफ कल्चरल एंड कुलिनरी इवेंट्स, ट्रेडिशनल हांगी फीस्ट होते हैं, फैमिली एक्टिविटीज़, कापा हाका विच इज़ अ माओरी डांस परफॉर्मेंस, ये ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, साइलेंट डिस्कोज एंड लोकल लाइब्रेरीज में रोबोटिक्स एंड डिज़ाइन वर्कशॉप्स भी आयोजित किए जाते हैं। एनवायरमेंटल एक्शन के तहत कम्युनिटी ट्री प्लांटिंग और सीड सोइंग सेशंस भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं ड्यूरिंग मातरिकी। तो ये सभी कुछ आपको सीखने हैं, इन्जॉय करना है और नॉलेजेबल बनना है अबाउट द फेस्टिवल्स ऑफ न्यूजीलैंड, अगर आप न्यूजीलैंड को अपना घर मानते हैं। मातरिकी डे फ्राइडे 10th जुलाई को ऑब्जर्व किया जाएगा, मनाया जाएगा, विच इज़ अ पब्लिक हॉलीडे।

0: Playing Bollywood's biggest hits.
1: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
2: Woolworths has savings in every aisle. Get Cadbury Blocks 150 to 190 gram, just $3.50 each, that's half price. Or Alpine Colby and Edam 1kg cheese blocks, just $12.90 each. Woolworths weekly specials. Now that feels good. T's and C's apply.
3: MediaWorks complaints. How can I help?
4: I've got this ad going around and around and around in my brain. And it's all because of you guys.
3: Thank you.
4: It's all I can think about.
3: What does it sound like?
4: Yeah, I'd rather not.
3: Go on, why don't you have a crack?
4: Okay, got a plumbing problem.
3: Oh, I need a bit more than that.
4: They've got your back.
3: That's starting to ring a bell. Why don't you sing it to me?
4: Oh, okay.
5: There's no better plumber to give it a crack.
3: Oh, wow. You're actually good. Do you want a job?
4: No, I want a plumber.
6: Advertise with MediaWorks. New Zealand listens to us.
7: रेडियो पे गानों की फरमाइश की जा सकती है, अपनों के नाम संदेश भेजे जा सकते हैं, मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना। उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं। कशिश प्रीमियम बासमती राइस। Eat better, live better. For more information, log in to www.kashishfood.co.nz. Available at all leading stores.
8: A story of love, memory and longing against the backdrop of the partition of India.
9: ये हो सकता है अपने दिल के अंदर एक लड़की को रखना जिसे 78 years से देखा तक नहीं।
8: Director Imtiaz Ali's romantic period drama मैं वापस आऊंगा, starring Diljit Dosanjh, Nasiruddin Shah, Shalmari Bagh and Vedang Raina.
9: ये प्यार जहर की तरह होता है, पता है? इसकी एक भी बूंद अंदर रह गई ना तो ये आखिरी समय में चैन से मरने भी नहीं देता।
8: मैं वापस आऊंगा, now showing in cinemas. Distribution partner Forum Films. Rating TBC.
0: Playing Bollywood's biggest hit.

14th of June, aaj hai World Blood Donor Day under the United Nations Organization's calendar. Aur har saal, countries around the world celebrate World Blood Donor Day, WBDD. The event serves to raise awareness for the need for safe blood and blood products and to thank voluntary, unpaid blood donors for their life-saving gifts of blood. A blood service that gives patients access to safe blood and blood products in sufficient quantity is a key component of an effective health system. The global theme of World Blood Donor Day changes each year in recognition of the selfless individuals who donate their blood for people unknown to them. Kya aapne kabhi aisa kiya hai? World Blood Donor Day 2026, iska theme hai, One Drop of Humanity, Give Blood, Save Lives. Kya aise koi hai jinhone abhi tak socha hai ki yaar duniya mein aaj tak humne kuch acha nahi kiya hai. Kiya hoga, lekin kuch aisa jo selfless ho, jiske baad mein aap kuch expect nahi karte hain. Well, blood, donating blood is one such thing that you can do, jahan par aap kisi anjaan ki zindagi bacha sakte hain. Chahe it may be needed in a pregnancy, delivery ke samay, shayad maa ko ya phir bachche ko blood ki zarurat pade, ya phir ek car accident mein kisi पीड़ित को ब्लड की ज़रूरत पड़े, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए ब्लड की ज़रूरत पड़े, आपका दान किया हुआ खून किसी की ज़िंदगी बचा सकता है, किसी की ज़िंदगी बदल सकता है या फिर एक परिवार को एक मेंबर खोने से बचा सकता है. सोचिए इसके बारे में. और ब्लड डोनेट करने के लिए सेंटर्स कई सारी जगहों पर है. NZ ब्लड का एक ऐप भी है, इसको आप डाउनलोड करें, यू विल गेट टू नो कि आप कहाँ पर जाकर ब्लड डोनेट कर सकते हैं एंड यू सर्टेनली फील गुड अबाउट इट. क्योंकि जब आपके दिए हुए ब्लड को यूज़ किया जाता है, आपको एक मैसेज भेजा जाता है कि भाई आपका खून आज इस्तेमाल हुआ है टू सेव समवनस लाइफ एंड दैट इज़ अ बिग थिंग. यू कैन पुट अ प्राइस टू इट. जब आपको मालूम पड़ेगा कि आपका खून इस्तेमाल हुआ है टू सेव अ लाइफ, हाउ गुड इज दैट. तो 14 जून वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, मेक अ रेजोल्यूशन कि आप इस साल एटलीस्ट एक बार ब्लड डोनेट करेंगे. मेक श्योर गेट इन टच विद योर डॉक्टर्स एंड चेक आउट कि आप ये कर सकते हैं या नहीं. और ब्लड डोनेशन सेंटर्स में नर्सेस रहते हैं, हेल्थ ऑफिशियल्स रहते हैं टू हेल्प यू आउट टू असेस कि आप सेफली ब्लड डोनेट किस तरह से कर सकते हैं. Have a think about this.

If you have a family, या family नहीं भी है, अगर आप by yourself रहते हैं, rent करते हैं, तो garbage, क्योंकि आप खाते पीते हैं, जिंदा रहने के लिए चीजों का इस्तेमाल करते हैं, तो by product garbage waste तो निकलता ही है, और इसको ठिकाने लगाने के लिए councils ने bins provide किए हैं, लेकिन कई दफा, कई बार शायद ऐसा होता है कि आपके bins, आप the amount of garbage जो आपके घर से निकलता है, कचरा जो निकलता है, इसके लिए आपके बिन्स पर्याप्त नहीं होते हैं, छोटे पड़ जाते हैं, एंड यू एंड अप अपग्रेडिंग द साइज ऑफ योर बिन, एंड अप पेइंग मोर फॉर द काउंसिल टू टेक अवे योर गार्बेज. हैव यू थॉट अबाउट कंपोस्टिंग? क्योंकि दैट माइट बी अ वे जहाँ पे आप कुछ पैसे भी बचाएंगे मेंटेनिंग योर स्मॉल गार्बेज बिन्स, एंड एट द सेम टाइम क्रिएटिंग कॉम्पोस्ट फॉर योर बैकयार्ड गार्डन और योर बालकनी गार्डन जो आप लगाने के बारे में सोच रहे थे. तो इसके लिए इंट्रोडक्शन टू कंपोस्टिंग वर्कशॉप, जहां पर आप सीख सकते हैं कि किस तरह से सही तरह से आप कंपोस्टिंग कर सकते हैं. तकपुना लाइब्रेरी में, 9 द स्ट्रेंथ तकपुना ऑकलैंड में, ये कंपोस्टिंग वर्कशॉप बिल्कुल फ्री में रन हो रहा है. इसके बारे में आप ज़रूर जानें, जहां पर सारा विलियम्स तकपुना लाइब्रेरी में ये वर्कशॉप रन कर रही है, और ऐसे सारे वर्कशॉप कई सारे लाइब्रेरीज में रन होते हैं. सो मेक श्योर कि आपकी जो लोकल लाइब्रेरीज हैं वहाँ पर आप जाए एंड चेक आउट कि आपके लिए फ्री में कौन से कोर्सेज, कौन से वर्कशॉप्स हो रहे हैं, जहाँ पर यू कैन लर्न अ लॉट, योर किड्स कैन लर्न अ लॉट, एंड यू कैन मेक यूज ऑफ द डॉलर्स जो आप अपने काउंसल्स को भर रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ काउंसल फीस, काउंसल रेट्स. अगर आप भरते हैं भाई, that is the money that is being used at your libraries, your recreational centers and the events jo councils aapke liye lekar aate hain. To paise de rahe hain, vasooli bhi kijiye. Aapke libraries mein kai sare courses, kai sare workshops hain jahan par jaakar aap aur bhi smart ho sakte hain.

0: idea.
1: Streaming on Rover.
2: रेडियो पे गानों की फरमाइश की जा सकती है, अपनों के नाम संदेश भेजे जा सकते हैं, मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना। उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं। कशिश प्रीमियम बासमती राइस, ईट बेटर लिव बेटर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग इन टू www.kashishfood.co.nz, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स।
3: Roadside drug testing is here. New Zealand police can now test drivers with a saliva test anytime, anywhere. This screens for the recent use of drugs, including cannabis, methamphetamine, MDMA and cocaine. Learn more at police.govt.nz/drug-driving.
4: It's boarding time with Instant Kiwi. But where will you land? Hamilton or Hamilton Island? You never know. For your chance to win a mystery holiday for two, get a $5 cross-world ticket at your local Lotto NZ store and enter online. R18 T's and C's apply.
5: Non-stop Bollywood.
6: Hum.

0: थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था अबाउट द रामलीला और इसके लिए प्रिपरेशंस जारी है. सीता माता के लिए रोल जो है ये फिल हो चुका है. वी गॉट अ पर्सन टू फिल इन द रोल फॉर दैट. लेकिन अभी हमें तलाश है पीपल हु आर इन द डिजिटल स्पेस. मतलब कि अगर आप विजुअल एनहांसमेंट टेक्निक्स, विजुअल एनहांसमेंट, विजुअल ऑन स्क्रीन लाइव परफॉर्मेंस में आप माहिर है टू क्रिएट बैकग्राउंड्स या फिर विजुअली एनहांसिंग अ शो, ये आपको आता है तो यू कैन गेट इन कॉन्टेक्ट विद अस, स्पेशली मास्टर अशोक जी. इनके साथ में मिलकर इनको आप कॉन्टेक्ट करें और फिर आप माइट यू माइट जस्ट बी द पर्सन जो हमारे इस रामलीला को और भी शानदार बना दे. मास्टर अशोक को आप कॉल कर सकते हैं ऑन 0211-795-495 पर. देर इज 0211-795-495 0211-179-5459 इज द नंबर टू गेट इन टू कॉन्टेक्ट. अगर आप हेल्प आउट करना चाहते हैं इन द डिजिटल विजुअल स्पेस, अगर आपको विजुअल क्रिएटिविटी आती है एंड लाइव विजुअल इफेक्ट्स आप क्रिएट कर सकते हैं, वी नीड यू. आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में. आपके साथ में हमने मतिरिकी के बारे में बातें की है एंड फूड कंपोस्टिंग के बारे में बातें की है. आपसे अभी हम बातें करना चाहते हैं अगर आपके बच्चे आर फैसिनेटेड अबाउट डायनासोर्स, क्योंकि ऑकलैंड ज़ू में एक हाईली इमर्सिव एजुकेशनल एक्सपीरियंस आप कर सकते हैं. क्या है? दिस इज़ एन ओ इंस्पायरिंग क्रीचर्स फ्रॉम द क्रिटेशियस एंड जुरासिक पीरियड्स बिटवीन 266 मिलियन ईयर्स अगो. ये एक ट्रैक है ऑफ डायनासोर एक्सिबिशन जहाँ पर 20 एनिमेट्रॉनिक रेप्लिकास ऑफ 15 डिफरेंट स्पीशीज दैट मूव एंड रो क्रिएटेड बाय वर्ल्ड लीडिंग डायनासोर क्रिएटर्स द डायनासोर कंपनी. द ज़ूज 2026 एक्सपीरियंस हाईलाइट्स नेचर्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी टेरेस्ट्रियल एंड मरीन जाइंट्स बोथ पास्ट एंड प्रेजेंट. यहाँ पर आप लर्न कर सकते हैं अबाउट द फैसिनेटिंग कनेक्शंस दे हैव विद स्पीशीज लिविंग एट द ज़ू and wildlife species the zoo is helping conserve in the wild. So among these interactive activities are daily keeper talks with dinosaur rangers and the opportunity to try your hand as a paleontologist by taking part in fossil digs. Very interesting. Ye paid event hai, of course, Auckland Zoo mein, 99 Motions Road, Western Springs, aap ja sakte hain.
1: You're listening to Chikash.

0: दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है, लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: हम द बीट ऑफ बॉलीवुड,
2: वर्ल्ड्स बेस्ट, हमारी कोई ब्रांच नहीं है।

Hey, welcome back to हम, जहां पर मैं जिकाश आपका साथ दे रहा हूं। संडे नाइट मेलोडीज का प्रोग्राम आप एंजॉय कर रहे हैं। 8 बजने को आया है एंड कुछ लोग शायद अपना काम शुरू करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। यू आर हेडिंग टू योर वर्क प्लेस, जहां पर नाइट शिफ्ट आप शुरू करने वाले हैं, या फिर कुछ लोग जो अपना काम ख़त्म करने वाले हैं, बस तैयारी कर रहे हैं कि काम ख़त्म करके नॉक ऑफ करें, सो दैट यू कैन गेट बैक होम एंड हैव योर मच नीडेड स्लीप और रेस्ट जो आप लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो जो भी हो, हड़बड़ी मत कीजिएगा, चाहे आप काम ख़त्म कर रहे हो चाहे काम शुरू करने जा रहे हो, क्योंकि हड़बड़ी करने से, जल्दबाजी करने से गलतियां होती है और गलतियों के कारण आप चोट चपेट में आ सकते हैं। तो मेक श्योर जो भी आप कर रहे हैं सेफली एग्जीक्यूट करें, फिनिश अप योर वर्क नाइसली, मेक श्योर थिंग्स आर टाइडी बिफोर यू लीव, ताकि आने वाले शिफ्ट जो करने वाले हैं लोग, उनको सहूलियत हो इन स्टार्टिंग देयर वर्क। अगर आप काम शुरू कर रहे हैं, मेक श्योर कि आपके पास स्लिप एंड ट्रिप हैज़ार्ड्स नहीं है। आप टेक अ स्टेप बैक और आप ये देखें कि आपके आसपास ऐसा कुछ भी ना हो जिससे आपको चोट चपेट लग सकती है। PPE आपका एकदम से टिप टॉप कंडीशन में होना चाहिए, ठीक तरह से आपने पहना है इसको। डू मेक श्योर अगर सेफ्टी शूज़ है तो इसके बंधन आपने अच्छी तरह से बांधे हैं। ग्लव्स है, यू हैव स्ट्रैप्ड इट ऑन प्रॉपरली। आपके ग्लासेस जो है, यू हैव प्रॉपर विजिबिलिटी। आपके हार्ड हेड इज़ नाइस एंड स्नग ऑन योर हेड, ताकि अगर कुछ हो भी तो आपको ये सारी चीज़ें चोट चपेट में आने से बचा सकें। तो ऑन दिस नोट, विद दिस ऑसम ज्ञान, आप सभी का स्वागत हम कर रहे हैं टुगेदर। लेट्स स्टार्ट दिस आवर ऑन हम संडे नाइट मेलोडीज। आप इंजॉय कर रहे हैं विथ मी जिकाश। इस घंटे पर वी विल लुक एट सम गेम्स दैट आर कमिंग अप इन द T20 वर्ल्ड कप वीमेंस डिवीजन में, और फिर फीफा में इस सप्ताह कौन कौन से खेल होने वाले हैं वर्ल्ड कप में, ये भी हम आपके साथ में जानकारी शेयर करेंगे। कीप हमिंग।

0: वैसे आपको तो मालूम ही है कि राहत फतेह अली खान इज कमिंग बैक टू ऑकलैंड विथ हिज ऑसम ऑसम शो हैपनिंग ऑन द 25th ऑफ जुलाई. ट्रस्ट एरिना पर राहत फतेह अली खान जी आ रहे हैं, जहां पर सोल स्टरिंग कवाली विथ हिज टाइमलेस हिट्स आप एंजॉय करने वाले हैं विथ हिज पावरफुल वॉइस जो दुनिया भर में लोगों को दीवाना बना रखा है. जेके स्टार प्रोडक्शंस, गोट लाइव, ड्रीम्स एंटरटेनमेंट और सिमरन प्रोडक्शंस प्लस शहजादा प्रोडक्शंस की प्रस्तुति ये है. टिकट्स बिक रहे हैं ऑन dryTickets.com पर, तो जल्द से जाए dryTickets.com पर. बहुत ज़ोरों से टिकट्स बिक रहे हैं. अगर अभी आपने टिकट नहीं लिया तो एकदम पीछे वाली सीट मिलेगी इफ़ यू गेट लकी, और फिर वहाँ से शायद उतना मज़ा नहीं है जितना अप क्लोज टू द स्टेज आप एंजॉय करेंगे वॉचिंग राहत फतेह अली खान परफॉर्म ऑन द 25th ऑफ जुलाई एट द ट्रस्ट एरिना. dryTickets.com पर जाए एंड गेट योर टिकट्स फॉर राहत फतेह अली खान शो.
1: यू आर लिसनिंग टू चिकाश.

0: मैट्रेस पे, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती हैं रॉ, इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के।
1: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ थे।
0: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पे ऑन रोवा, स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट।
2: वो दिन जब मोहब्बत खत्म में होती थी।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: Rewind, सिर्फ रोवा पर.
1: Jen didn't think she needed a DVS system.
2: Oh, I've got insulation in that.
1: But Jen had forgotten about the mould on her walls and curtains.
2: Ah, yeah.
1: So Jen got DVS home ventilation, and its fresh air in, stale air out technology went to work, making her rooms drier, healthier, plus mould and mildew free. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.
3: रेडियो पे गानों की फरमाइश की जा सकती है, अपनों के नाम संदेश भेजे जा सकते हैं, मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना. उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं. कशिश प्रीमियम बासमती राइस. ईट बेटर, लिव बेटर. फ्रॉम मोर इन्फॉर्मेशन लॉग इन टू www.kashishfood.co.nz. अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स.
4: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम.
5: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
4: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है.
5: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है.
4: और दैट्स नॉट गुड. हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर. और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं.
6: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111. रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 years.
7: Women's T20 World Cup जारी है and खेल हुए हैं on Saturday morning को खेल शुरू हुए हैं England और श्रीलंका के बीच में पहला खेल हुआ जिसमें इंग्लैंड की जीत हुई. कल खेल हुआ बिटवीन स्कॉटलैंड आयरलैंड और आज सुबह ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका के साथ में खेला है. वेस्ट इंडीज़ न्यूजीलैंड के साथ में खेल हुआ और 9:30 PM पर आज खेल शुरू हो जाएगा बिटवीन बांग्लादेश एंड नेदरलैंड्स. कल सुबह मंडे 15th को इंडिया और पाकिस्तान के बीच में धमाका होने वाला है, मतलब खेल होने वाला है. इंडिया पाकिस्तान की T20 की वीमेंस टीम खेलने वाली है 1:30 AM पर. और फिर इसके बाद खेल होगा वेंसडे को न्यूजीलैंड श्रीलंका 1:30 AM पर. तो इस पर भी अपडेट्स हम आपके साथ में शेयर करते रहेंगे. विच टीम आर यू बैकिंग दिस टाइम अराउंड फॉर T20 वर्ल्ड कप वीमेंस कॉम्पिटिशन. वैसे ये खेल खेला जा रहा है को होस्टेड बाय वेल्स एंड इंग्लैंड. इंग्लैंड एंड वेल्स द्वारा इस टूर्नामेंट को होस्ट किया जा रहा है.

स्काई का सब्सक्रिप्शन आपने लिया है एंड सोच रहे हैं कि भाई फीफा वर्ल्ड कप आप क्यों नहीं देख पा रहे हैं, वैसे स्काई डिड नॉट गेट द राइट्स टू शो फीफा वर्ल्ड कप गेम्स। ये राइट्स मिला हुआ है TVNZ को और TVNZ इस वर्ल्ड कप के लिए इवेंट पास बेच रही है। 44.95 में सभी गेम्स फॉर द वर्ल्ड कप आप एंजॉय कर सकते हैं। वैसे TVNZ पर ऑल दी गेम्स फॉर ऑल वाइट्स, हमारे न्यूजीलैंड सॉकर टीम की जितनी भी गेम्स है ये फ्री टू एयर यह रहेंगी, लेकिन अगर आपको सभी गेम्स देखने हैं तो आपको इवेंट पास लेना होगा ऑन TVNZ प्लस। इसका ऐप आप डाउनलोड कर ले एंड पास खरीदने के बाद आप सभी मैचेस देख सकेंगे। थोड़ी देर में अपकमिंग मैचेस ऑफ फीफा वर्ल्ड कप इसके बारे में आपको हम बताएंगे।

0: driving you home? The Drive Show with Sandy and Rusby.
1: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
2: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
3: वो भी आई लव यू वाला।
2: मैडम ने पकड़ लिया, अभी यहाँ से किसने बनाया, वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
3: अच्छा आप दिलजीत हो?
2: आए आए बताओगे यार।
0: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaku.
4: At Kogan Mobile, we want to help Kiwis experience mobile Aussie style. That doesn't mean saying, yeah, nah, hey, gown, flyman, galah. It means texting emojis without being charged 50 cents and calling your mom without having to call your accountant first. Right now, get a 180 gigabyte yearly prepaid plan for just $240. That's 15 gigs of data per month for less than $21. So say you beauty to true Aussie value from Kogan Mobile. T's and C's apply.
5: Turn groceries into getaways, pit stops into points, and everyday spending into savings. Collect more rewards points with everyday rewards at Woolworths, Fresh Choice, BP, Gas, Petstock, and Milkrun. Join Everyday Rewards today.
6: Before you can vote, you need to be enrolled. We're making it easy, with Electoral Commission teams popping up at events and venues across Aotearoa New Zealand, so you can enrol, check, or update your details without any fuss. Find out where our teams will be at vote.nz.
7: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन्स।

जहाँ पर बहुत सारे वेब सीरीज अभी आप एंजॉय कर रहे हैं, टाइटन इज वन दैट आई वुड सजेस्ट कि आप इसे चेकआउट करें. एंड टॉकिंग अबाउट वेब सीरीज, इसे आप मोस्टली एंजॉय करते हैं ऑन OTT. OTT पर फिल्म रिलीज हुई है फ्राइडे को, भूत बंगला. एंड आई एम नॉट श्योर कितने लोगों ने इसको एंजॉय किया है. फॉर मी इट वॉज जस्ट क्रिंज फ्रॉम द स्टार्ट टू द फिनिश. इट टुक मी 3 सिटिंग्स to actually go through the movie, and I wasn't hooked on to this movie story, screenplay, or bahut hi feeble attempt tha by Priyadarshan to try to bring back the masala type entertainment that he used to do a few years ago. So main nahi janta ki aapko ye movie kitni achhi lagi, lekin Bhoot Bangla, I think this might be one of the worst movies of Akshay Kumar, if agar mujhe apna opinion dena ho to. But there might be people who think otherwise, to aapki soch aapko mubarak, meri soch mujhko mubarak. Waise web series aur movies ke alawa bahut sari short films hai that have left its mark on all the viewers, and some of them jo main name karna chahunga, Anuja. You can watch this on Netflix. इसके अलावा Notebook है, इसको भी आप Netflix पर देख सकते हैं. नसीरुद्दीन शाह की Half Full, ये भी आप Z5 पर enjoy कर सकते हैं. Date is another short movie जो आप देख सकते हैं Z5 subscription लेकर. और Period, End of Sentence 2018 में आई, इसे Netflix पर आप भी देख सकते हैं. Toothbrush is another मूवी जो आप देख सकते हैं ऑन Z5. और ड्राइविंग मी क्रेजी इज अनदर वेरी एंगेजिंग मूवी जो आप एंजॉय कर सकते हैं Z5 पर. इसके अलावा सीक्रेट इंग्रेडिएंट MIFF 2026 के लिए इसको शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है. एंड द टीम फ्रॉम रणवीर ब्रार, ही सेड दैट ही इज थ्रिल्ड टू शेयर दैट आवर फिल्म रामफेयर की कुल्फी सीक्रेट इंग्रेडिएंट has been officially selected at the 19th Mumbai International Film Festival under the International Short Film category या फिर competition category. तो इन्होंने अपने पूरे cast को धन्यवाद दिया है. and I would strongly suggest कि आप भी इसको check out करें, इसको अपना प्यार दें.

I hope it does well at the MIFF. So do check out. Ranveer Bra द्वारा present किया गया है, produce किया गया है इस movie को, और इसमें संजय मिश्रा को आप देख सकते हैं.

0: The Breakfast Show with VJ and Pooja.
1: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे.
2: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर.
3: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप. West side है ना, west side of Auckland है ये. I have lots of fun basically with the cold weather.
2: कौन है?
3: Hunua और Waitakere.
2: अच्छा, Hunua west में.
3: किधर है Hunua?
0: The Breakfast Show with VJ and Pooja.
4: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune.
0: Weekdays, 6 to 10 a.m.

0: भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: हम नॉनस्टॉप बॉलीवुड
2: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।
1: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स।

Hey, welcome back to Sunday Night Melodies, जहां पर मैं जिकाश आपका साथ देता हूं। Sunday Night Melodies में रविवार की रात 9 से 10 बजे के बीच में एक बहुत ही खूबसूरत सी दुनिया हम बनाते हैं गजलों की, और इस घंटे भी आपको हम एक से एक बेहतरीन गजल सुनाने वाले हैं। और आइए शुरू करते हैं विथ एवरीवन्स फेवरेट जगजीत सिंह के इस गजल से। और गजल से पहले एक कविता हमारे, एक शायरी हमारे हाथ लगी है बाय जॉन एलिया। इन्होंने लिखा है कि अर्ज है, नया एक रिश्ता पैदा क्यों करें हम, नया एक रिश्ता पैदा क्यों करें हम, बिछड़ना है तो झगड़ा क्यों करें हम, वफा इखलास कुर्बानी मोहब्बत, अब इन लफ्ज़ों का पीछा क्यों करें हम, हमारी ही तमन्ना करो तुम, तुम्हारी ही तमन्ना क्यों करें हम, किया था अहद जब लम्हों में हमने, किया था अहद जब लम्हों में हमने, तो सारी उम्र ईफा क्यों करें हम, नहीं दुनिया को जब परवाह हमारी, नहीं दुनिया को जब परवाह हमारी, तो फिर दुनिया की परवाह क्यों करें हम। वाह, ब्यूटीफुल।

0: Get ready, New Zealand. Hum is proud to bring you Stick with Hum, your chance to support the Vantage Black Sticks women at the upcoming FIH Hockey Women's Nations Cup. Experience world-class international hockey right here at home as top teams battle for glory. Plus, you could win a double pass to the games. Simply listen for the cue to call from your announcer, then text hockey to 5599 to enter. Stick with Hum and get behind our Vantage Black Sticks women.
1: पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हो या आप फ्यूचर की तरफ शिफ्ट कर रहे हो, स्मार्ट चॉइस अब सिंपल है. वे सिटी GWM हैवल. हैवल का हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड रेंज पे डिस्काउंट्स और सिर्फ 4.95% फाइनेंस ऑफर्स. आज ही वे सिटी ऑटो ग्रुप पहुँचे और जिमी टेलर और उनकी टीम से मिले. लिमिटेड टाइम ऑफर. टीज एंड सीज अप्लाई. फॉर मोर इन्फो विजिट वे सिटी ऑटो ग्रुप .nz और सर्च फॉर वे सिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल्स.
2: Looking for that unforgettable holiday in paradise? Fiji Airways is on sale now. Enjoy a stopover in sunny Fiji on your way to epic holiday destinations in the Pacific. Fly return to Samoa from just $795 or to Tonga return from only $735. Take that well-deserved holiday in Fiji and beyond with Fiji Airways. Sail on now. Book today at fijiairways.com or call your travel agent.
3: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ. बोली, बस मेरा फोकस है.
4: हाँ. अच्छा
3: बताओ तुम्हारा फोकस. फोकस साडा कुछ नहीं.
4: मिसेस सिंह.
5: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन ने.
6: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन फोकस किचन यूनिट के 33 वॉन्सली रोड ओटाहू. कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz.
7: दिल से दिल से दिल तक.
8: आज प्रोग्राम में हमने मातारीकी फेस्टिवल के बारे में कुछ बातें की थी. 10th of July को मातारीकी डे मनाया जाएगा. 4th July से सेलिब्रेशन शुरू हो जाएंगे, लेकिन कई जगहों पर सेलिब्रेशंस ये जुलाई महीने भर चलता रहेगा. एंड ओकलैंड में है तो बहुत सारी इवेंट्स की आयोजना की गई है. एंड अगर आपको हम बताने को आए तो आज 12 तक शायद समय कम पड़ जाएगा. तो एक वेबसाइट है, इसे आप नोट कर ले. यू विल गेट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट मातारीकी इटसेल्फ एंड 2026 में ओकलैंड में मातारीकी फेस्टिवल के लिए क्या हो रहा है, ये जानने के लिए आपको ये वेबसाइट विजिट करना बहुत ही ज़रूरी है. वेबसाइट है matarikifestival.org.nz. वंस अगेन matarikifestival.org.nz. बहुत ही ब्यूटीफुल वेबसाइट क्रिएट किया गया है. एंड यहाँ पर अबाउट मातारीकी आप एक टैब है, इसे आप हिट करेंगे देन यू लर्न ऑल अबाउट मातारीकी. इसके बाद में व्हाट्स ऑन, तो जितने भी इवेंट्स हैं फॉर मातारीकी दिस ईयर, कहाँ कहाँ पर क्या कुछ होने वाला है, कौन से फ्री इवेंट्स हैं, कौन से पेड इवेंट्स में आप भाग ले सकते हैं, ये सभी इवेंट्स इस पेज में आपको मिलने वाले हैं. इस मातारीकी फेस्टिवल में द पार्टनरिंग बिजनेसेस, पार्टनरिंग कंपनीज कौन कौन है और कौन होस्ट कर रहे हैं, ये सभी जानकारी आपको मिलने वाला है. तो यू कैन एक्चुअली प्लान आउट द स्कूल हॉलीडेज, क्योंकि स्कूल हॉलीडेज के दौरान ओकलैंड में मातारीकी फेस्टिवल्स के कई सारे इवेंट्स होने वाले हैं. हेड टू matarikifestival.org.nz. आइए डॉक्टर अदीबा अख्तर की आवाज़ में ये अगला गज़ल आपके लिए हम शामिल कर रहे हैं.

कोई गीत हो, कोई गजल हो, कोई नज्म हो, किसी तरह का भी संगीत हो, सोनू निगम इसको बाखूबी निभाते हैं। तो अगला गजल हम सोनू निगम की आवाज़ में सुनने जा रहे हैं, और इससे पहले एक और एक कविता मेरे हाथ लगी है जिसका शीर्षक है औरों की खातिर। हिंदी साहित्य से इस कविता को हमने निकाला है, औरों की खातिर। जो अपना ना बने मन से उसे भी कहना पड़ता है, जिंदगी को चलाने को साथ में रहना पड़ता है। कोई भी चोट लगती है दर्द तो लाजमी होगा, दवा दारू खूब कर लो लेकिन उसको सहना पड़ता है। दर्द इस धार के भी तो सदा दिल में रहे होंगे, देख लो औरों की खातिर इसे पर बहना पड़ता है। कोई मिट्टी का टीला हो या ढेरी कोई मैं की, बोझ बढ़ जाए जिसका भी उससे तो ढहना पड़ता है। जो जिसके पास है मधुकर वही बस काम आएगा, सर्प का देख लो शिव को बनाना गहना पड़ता है। सोनू निगम की आवाज़ें इस बार हम पर।

मूवीज देखना तो सभी पसंद करते हैं, लेकिन ऐसे कई सारे लोग हैं जो थिएटर, लाइव थिएटर भी उतना ही एंजॉय करते हैं, क्योंकि लाइव थिएटर में बहुत सारी मेहनत लगती है, रिटेक्स नहीं हो सकते, तो जो भी किरदार है अपने लाइंस को, अपने अदाकारी को परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ताकि जब वो स्टेज पर आए विदाउट एनी मिस्टेक अपने इमोशंस को पोर्ट्रे कर सके, उस कैरेक्टर को जिसको वो कैरी कर रहे हैं उसको ठीक तरह से आप तक पहुंचा सके। एंड सच अ थिएटर लगा हुआ है एट क्यू थिएटर इन ऑकलैंड। 20 जून तक अवार्ड विनिंग परफॉर्मर जेकब राजन MNZM ये स्टेज पर वापसी कर रहे हैं इन द वर्ल्ड प्रीमियर ऑफ बलून डॉग। ये बहुत ही मूविंग, बहुत ही टचिंग एंड अ वेरी टाइमली प्रोडक्शन है, इंस्पायर्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर्स बिलव्ड स्टोरी काबुलीवाला। अगर आप बलून डॉग देखने जा रहे हैं तो उससे पहले हो सके तो काबुलीवाला आप पढ़ ले, या फिर काबुलीवाला फिल्म भी आई थी ये देख ले, ताकि आपके दिमाग में बेसिक सा आइडिया हो कि आप क्या एक्सपेक्ट करने वाले हैं। लेकिन ये हूबहू काबुलीवाला स्टोरी नहीं रहेगा, इससे इंस्पायर्ड है। ये थिएटर इज सेट इन द 21st सेंचुरी इन ऑकलैंड एंड इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल। इट फॉलोज अ टेल जहाँ पर एक अनएक्सपेक्टेड दोस्ती हो जाती है एक 5-year-old बच्ची और एक लोनली माइग्रेंट वोका के बीच में, जिसके बाद में उनकी फैमिली बहुत ही हार्ड हिटिंग ट्रूथ का सामना करती है अबाउट देमसेल्व्स एंड द वर्ल्ड अराउंड देम। बलून डॉग ये बहुत ही पावरफुल सेलिब्रेशन है ऑफ करेज, कनेक्शन एंड सीइंग वन अनादर बियॉन्ड कल्चर, बियॉन्ड क्लास, बियॉन्ड स्किन कलर एंड बियॉन्ड सर्कमस्टांसेस। तो ये ब्यूटीफुल प्ले आप एंजॉय करें टिल 20 जून एट द क्यू थिएटर इन ऑकलैंड। iticket.co.nz पर आप टिकट्स खरीद सकते हैं, या फिर हमारे हम फेसबुक पेज पर जाए इस प्ले के लिए, बलून डॉग के लिए हमने एक वहां पर पोस्ट डाला हुआ है, उसके कमेंट्स में अपने फ्रेंड को टैग करें एंड यू विल गो इनटू द ड्रॉ टू विन डबल पासेस। इंडियन इंक थिएटर कंपनी की ये प्रस्तुति है जिसे आप ज़रूर इन्जॉय करने वाले हैं।

लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

104.2 FM और रोवर पर संडे नाइट मेलोडीज का कार्यक्रम जारी है। आप मेरे साथ दे रहे हैं, मैं हूं जिकाश। रात 12 तक यूं ही आपके साथ मैं यहां पर रहने वाला हूं। नाउ थोड़ी देर में बातें करेंगे अबाउट अ सॉर्ट ऑफ कंट्रोवर्शियल टॉपिक एंड देयर इज प्रिजंस। क्या प्रिजंस का साइज बढ़ाना चाहिए या फिर कम करना चाहिए, और इससे जुड़े कई सारी बातें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए। नाउ द प्रीवियस गवर्नमेंट वॉज ऑल फॉर रिड्यूसिंग प्रिजन साइजेस, प्रिजनर्स के नंबर्स को कम करना चाहती थी, पर कैसे? एंड द करंट गवर्नमेंट दे आर सेइंग कि अगर नीड हुआ तो नया प्रिजन्स बनाए जाएंगे। तो इसके बारे में आप सोचे और एक आर्टिकल पर हम गौर करेंगे, देखेंगे कि व्हाट वुड बी द बेस्ट फॉर न्यूजीलैंड एज अ होल। मैं हूं जिकाश, रात 10 बजने को आए हैं, दो घंटे तक और संडे नाइट मेलोडीज हम यहां पर एंजॉय करने वाले हैं। अभी आपने ट्यून इन किया है, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। क्योरा, स्वागत है आपका।

FIH Hockey Women's Nations Cup. FIH Hockey Women's Nation Cup ye shuru ho jayega from tomorrow till the 21st of June. Nocho mein ye event hone ja raha hai, ye competition hone ja raha hai jahan par 8 of the world's best teams aane wali hai, world class hockey aap enjoy karne wale hai right here in our backyard jahan par we can get behind our Vantage Black Sticks women as they defend their title on home soil. ये Women's Nations Cup North Harbour Stadium पर खेला जाएगा as I said 15 से 21 जून तक and we are proud to bring you Stick With Hum. इसके लिए आपको हम passes देना चाहते हैं और through that we want to pack the stands, make a lot of noise and get behind our women playing hockey. और tickets hockeynz.flickr.co.nz से आप ले सकते हैं एंड हॉकी लिखकर भेजे 5599 पर राइट नाउ HOCKEY विथ योर नेम भेजे 5599 पर यू विल गो इनटू द ड्रॉ टू विन डबल पास टू द गेम्स तो आपके साथ हम भी आने वाले हैं हमारी टीम आने वाली है टू वॉच दिस गेम्स एंड टू चीयर फॉर आवर ओन वेंटेज ब्लैक स्टिक्स वीमन तो गेट अलोंग विथ अस एंड लेट्स बी पार्ट ऑफ द एक्शन

hey, hey, hey.

0: वैसे FIH वीमेंस नेशंस कप में 8 टीमें भाग ले रही हैं। पूल ए में है इंडिया, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स और यूरुग्वे। पूल बी में न्यूजीलैंड, चिले, कोरिया और फ्रांस की टीमें हैं। 15th से खेल शुरू होगा। 15th को 6 PM पर न्यूजीलैंड और कोरिया आमना सामना करेंगी। 16th को न्यूजीलैंड और चिले, 18th को न्यूजीलैंड और फ्रांस, और 2025 को फाइनल्स खेले जाएंगे। दीज आर द की मैचेस फॉर न्यूजीलैंड। और भी खेल जैसे जैसे होते रहेंगे, इसके बारे में जानकारियां आप तक हम पहुंचाते रहेंगे।
1: You're listening to Chikash.
2: Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Let's start the fun.

हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।

0: प्लेज एंड थिएटर बहुत सारे हमारे आसपास हो रहे हैं एंड अनदर एक्साइटिंग वन इफ यू आर अ गुजराती यू विल एब्सोल्युटली लव दिस वन. अगर आपको गुजराती समझ में आती है तो भाई आपके लिए आ रहे हैं द लेजेंडरी सिद्धार्थ रंडेरिया लाइव हियर इन ऑकलैंड. प्रीमियर टिकट्स .co.nz पर जाए और लुक फॉर गुज्जू भाई नी एक्सचेंज ऑफर. ये लाइव ऑन स्टेज परफॉर्मेंस होने जा रहा है स्टेयरिंग द लेजेंडरी सिद्धार्थ रंडेरिया, जहां पर ये धमाका करने वाले हैं इन हिज ब्रैंड न्यू कॉमेडी. गुज्जू भाई फाइंड्स हिमसेल्फ कॉट अप इन एन अनयूजुअल एक्सचेंज ऑफर, जहां पर बहुत सारे बीटी डायलॉग्स, रिलेटेबल फैमिली मोमेंट्स और क्लासिकल गुजराती ह्यूमर आप एंजॉय करने वाले हैं फॉर द होल फैमिली. तो कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, पूरी फैमिली के साथ में आप एक क्लीन कॉमेडी एंजॉय कर सकते हैं. स्पेशली इफ़ यू नो सिद्धार्थ रंडेरिया, यू नो कि जब भी ये परफॉर्म करते हैं तो बस मन और दिल को खुश कर देते हैं. 7:30 PM 3 जुलाई को ये विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर पर होने वाला है ऑकलैंड में. प्रीमियर टिकट्स .co.nz इज द प्लेस टू गेट योर टिकट्स.
1: हम पर आपके साथ हैं जिकाश.

0: Punjabi swag is on.
1: Hey, hey.

0: Radio.
1: Streaming on Rover.
2: Non-stop Bollywood.
3: जो भी करते हैं शिद्दत के साथ करते हैं।

बीते हुए पलों के बारे में चिंता करने से आप आने वाले पलों के साथ ज्याती कर रहे हैं, नाइंसाफी कर रहे हैं। हाँ, बीते हुए पल से अगर आप सीख कर आगे बढ़ते हैं तो ये आपके आने वाले कल को बदल सकता है। इसी छोटे से सोच के साथ में आइए शुरू करते हैं द फाइनल आवर ऑफ संडे नाइट मेलोडीज। मैं हूँ जिकाश, रात 12 तक हम यहाँ पर आपके साथ में बने रहेंगे। फाइनल आवर हो जाता है तो आप तो जानते हैं कि मेरे साथ में आप इंजॉय करते हैं टाइमलेस क्लासिक्स, कुछ सेमी गोल्ड मूवीज के कुछ सेमी गोल्ड गाने आपके लिए हम यहाँ पर लाइनअप करके लाते हैं और बस गीत ही गीत संगीत आपको हम सुनवाते हैं ताकि आप प्रॉपरली अनवाइंड कर सके, लेटिंग गो ऑफ ऑल द टेंशन ऑफ लास्ट वीक और हेल्पिंग यू गेट मोर एनर्जी, हेल्पिंग यू रेस्ट फॉर द वीक अहेड। तो स्वागत करते हैं आपका, दिल इस्तकबाल करते हैं आपका ऑन 104.2 FM एंड ऑन रोवा। आशा करते हैं कि दिस आवर विल हील यू इन सम वे। तो एंजॉय करें, आपके साथ हम भी एंजॉय करने के लिए तैयार हैं। किया ओरा।

एक नज़र जर से डाल लेते हैं फॉर दी वीक अहेड इन टर्म्स ऑफ वेदर. आज तो ख़त्म होने ही वाला है, कल मंडे 15th ऑफ जून फाइन ही रहने वाला है मौसम. अ बिट क्लाउडी इन द मॉर्निंग और उत्तर पूर्व की ओर से हवाएं चलने वाली है, डाइंग आउट इन द मॉर्निंग एज वेल. कल दिन में टेम्परेचर 17 डिग्रीज जाएगा, ओवरनाइट टेम्परेचर 10 डिग्रीज होने वाला है. मंगलवार के लिए बादल घिरने लगेंगे एज वेल एज फॉर वेंसडे, तो मोस्टली क्लाउडी, शावर्स इन द मॉर्निंग अदरवाइज फाइन. बुधवार के लिए शावर्स डेवलपिंग इन द इवनिंग, सम हैवी शावर्स पॉसिबल ऑल्सो फॉर वेंसडे. तो ट्यूजडे वेंसडे बादल और बारिश का समय रहने वाला है. 16 डिग्रीज दिन में टेम्परेचर, ओवरनाइट 9 डिग्रीज टेम्परेचर रहेगा. बृहस्पतिवार को थर्सडे को मौसम साफ होने लगेगा, मेनली फाइन, चांस ऑफ आ शावर, थोड़ी मोरी बारिश होगी, अन्यथा मौसम साफ ही रहने वाला है. बादल और धूप ये आप दिखने वाले हैं फॉर थर्सडे. शुक्रवार होते होते बादल भी हट जाएंगे और शुक्रवार के लिए एकदम औसम मौसम होने का अनुमान लगाया गया है. आई विश, आई होप सो, ताकि वी डाइव इन टू नेक्स्ट वीकेंड विथ ग्रेट वेदर. फ्राइडे को घाम या फिर धूप आप दिखने वाले हैं. दिन में टेम्परेचर 16 डिग्रीज, ओवरनाइट 8 डिग्रीज. तो फॉर द वीक मंडे से फ्राइडे के लिए टेम्परेचर 16 डिग्रीज तक एवरेज करेगा दिन में, ओवरनाइट टेम्परेचर 8-9 डिग्रीज रहने वाला है. ट्यूजडे वेंसडे को बारिश होगी, अन्यथा बाकी सारे रोज बदली, फ्राइडे को धूप आप एंजॉय करने वाले हैं. मेक श्योर यू डू योर नेसेसरी अरेंजमेंट्स अकॉर्डिंग टू द वेदर.

0: ई भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने।
1: Do you know why so many of your neighbors are installing a shower dome shower top? Just watch the demo video at showerdome.co.nz. You'll see how a shower dome stops steam misting up your mirrors, stops mold and mildew, and saves energy. No extractor fans required. The best thing you can do for your home is install a shower dome. Available now from your local installer.
2: Shower dome.
3: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
4: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
3: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800-46-26-26 today.
4: Available at selected branches. T's and C's apply.
5: Everything you love about Auckland is about to get closer than ever before when the City Rail Link opens this year. New stations will make getting into the city and across Auckland easier and more convenient because all those trains, buses and ferries, they're connecting to make one super simple network. Night out with friends? See you there. Favourite band in town? Let's go! The new City Rail Link will make it all happen. Search ATCRL to discover more. So, where will you go?
6: अरे सुनो, मुझे इस डोसा बैटर के साथ फ्री कंटेनर मिला।
7: फ्री कंटेनर तो अच्छा है, लेकिन डोसा कैसा था?
6: डोसा तो ठीक ही था, लेकिन कंटेनर देखो कितना अच्छा है।
7: फ्री गिफ्ट्स लोग भूल जाते हैं, असली टेस्ट के लिए ही वापस आते हैं। इंट्रोड्यूसिंग द न्यू चटनी रेंज फ्रॉम अम्मास फूड। ट्रेडिशनल कोकोनट, टैंगी टोमेटो और क्रंची पीनट चटनी, परफेक्ट विद अम्मास इडली और डोसा बैटर। अम्मास फूड, 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव। नाउ अवेलेबल एट ग्रोसरी स्टोर्स नियर यू।
8: Ready to escape and get rewarded with Singapore Airlines? Book your getaway with special fares to destinations across Europe, Asia and beyond and receive a bonus $150 Prezi card when you book online using your MasterCard. That's an extra $150 to spend in Singapore, Thailand, Vietnam, Delhi, London and more. Escape the cold and book your 2026 getaway today at singaporeair.com. Hurry, deals end June 26. T's and C's apply.

कार्यक्रम में और भी आगे बढ़ते हैं। ऑल ब्लैक्स के बारे में बातें करें तो इनका टेस्ट मैच बस बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। द फर्स्ट वन विल बी प्लेड ऑन 4th of July, अभी से लगभग 2-3 हफ्ते बाद ये खेल खेला जाएगा। फ्रांस के अगेंस्ट खेल रहे हैं एट 1 न्यूजीलैंड स्टेडियम क्राइस्टचर्च में। तो क्या हमारी टीम तैयार हो जाएगी? अभी तो सुपर रग्बी पैसिफिक भी नहीं ख़त्म हुआ है, फाइनल ये सैटरडे को खेला जाएगा। उसके बाद जो खिलाड़ी चोट चपेट जिनको नहीं लगी है तो उनमें से टीम बनाया जाएगा फॉर द ऑल ब्लैक्स टू प्ले अगेंस्ट फ्रांस। तो आई होप द फाइनल्स दे डोंट बी इट डजेंट प्रूव टू बी टू ब्रूटल फॉर द प्लेयर्स। बिना चोट चपेट लगे अगर खिलाड़ी बच के निकल जाते हैं फाइनल से तो होपफुली विल एंड अप मेकिंग अ गुड टीम फॉर आवर ऑल ब्लैक्स। लेकिन अभी भी विल जॉर्डन, वोलस सतीथी ऐसे खिलाड़ी बहुत दे आर इन द शेडोज कि क्या विल दे मेक इट इनटू द फर्स्ट टेस्ट मैच फॉर ऑल ब्लैक्स अगेंस्ट फ्रांस। तो देखते हैं क्या होता है आफ्टर द फाइनल्स नेक्स्ट वीक और होपफुली वी गेट सम प्रोमिसिंग टैलेंट shortlisted for the match against France. So 4th July ko pehla test match hoga against France. Phir Saturday 11th July ko Henry Stadium Wellington mein All Blacks are playing against Italy, and 18th July ko Eden Park par All Blacks are playing against Ireland. So a bumper of matches lined up for All Blacks. I think it will be good for our upcoming team or for our new team to build up for Rugby World Cup 2027.

0: मुझसे प्यार करती हो, कि तुम्हें मुझसे इश्क है?
1: मुझे शर्म आती है।
0: देखो तुम नहीं कहोगी तो मेरी जान निकल जाएगी।
1: I love you.
2: Yeah!

0: सैंडी एंड्रस पे, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती है रॉ, इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के।
1: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ आते हैं।
0: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड्रस पे ऑन रोवा, स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट।

ओके, मेरा तो जाने का समय हो चुका है. थैंक यू सो मच आज आपने हमारा साथ दिया, एंड ऑफ कोर्स कल भी आपने हमारा साथ दिया था इन रेडियो पब. तो आप साथ होते हैं तो मेरा वीकेंड और भी एक्साइटिंग हो जाता है, क्योंकि आपके ज़रिए हमें भी ढेर सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, एंड आई ऑल्सो गेट टू अपडेट माई सेल्फ अबाउट थिंग्स हैपनिंग ऑल अराउंड अस. तो थैंक यू सो मच आपके साथ के लिए. आशा करते हैं कि कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा. अगर आपके पास टिप्स है, अगर आपके पास कोई भी फीडबैक है, यू कैन सेंड इट टू 5599. अच्छे बुरे कोई भी, हम कोशिश करेंगे कि हम अपना प्रोग्राम और भी बेहतर करते रहे, कंटिन्यूसली इम्प्रूविंग, ताकि वी गेट टू अचीव बेटर थिंग्स इन लाइफ, टू बिकम द बेस्ट. ये हमारा मोटो होना चाहिए इन लाइफ. तो मिलते हैं अगले शनिवार को विद अनदर सेगमेंट ऑफ रेडियो पब ऑन द 20th ऑफ जून. तब तक के लिए यू गाइज हैव अ ग्रेट वीक अहेड. जो भी करे, मेक श्योर कि आप सेफ्टी को प्राथमिकता दें. ऑलराइट, हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी चोट, कोई भी प्रॉब्लम्स में आप आए. हंसते खेलते एक सुखद और सेफ वीक आप स्पेंड

0: driving you home. The Drive Show with Sandy and Rusby.
1: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
2: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
3: वो भी आई लव यू वाला।
2: मैडम ने पकड़ लिया भी, हाँ किसी ने बनाया, वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
3: अच्छा आप दिलजीत हो?
2: आए आए बताओगे यार।
0: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaku.

0: के दिन चाहे 20 को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माई एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशंस, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वी हैव गॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755। मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार।
2: क्यों, क्या हुआ?
1: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था, $20,000 चाहिए थे। बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत। एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स। फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में। गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है।
3: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री। कॉल 0800 LOGIC G, दैट्स 0800-564-424।
4: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम।
5: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
4: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
5: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
4: दैट्स नॉट गुड। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
6: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 years.

0: वो दिन जब मोहब्बत खतों में होती थी।
1: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता, महसूस

0: इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो।
1: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
2: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजन आशिमा कॉल ऑन 09279 439 or visit legalassociates.co.nz.
3: Playing Bollywood's biggest hits.
4: Budget gaane.

0: Night Flight on Hum.
1: Listen up, yo. It's Valentine's Day.
2: Groove.

हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।

परास की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है। मेरी दुनिया अबार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
1: Keep calm because Punjabi swag is on.

0: Radio.
1: Streaming on Rover.
2: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार.
3: क्यों, क्या हुआ?
2: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था. $20,000 चाहिए थे. बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत. एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
4: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 0800 LOGIC G, दैट्स 0800-564-424.
5: रेडियो पे गानों की फरमाइश की जा सकती है, अपनों के नाम संदेश भेजे जा सकते हैं, मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना. उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं. कशिश प्रीमियम बासमती राइस. ईट बेटर, लिव बेटर. फ्रॉम मोर इन्फॉर्मेशन लॉग इन टू www.kashishfood.co.nz. अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स.
6: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
7: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है. सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स.
8: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी. फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 0927-99439 और विजिट लीगल एसोसिएट्स.co.nz.

0: भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: अरे सुनो, मुझे इस डोसा बैटर के साथ फ्री कंटेनर मिला।
2: फ्री कंटेनर तो अच्छा है, लेकिन डोसा कैसा था?
1: डोसा तो ठीक ही था, लेकिन कंटेनर देखो कितना अच्छा है।
2: फ्री गिफ्ट्स लोग भूल जाते हैं, असली टेस्ट के लिए ही वापस आते हैं।
3: इंट्रोड्यूसिंग द न्यू चटनी रेंज फ्रॉम अम्मास फूड। ट्रेडिशनल कोकोनट, टैंगी टोमेटो और क्रंची पीनट चटनी, परफेक्ट विद अम्मास इडली और डोसा बैटर। अम्मास फूड, 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव। नाउ अवेलेबल एट ग्रोसरी स्टोर्स नियर यू।
4: The beat of Bollywood.
5: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है।

0: पे, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती हैं रॉ, इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के।
1: राजा मंत्री चोर सिपाही सब यहाँ थे।
0: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पे ऑन रोवा, स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट।
2: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है। जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है। हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है। We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and On-Site Cremations, 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 0927-88600.
3: अरे सुनो, मुझे इस डोसा बैटर के साथ फ्री कंटेनर मिला।
4: फ्री कंटेनर तो अच्छा है, लेकिन डोसा कैसा था?
3: डोसा तो ठीक ही था, लेकिन कंटेनर देखो कितना अच्छा है।
4: फ्री गिफ्ट्स लोग भूल जाते हैं, असली टेस्ट के लिए ही वापस आते हैं।
5: इंट्रोड्यूसिंग द न्यू चटनी रेंज फ्रॉम अम्मास फूड, ट्रेडिशनल कोकोनट, टैंगी टोमेटो और क्रंची पीनट चटनी, परफेक्ट विद अम्मास इडली और डोसा बैटर। अम्मास फूड, 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव, नाउ अवेलेबल एट ग्रोसरी स्टोर्स नियर यू।

0: driving you home. The Drive Show with Sandy and Rusby.
1: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
2: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
3: वो भी आई लव यू वाला।
2: मैडम ने पकड़ लिया भी हाँ किसने बनाया, वो एक लड़की थी वो बोलती जहाज तो दूसरी बना रहा था बेटा।
3: अच्छा आप दूसरी तो
2: आए आए बताओगे यार।
0: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
4: Ma, ek chupati hoti na? Haan, ek chupati mujhe bhi.
5: Jab kashish desi ghee se khana banega, to yahi to hoga. New Zealand mein most advanced technology se bana. Grass fed danedar cow ghee. जब खाने में होगी इतनी शुद्धता इतना स्वाद तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा।
4: मुझे भी।
5: कशिश प्योर देसी घी अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड। खुशियाँ पकाएं, खुशियाँ खिलाएं।
0: Playing Bollywood's biggest hits.

मीराबाई से लोगों ने प्रश्न किया कि चलो हमने माना कि तुमने गोविंद मोल लिया, तो जब भी कुछ मोल लिया जाता है तो उसका कुछ मूल्य होता है, तभी तो खरीदा जाता है। तो तुम्हारे गोविंद का मूल्य क्या है हमें भी बता दो, हम भी खरीद लाए। अब मीराबाई का भक्तिपूर्ण उत्तर सुन

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
3: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप। West side है ना, west side of Auckland है ये। I have lots of fun basically with the cold weather।
2: कौन है?
3: Hunua और Waitakere।
2: अच्छा Hunua west में?
3: किधर है Hunua?
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja,
4: brought to you by Fortune, with whole grains and essential vitamins. Fortune fuels everyone, big or small. Bring home the fortune.
0: Weekdays 6 to 10
5: a.m. Oh my! Great South Road, greater than ever.
6: South Auckland's buses just became a lot better.
5: Weymouth Road, way better buses.
6: With better bus routes, more frequent buses, more early morning and late night buses, and more.
5: Woody? No worries. MIT? A-OK.
6: Search AT Better South Auckland Buses for details.
5: Airport? Got your transport.
6: Then turn up and go.
7: A story of love, memory and longing against the backdrop of the partition of India.
8: ये हो सकता है अपने दिल के अंदर एक लड़की को रखना जिसे 78 years से देखा तक नहीं।
7: Director Imtiaz Ali's romantic period drama मैं वापस आऊंगा, starring Diljit Dosanjh, Nasiruddin Shah, Shalmari Bagh and Vedang Raina.
8: ये प्यार जहर की तरह होता है, पता है? इसकी एक भी बूंद अंदर रह गई ना तो ये आखिरी समय में चैन से मरने भी नहीं देता।
7: मैं वापस आऊंगा, now showing in cinemas. Distribution partner Forum Films. Rating TBC.
9: दादी के हाथ की चूरी हो या माँ के हाथ के पराठे, सबका फेवरेट हलवा हो या तवे पे फूली हुई रोटी, हर याद में बसी है कशिश चक्की फ्रेश आटा की वही मीठी खुशबू जो दिल भी जोड़े रिश्ते भी। Eat better, live better now with Kashish Chakki Fresh Atta and Multigrain Atta. Available in all leading stores nationwide. www.kashishfoods.co.nz.
10: At Kogan Mobile, we want to help Kiwis experience mobile Aussie style. That doesn't mean saying, yeah, nah, hey, go on, flyman galah. It means texting emojis without being charged 50 cents and calling your mom without having to call your accountant first. Right now, get a 180GB yearly prepaid plan for just $240. That's 15 gigs of data per month for less than $21. So say you beauty to true Aussie value from Kogan Mobile. T's and C's apply.
7: Snooze and save at the Beds RS Winter Sale on now with up to 50% off selected Sleepyhead beds. Get 50% off Serenity Eden queen size now from 2799. Check out these deals and more at Beds RS Manukau and Pukekohe, where dreams begin.
11: Nissan Big Deals सिर्फ 22 जून तक, सिलेक्ट न्यू नवारा मॉडल्स पर पाइए $5,000 तक की बचत प्लस एक्सेसरीज भी। टेक एडवांटेज विद द बिग वन ऑन X-Trail एंड डिस्कवर द पेट्रोल V8 बैक्ड बाय Nissan's अप टू 10 ईयर वारंटी। T's and C's apply.
0: हम टाइम चेक, हम न्यूज़, ब्रॉट टू यू बाय लॉजिक फाइनेंस लिमिटेड, चेंजिंग लाइव्स विद लॉजिक।
12: Morning, I'm Grace Cocker with the latest at 6. A new study suggests proposed move-on orders will create a pipeline into prison for children as young as 14. Author Neville Pearce says there should be a focus on creating safe, suitable and supportive housing instead.
13: Seriously reconsider how to do this from start to finish and more move towards a model that helps youth rather than harms them.
12: The next wave of grocery price increases may still be around the corner. The latest Infometrics foodstuff supplier costs rose 2.2% in May. Economist Brad Olson expects more to come.
14: There's still a lot of uncertainty as well over just how long the lag might be to show those full cost impacts, but also just how large or not they might be as well.
12: The largest study of paediatric palliative care undertaken in New Zealand is entering its next stage. Spokesperson Gemma Ayburn says families dealing with this are underrepresented.
15: We are interested to speak to any family that has experience of caring for a child with palliative care needs currently, or those bereaved families that have had a child die in the last 5 years.
12: Iran's chief negotiator warns the US that if it won't fulfil its commitments, there's no point continuing. He's referring to a strike in Beirut that Israel says targeted a Hezbollah command centre. President Trump says Israel's attack should not have happened, particularly on a day where their deal with Iran is so close. To motorsport with Megan Turbo, home of the free steelies with Muds.
16: It's more history for Hamilton. Lewis Hamilton wins a Grand Prix for Ferrari.
12: Lewis Hamilton's won his first F1 race for Ferrari at the Barcelona Barcelona Catalunya Grand Prix. Liam Lawson was ninth for RB. And tickets for Saturday's Super Rugby final between the Hurricanes and Chiefs in Wellington go on sale to the public at 6 p.m. tonight.
0: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill.
17: Hum par shok suchnaye aap tak late hai. Anne's Funeral Home and On-Site Cremations.
2: सूचित किया जाता है कि मोटा गुजरात के स्वर्गीय भिकू भाई टेलर की पत्नी यानी महेंद्र चंद्रकांत सुशीतला बेन हेमलता बेन और चंद्रिका की मां लिनफील्ड की मंजुला बेन भिकू भाई टेलर की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई. अंतिम संस्कार कल 1 बजे एन्स फ्यूनरल होम एंड ऑन साइट क्रिमेशंस 11 बोल्डउड प्लेस वीरी में किया जाएगा. जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 0274-202-441 पर संपर्क कर सकते हैं. मोटा गुजरात के स्वर्गीय भिकूभाई टेला की पत्नी यानी महेंद्र चंद्रकांत सुशीतला बेन हेमलता बेन और चंद्रिका की मां लिनफील्ड की मंजुला बेन भिकूभाई टेला की मृत्यु हो गई. अंतिम संस्कार कल 1 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑन साइट क्रिमेशंस 11 बोल्डउड प्लेस वीरी में किया जाएगा. जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 0274-202-441 पर संपर्क कर सकते हैं. सूचित किया जाता है कि शैलेंद्र सेम निव और ईश्वनी के पिता यानी बिंदमती के पति सिंगटोका के भूतपूर्व निवासी सिंक्स लोयस के मंगल सिंह की मृत्यु हो गई. अंतिम संस्कार बुधवार को 1 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑन साइट क्रिमेशंस 11 बोल्डउड प्लेस वीरी में किया जाएगा. जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 021-663-101 पर संपर्क कर सकते हैं. शैलेंद्र सेम नेव और शिवानी के पिता यानी बिंदमती के पति सिंगटोका फिजी के भूतपूर्व निवासी सिंक्स लोयस के मंगल सिंह की मृत्यु हो गई. अंतिम संस्कार बुधवार को 1 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑन साइट क्रिमेशंस 11 बोल्डउड प्लेस वीरी में किया जाएगा. जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 021-663-101 पर संपर्क कर सकते हैं. लोटोका फिजी के भूतपूर्व निवासी और शक्ति एंड कंपनी के मालिक न्यूलिन ऑकलैंड के स्वर्गीय शक्ति प्रसाद की पत्नी यानी माला रक्षा और सीमा की मां सत्यावती प्रसाद की मृत्यु हो गई. अंतिम संस्कार शुक्रवार को 1 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑन साइट क्रिमेशंस 11 बोल्डउड प्लेस वीरी में किया जाएगा. जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 0210-647-520 पर संपर्क कर सकते हैं. लोटोका फिजी के भूतपूर्व निवासी और शक्ति एंड कंपनी के मालिक न्यूलिन ऑकलैंड के स्वर्गीय शक्ति प्रसाद की पत्नी यानी माला रक्षा और सीमा की मां सत्यावती प्रसाद की मृत्यु हो गई. अंतिम संस्कार शुक्रवार को 1 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑन साइट क्रिमेशंस 11 बोल्डउड प्लेस वीरी में किया जाएगा. जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 0210-647-520 पर संपर्क कर सकते हैं. रवि रविम्बा के भूतपूर्व निवासी माउंट वेलिंगटन के रामबरन के भाई यानी मैंगरी के नवनीत करण पिंकी नीली और पूनम के पिता मैंगरी के जयकरण प्रसाद की मृत्यु हो गई. अंतिम संस्कार बुधवार को 1 बजे मैंगरी लोन शमशान भूमि 85 मैकेंजी रोड मैंगरी में किया जाएगा. जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 0210-834-3575 पर संपर्क कर सकते हैं. रवि रविम्बा के भूतपूर्व निवासी माउंट वेलिंगटन के रामकरण के भाई यानी मैंगरी के नवनीत करण पिंकी नीली और पूनम के पिता मैंगरी के जयकरण प्रसाद की मृत्यु हो गई. अंतिम संस्कार बुधवार को 1 बजे मैंगरी लोन शमशान भूमि 85 मैकेंजी रोड में किया जाएगा. जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 0210-834-3575 3575 पर संपर्क कर सकते हैं।
17: शोक सूचनाएं वीकडेज पर सुबह 6 तथा 11 बजे, शाम 6 बजे और वीकेंड्स पर दोपहर 12 बजे पर प्रसारित की जाएगी।
0: नॉन स्टॉप बॉलीवुड
18: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
2: 11.5 degrees temperature Auckland mein aap feel kar rahe hain. Aaj ka high 17, overnight kam se kam 10 degrees rahega. Badal chhaye rahenge. Subah ke waqt reh kar kuch halki barish ho sakti hai. Sunrise 7:31 AM par aur sunset aaj ka sham 5:12 par hoga.
0: Show with Vijay and Pooja.
4: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
0: Breakfast catch up.
2: गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका, वेलकम टू द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा। आज मंडे है, 15th ऑफ जून की ये सुबह। सबसे पहले आपको गुड मॉर्निंग।
3: गुड मॉर्निंग, नमस्ते, आप सभी को भी अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज की सुबह की ढेरों सारी शुभकामनाएं हमारी ओर से।
2: उम्मीद है सप्ताहांत आपका अच्छा गया होगा और एक नए दिन के लिए, एक नए वीक के लिए आप एक्साइटेड होंगे और तैयार होंगे।
3: Absolutely, आज की सुबह को जबकि आपके नाम हम कर रहे हैं तो जहाँ के भी आप है साथ हमारा दे रहे हैं उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर हमारी ओर से।
2: आज तमाम चीजों के बारे में बातें होंगी और इनमें फीफा वर्ल्ड कप पर लेटेस्ट अपडेट्स, आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप भी शुरू हो चुका है सप्ताहांत, इस पर भी जानकारियां और कई अन्य खबरें, इनाम जीतने के मौके और आपके फेवरेट ट्रैक्स का 4 घंटों का ये सफर अब हम शुरू कर रहे हैं। और हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स 104.2 FM और रोवा पर आप हमारा साथ दे रहे हैं, इसके लिए थैंक यू सो मच।

0: सनी साइड अप।
1: आज का जो सनी साइड अप आपके लिए हम लेकर आए हैं, दिस इज इमोशनल बट ऑन द अदर साइड अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी एज वेल। सो ये जो घटना है, ये अपेरेंटली घटी थी वर्जीनिया स्टेट यूनाइटेड स्टेट्स में, और ये जो कहानी है इट वेंट वायरल इन 2019। और 2019 के बाद कहीं ना कहीं ये कहानी जो है लोगों के सामने आए दिन आ ही जाती है। इट इज़ अबाउट दिस पर्टिकुलर पर्सन जिनका नाम चेस्टिसिटी पैटरसन जो है, ये बताया गया है। चेस्टिसिटी के बारे में बताया गया है कि दिस हैपेंड विद हर इन 2014। अपने पिता को खोने के बाद इनके लिए एक बहुत मुश्किल दौर था उस इमोशन से गुजरना, दैट ही हर डैड इज बेसिकली नो लॉन्गर विद हर। सो टू कोप अप विद दिस ग्रीफ जो इनके अंदर था, नियरली एवरी डे ये अपने पिता के पुराने फोन पर एक टेक्स्ट मैसेज करती थी, अपडेटिंग हिम अबाउट हर लाइफ, हर अचीवमेंट्स, हर स्ट्रगल्स, हर माइलस्टोन। और ये जो मैसेज है एक तरीके से इनके लिए एक कोपिंग मैकेनिज्म बन गया, जहां पर इट हेल्प्ड हर बेसिकली टू फील कनेक्टेड टू हर डैड इवन दो ही पास्ड अवे। फॉर इयर्स ये बिना किसी रिस्पॉन्स के इनको हमेशा मैसेज करते रहते, इस नंबर पर अपना मैसेज जो है कि भेजती रहती थी। देन ऑन द ईव ऑफ हर फादर्स बर्थडे इनको इनके पिता के नंबर से एक मैसेज आया। द रिप्लाई केम फ्रॉम अ मैन नेम ब्रेड। ब्रेड जिनको इनके पिता के मरने के बाद इनके पिता का जो नंबर है ये असाइन हो गया था। He explained that he had been quietly receiving and reading her messages and wanted her to know that he had touched, basically she had touched him deeply. Brad ne Chesticity ko bataya ki while he never had met her father, he had followed her journey through her text. Matlab bhale wo Chesticity ke pita se kabhi mile nahi, lekin jis tarah se unke paas wo messages aate the, unhone inki journey jo hai basically wo follow ki hai. और वो एडमायर करते हैं इनके स्ट्रेंथ को कि इन्होंने किस तरह से इस चीज के साथ डील किया आफ्टर लूजिंग हर डैड। ही शेयर्ड कि इनका ये जो मैसेज है ऑफन इनको इंस्पायर करता है, हेल्प करता है थ्रू डिफिकल्ट मोमेंट्स इन हिज ओन लाइफ। एक हार्टफेल एक्सचेंज में इन्होंने ये बताया कि ये जो सिचुएशन इनके साथ हुआ बेसिकली वो भी कहीं ना कहीं ग्रीफ से ही गुजर रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी को कुछ साल पहले गंवाया था। एंड What actually happened was, it was quite unexpected जब इनके पास ये messages आने शुरू हुए, और इन्होंने इतने साल में, I think 4 years तक continuous ये message इनका exchange हो रहा था, not exchange हो रहा था, 4 years तक Chesticity ने इनको message किया without a reply, और 4 सालों बाद जब इनके पास एक reply आया और इनको पता चला कि the other side there was someone who was reading her messages very patiently, very quietly, और उनके हर एक emotion को समझ रहा था, who had lost her daughter, his daughter basically, तो इनके लिए ये बहुत ही एक emotional situation था to deal with. So जब ये कहानी सामने आई, Chesticity apparently इन्होंने screenshots लिए इनके message के जो Brad ने इनको भेजा, और उस message को इन्होंने online जो है ये डाला, जिसके बाद चलकर it quickly went viral and millions of people जो है they were moved by the stranger's compassion and comfort, जिस तरह से उन्होंने अपने शब्दों में Chesticity को ये कम्फर्ट जो है ये प्रोवाइड किया। बट वट पीपल रेजोनेटेड विद मोस्ट वॉज जो बेसिकली ग्रीफ से दोनों गुजर रहे थे, जिस दर्द से दोनों गुजर रहे थे, और जिस तरीके से उन्होंने एक दूसरे को अपना अपना सहारा दिया इन डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस। सो दिस बिकेम अ ब्यूटिफुल स्टोरी विच हैड टच्ड अ मिलियन ऑफ पीपल बेसिकली, उनके दिलों को इस कहानी ने छुआ। और फिर वो ही जो बात होती है ना कि कभी कभी कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो आपकी लाइफ का हिस्सा नहीं होते, जो आपके लिए अनजान होते हैं, पर उनका एक जो एक्शन होता है, उनका एक तरीका होता है आपसे बात करने का, या आपके लिए कुछ ऐसा कर देना विच बेसिकली चेंजेस योर लाइफ।
2: एग्जैक्टली, जिंदगी एक सफर है, और सफर में अलग अलग पड़ाव होते हैं, कभी धूप कभी छाव, और इस सफर में कई हम सफर भी हमें मिलते हैं, कुछ जाने कुछ अनजाने, कुछ खुशियाँ लाते हैं कुछ दुख देते हैं, और कुछ हमको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हैं। और अपने लिए भी वही बात है कि हम भी किसी के लिए जाने, किसी के लिए अनजाने, किसी के लिए सुख, किसी के लिए दुख, और किसी के लिए इंस्पिरेशन बन जाते हैं।
3: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
4: Hey, देखो मैं आ गए।
3: Get ready, New Zealand. Hum is proud to bring you Stick with Hum, your chance to support the Vantage Black Sticks women at the upcoming FIH Hockey Women's Nations Cup. Experience world-class international hockey right here at home as top teams battle for glory. Plus, you could win a double pass to the games. Simply listen for the cue to call from your announcer, then text hockey to 5599 to enter. Stick with Hum and get behind our Vantage Black Sticks women.
0: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार.
4: क्यों, क्या हुआ?
0: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था. $20,000 चाहिए थे. बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत. एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
3: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 0800 लॉजिक जी, दैट्स 0800 564 424.
5: रेडियो पे गानों की फरमाइश की जा सकती है, अपनों के नाम संदेश भेजे जा सकते हैं, मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना। उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं। कशिश प्रीमियम बासमती राइस, ईट बेटर लिव बेटर. फ्रॉम मोर इन्फॉर्मेशन लॉग इन टू www.kashishfood.co.nz. अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स.
6: When you're finishing off that DIY project this weekend, remember to have a hmm and ask yourself, if you get hurt, who gets harmed? Find out more at acc.co.nz.
7: Snooze and save at the Beds RS Winter Sale on now with up to 50% off selected Sleepyhead beds. Get 50% off Serenity Eden Queen Size now from 2799. Check out these deals and more at Beds RS Manukau and Pukekohe, where dreams begin.
8: Jen didn't think she needed a DVS system.
9: Oh, I've got insulation in that.
8: But Jen had forgotten about the mould on her walls and curtains.
9: Ah, yeah.
8: So Jen got DVS home ventilation, and its fresh air in, stale air out technology went to work, making her rooms drier, healthier, plus mould and mildew free. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.
10: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
11: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
3: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. Global Headlines.
2: सुबह के ग्लोबल हेडलाइंस में अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल से लेबनान पर स्ट्राइक न करने की आशंका जताई है, क्योंकि ईरान के साथ एक लंबे समय से चल रही डील काफ़ी करीब है. जबकि रविवार को बेरूत पर हुए इसराइली स्ट्राइक से इस अग्रीमेंट का पर खतरा मंडरा रहा है. ट्रंप ने बताया कि उन्होंने इसी संडे तक साइनिंग होने की उम्मीद की है. हालांकि ईरानियन स्टेट मीडिया के मुताबिक तेहरान ने अभी तक फाइनल डिसीजन नहीं लिया है. भारत के उत्तर प्रदेश में अगला असेंबली इलेक्शन करीब आने पर बीजेपी और ऑपोजिशन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट रिशफल के बाद अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के वर्कर्स एक नए अलायंस की उम्मीद लगा रहे हैं. फिजी में सकियासी रनड्राभू की अरेस्ट में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट पाए जाने के बाद चार पुलिस ऑफिसर्स को छुट्टी पर भेज दिया गया है, और सीआईडी ने इस पूरे मामले में शामिल सभी 12 ऑफिसर्स से पूछताछ की है. फिजी विलेज की एक रिपोर्ट के मुताबिक चार ऑफिसर्स को हाफ पे पर इंटरडिक्ट किया जाएगा और उन पर इंटरनल डिसिप्लिनरी एक्शन होगा. साथ ही ये भी साफ हुआ है कि इसमें फिजी मिलिट्री फोर्सेस का सिर्फ एक जवान शामिल था, न कि पूरी ज्वाइंट टास्क फोर्स. फीफा वर्ल्ड कप के अंतर्गत अभी जर्मनी और कुरासाओ के बीच मैच खेला जा रहा है. दूसरे हिस्से में खेल जारी है और जर्मनी की जीत 4-1 से हो रही है. सुबह 8 बजे नेदरलैंड्स जापान से खेलेगा, जिसके बाद 11 बजे आइवरी कोस्ट और इक्वाडोर का मैच खेला जाएगा, और आज का आखिरी मैच दिन में 2 बजे ग्रुप एफ का एक मैच होगा, जिसमें स्वीडन टूनिजिया से खेलेगा. फिलहाल आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप शनिवार को शुरू हुआ. पहले मैच में इंग्लैंड की जीत श्रीलंका के खिलाफ 87 रन्स से हुई, और उसके बाद बाकी के मैचेस में स्कॉटलैंड ने आयरलैंड को 40 रन से हराया. कल ऑस्ट्रेलिया की जीत साउथ अफ्रीका के खिलाफ 65 रन से हुई, जबकि वेस्टइंडीज ने न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराया. कल रात हुए एक मैच में बांग्लादेश की जीत नेदरलैंड्स के खिलाफ 6 विकेट से हुई और आज सुबह इंडियन विमेंस टीम ने पाकिस्तान को 64 रन से हराया। अगला मैच अब बुधवार को खेला जाएगा जिसमें न्यूजीलैंड श्रीलंका का सामना करेगा। इन मैचेस पर अपडेट्स आपके लिए हम लेकर आएंगे। ये रहे सुबह के ग्लोबल हेडलाइंस।
11: बॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड,
4: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ,
12: मैं लाऊं अपना ए गेम।
11: ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स।

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
2: अभी समय की ओर देखे तो 25 मिनट रह गए हैं 7 बजने में और आज सुबह 2-3 गुड मॉर्निंग के आपके मैसेजेस आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले राम राम, जय श्री कृष्णा, हैप्पी मंडे एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे मिस्टर मटा मटा, आपको भी ये सुबह ये दिन बहुत बहुत बार शुभ और मुबारक हो।
3: और इसके अलावा एक और एक मैसेज आया है, इन्होंने कहा है कि गुड मॉर्निंग विजय एंड पूजा, हैव अ ग्रेट डे मैंडी, गोइंग टू जिम, जिम जाते समय इनका मैसेज हमेशा आता है, हमारे साथ भी ये बनी रहती है, सो थैंक यू सो मच मैंडी आपके मैसेज के लिए। और मैंडी के अलावा लाइक एवरी मॉर्निंग आज बॉबी मान जी, इनका भी मैसेज आया है, थैंक यू सो मच बॉबी मान जी आपके भी मैसेज के लिए। एंड ही सेज मॉर्निंग पूजा एंड विजय, विश योर वंडरफुल वीक अहेड, शिवाज ब्लेसिंग्स, थैंक यू सो मच बॉबी जी आपके भी साथ और आपके भी मैसेज के लिए।
2: तो जहां कहीं पर भी आप हमारा साथ दे रहे हैं, आपके समय के लिए और आपके साथ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मैं वापस आऊँगा इम्तियाज़ अली की जो फिल्म है, इस फिल्म को कई लोगों ने काफ़ी पसंद किया है। इनफैक्ट ताहिरा कश्यप जो है, उन्होंने ये फिल्म देखी एंड शी जस्ट डिडंट होल्ड बैक हर इमोशंस, एंड इंस्टा पर मूवी देखने के बाद उन्होंने अपना जो रिव्यू है ये शेयर किया, जिसमें इम्तियाज को उन्होंने शी कॉल्ड हिम ए लेजेंड एंड शी सेड कि यू कुड जस्ट फील हाउ पर्सनल इट वाज। उन्होंने कहा कि इफ लव हैड ए लैंग्वेज इट वुड बी दिस फिल्म, एवरी फ्रेम हिट हर हार्ट, देयर इज समथिंग रो एंड इंटीमेट इन द वे शी डिस्क्राइब्ड इट, लाइक जैसे फिल्म जो है एकदम उनकी खुद की जिंदगी हो। और उन्होंने कहा कि जिस तरह से इस फिल्म की कहानी रही है वो बहुत ही कमाल की थी।
3: I've seen a lot of good reviews in fact about this movie, main wapas aaunga, and in fact people are appreciating Nasiruddin Shah, though unhone ek character jo hai isme play kiya hai which is basically the grandfather, lekin jo grandson ka kirdar play kar rahe hain which is Diljit Dosanjh, I think he's the lead of the movie, apparently that was what was said by Imtiaz Ali, lekin logo ka dhyan Nasiruddin Shah par bahut gaya and people are actually appreciating him for the way unhone apna character jo hai ye portray kiya hai.
2: इवन शार्वरी वाघ, उनका कहना है कि शी जस्ट स्ट्रक लाइक मैजिक, वेदांग रायना, दिलजीत दोसांझ और अय्यर रहमान का म्यूजिक, ये इस फिल्म की जान, ये भी लोग कर रहे
3: हैं। एब्सोल्युटली, पीपल आर लविंग इट, सो अगर आपके पास मौका है आप भी जाकर जरूर देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा दिस अमेजिंग फिल्म। मैं वापस आऊंगा और इसकी कहानी जो है ये भी आपको समझ में आएगी वंस यू गो एंड विटनेस इट। और उसके अलावा एक सवाल भी आपके लिए हम लेकर आए हैं और इसका जवाब जो है ये आप हमारे पास बेशक भेज सकते हैं ऑन 5599। सवाल काफी सिंपल सा है, इट्स बेसिकली अ रिडल, और ऐसे बहुत से रिडल जो है हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। याद है पिछले वीक ही हमने आपसे एक ऐसा रिडल जो है ये पूछा था और उसके कई आंसर्स जो है हमारे पास आए थे, इंटरेस्टिंग आंसर्स आए थे, पर देखना ये है कि क्या आज आप हमारे इस रिडल का आंसर भेज पाते हैं या नहीं। अपने अपने आंसर्स हमारे पास 5599 पर आप सेंड कर सकते हैं अपने नाम के साथ, लेकिन BF सबसे पहले जरूर लिखिएगा। आपको बताना है कि ये क्या है, आई हैव 13 हार्ट्स but no other organs, what am I?
2: I think I've read about this thing somewhere.
3: तो if you've read, तो यो कहना कि शायद आपको याद भी आ जाए कि कौन सा, I mean इस पहली का जवाब, इस रिडल का जवाब क्या है? I have 13 hearts but no other organs, what am I? If you know the answer, जल्दी से हमारे पास भेजिएगा BF space your answer, your name on 5599.

0: चाहे आप हमके दें चैट बीस को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माई एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी, बसेस बिलबोर्ड ट्रेन स्टेशन स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव कॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755। मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: हम Accurate traffic.
2: Go dry this July.
3: Plenty of cloud, fine at times, Scott, a high of 18. Into the city, Northwestern Motorway, 27 minutes, Massey to town, with snow there to Tiaratu, and then from Greyland to the CBD. Southern 33 and from Mataco, hour from Dreary, slow Papakura through to Mount Wellington. Okay on the southwestern, but a bit of traffic heading to the airport terminal on George Bolt. Northern 23 and from Constellation, slow patches there to the bridge.
2: Go dry this July to raise funds for cancer support. Search Dry July to register.
4: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा। न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काउ घी। जब खाने में होगी इतनी शुद्धता, इतना स्वाद, तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा।
5: मुझे भी।
4: कशिश प्योर देसी घी, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड। खुशियाँ पकाए, खुशियाँ खिलाए।
6: Everything you love about Auckland is about to get closer than ever before when the City Rail Link opens this year. New stations will make getting into the city and across Auckland easier and more convenient, because all those trains, buses and ferries, they're connecting to make one super simple network. Night out with friends? See you there. Favourite band in town? Let's go! The new City Rail Link will make it all happen. Search ATCRL to discover more. So, where will you go?
7: Want $500 phone dollars to spend on your next interest-free phone? Simon's all over it. Join 1NZ on an eligible pay monthly plan this June only to redeem your phone dollars. T's and C's apply. One New Zealand. Let's get connected.
8: JB Hi-Fi is celebrating its stunning new store at Newmarket on the 25th of June from 5pm with grand opening specials for 4 hours only. Don't miss out on huge savings only at JB Newmarket, Thursday, 25th June, 5 to 9pm. JB, you've done it again.
9: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
10: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
9: Breakfast Catch Up.
11: अभी देखिए तो 12:30 मिनट रह गए हैं 7 बजने में और आज 15th of June, अगर अपना बर्थडे या वेडिंग एनिवर्सरी आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, मेक श्योर अपने मैसेजेस समय से पहले आप हमें भेज दें। 7:30 के बाद आपको हम विश करेंगे और हम तब तक आपके मैसेजेस आ जाने जरूरी हैं। फिलहाल सवाल आपने जो पूछा है, कुछ लोगों ने अपने आंसर्स भेजे हैं।
12: हाँ, हमारे पास इनफेक्ट आपके आंसर्स जो है आए हैं। बॉबी मान जी ने भी अपना जवाब जो है ये भेजा है। थैंक यू सो मच आपके आंसर के लिए। और इसके अलावा राउडी कोचर, इन्होंने अपना आंसर भेजा है। क्या बात है, बड़ा ही अलग सा नाम है ना। राउडी कोचर
11: कबनीत हैं, साथ में रोनल हैं, दिवेश आपके भी आंसर आए हैं।
12: संजू नायडू है हमारे पास, आपका आंसर आया है। नीलेशनी है, विनीता है, कुछ लोगों ने आंसर्स भेजे हैं पर नाम नहीं लिखा है। अनफॉर्चुनेटली पता ही नहीं कि आप कौन है तो शाउट आउट भी नहीं दे पाएंगे, बट थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। सवाल हमने बहुत ही सिंपल सा आपसे किया। आई हैव 13 हार्ट्स बट नो अदर ऑर्गन्स, व्हाट एम आई? तो ऐसा करते हैं कि अभी जवाब बता दे क्या?
11: नहीं नहीं, अभी 7 बजे के बाद बताना है ना। कुछ लोग अभी धीरे धीरे दे आर ज्वाइनिंग ऑन द शो, क्योंकि पीपल आर लिविंग होम, गेटिंग टू वर्क एंड ऑल दोस थिंग्स। तो थोड़ा टाइम और हम आपको दे रहे हैं जिस दौरान अपने आंसर्स आप हमें भेज सकते हैं।
12: ओके,
11: तो अपना जो जवाब है हमें आप 5599 पर भेजें। वैसे याद रखें कि लेजेंडरी सिद्धार्थ रंडेरिया आ रहे हैं ऑकलैंड विद गुज्जू भाई ने एक्सचेंज ऑफर, और अब ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है क्योंकि 3rd of July को ये परफॉर्म करने वाले हैं विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर में।
12: और आपके पास मौका है कि बिफोर ये इनका जो शो है सोल्ड आउट हो जाए और यू मिस आउट ऑन द टिकट्स, आप अपने लिए टिकट्स जो है ये जरूर ग्रैब कर ले। premiertickets.co.nz, रिमेम्बर premiertickets.co.nz आप विजिट कीजिए और टिकट्स आप ग्रैब कर सकते हैं इनको, इनका ये जो अमेजिंग सा जो शो है गुज्जू भाई ने एक्सचेंज ऑफर ये देखने के लिए। क्योंकि सिद्धार्थ रंडेरिया जब भी अपना जो शो लेकर आते हैं और गुज्जू भाई प्रोडक्शंस जो है ये अपना कोई एक शो लेकर आते हैं, ये हमें हमेशा सोल्ड आउट होता है. दैट्स व्हाई यू शुड नॉट लीव दिस अंटिल द लास्ट मिनट, और इसका भरपूर फायदा उठाइए. टिकट्स ग्रैब कीजिए और फ्राइडे 3rd ऑफ जुलाई को 7:30 पीएम से विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर में आप भी इसका मजा ले सकते हैं.
11: सो मेक श्योर यू आर प्रेजेंट देयर 3rd ऑफ जुलाई को. बाय द वे फीफा वर्ल्ड कप का जो मैच खेला जा रहा है जर्मनी और कुरासाओ के बीच, बस थोड़ा टाइम बाकी रह गया है मैच को पूरा होने में, और जर्मनी की जीत कुरासाओ के खिलाफ अभी 6-1 से हो रही है. याद रखें 8 बजे से अगला मैच नेदरलैंड्स और जापान के बीच होगा, फॉलोड बाय आइवरी कोस्ट वर्सेस इक्वाडोर, ये 11 बजे खेला जाएगा. 2 बजे स्वीडन ट्यूनिजिया से खेलेगा. इन सभी मैचेस पर अपडेट्स आपके लिए हम जरूर लेकर आने वाले हैं.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: 10.7 डिग्रीज अभी टेम्परेचर फील कर रहे हैं आज का हाई 17, ओवरनाइट कम से कम 10 डिग्रीज रहेगा, कुछ बादल छाए रहेंगे, सुबह के वक्त कुछ हल्की बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है और सनराइज 7:31 AM पर, सनसेट आज का शाम 5:12 पर होगा।
0: ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा ब्रॉट टू यू बाय फॉर्च्यून।

0: 15 मिनट हो रहे हैं 7:00 गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग मैडनेस ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स 104.2 एफएम और रोवर पर आप हमारा साथ दे रहे हैं देश या दुनिया के किसी भी कोने से आपका खास स्वागत हम कर रहे हैं और इस घंटे भी तमाम चीजें होंगी
1: बिल्कुल आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग हमारी ओर से और जहां कहीं भी आप हैं साथ हमारा दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मॉर्निंग मैडनेस आपके लिए जबकि हम शुरू करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको यही याद दिला दें कि इस घंटे थोड़ी देर बाद आपको हम वेरी हैप्पी बर्थडे या फिर अगर आज आपकी एनिवर्सरी है तो ये भी विश करेंगे इसीलिए अगर अभी तक आपने अपने मैसेजेस हमें नहीं भेजे हैं तो जल्दी से मैसेजेस सेंड कर दीजिए ताकि विश करने का जब समय आए तो आप मिस आउट ना हो उससे
0: और साथ ही में पिछले घंटे सवाल आपने पूछा था
1: हाँ जी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था आपको बताना था आई हैव 13 हार्ट्स बट नो अदर ऑर्गन्स व्हाट एम आई और आप सभी ने हमारे पास जो अपने आंसर्स भेजे हैं सभी के सभी सही आंसर्स अ डेक ऑफ कार्ड्स बेसिकली ताज के पत्ते जो होते ताज बोलते ताश बोलते
0: ताश ताश
1: ताश के पत्ते
0: ताज तो क्राउन होता है ना
1: नहीं ताज के पत्ते होते हैं ना जिसकी चाय बनती है वो भी तो होते हैं
0: ताज के पत्ते वो तो चाय के पत्ते होते हैं
1: हाँ वही सुना नहीं आपने ताज एक किस्म का एक ब्रांड का वो है चाय है ना बट वी इन दिस केस वी आर टॉकिंग अबाउट ताज के पत्ते या
0: ओके
1: डेक ऑफ कार्ड्स
0: एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज और मैं पढ़ रहा था कि यू नो व्हेन वी लॉक आवर आईज विद अनदर पर्सन हमारा ब्रेन क्या करता है हमारा ब्रेन उस टाइम पर हमें बताता है दैट वी आर डीलिंग विद द माइंड ऑफ अनदर पर्सन हु इज करंटली लुकिंग एट अस हम अब एक और इंसान हमारा दिमाग जो है ये हमें बताता है कि एक और शख्स हमें देख रहा है और उनके दिमाग से अब हमारा कांटेक्ट जो है ये हो रहा है जिसकी वजह से हम और ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं ऑफ देयर पर्सपेक्टिव और एंड इन टर्न यू नो जब जब वो आता है तो फिर इमिडिएटली आई डोंट नो ये दिमाग कितना फास्ट मैसेजेस भेजता है ना
1: वेरी फास्ट या बहुत एक्टिव है ना ये ब्रेन हमारा जो है इट्स वेरी क्विक वेरी एक्टिव इसीलिए इसका एक्सरसाइज कराना भी ज़रूरी है इसे भी हेल्थी रखना ज़रूरी है और इसको सही रखना बहुत ज़रूरी है अगर जो हमारा ब्रेन हमारे साथ साथ ना चले या फिर हमारा ब्रेन सही ना हो तो इसके लिए हमें काफ़ी डिफ़िकल्टीज का सामना करना पड़ता है दैट इज़ वाई ब्रेन एक्सरसाइज आर इम्पोर्टेंट गुड फूड दैट इज गुड फॉर योर ब्रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑन द अदर हैंड स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट्स लाइक द बेस्ट थिंग यू कैन गिव योर ब्रेन रेस्ट स्लीप
0: तो जब जरूरत हो या फिर जितना दिमाग को जरूरत होता है उतना आराम और उतना व्यायाम दोनों अपने दिमाग को आप जरूर दें और थोड़ी देर बाद आज आपके राशि वाइब्स हम लेकर आएंगे एंड देन सेलिब्रिटी अलार्म खेलेंगे आपके साथ

0: 죽어보자 파피오 죽어보자
1: Rashi Vibes.
2: So here are your Rashi vibes for today. सबसे पहले मेष यानी एरिस, आज किसी जाने माने व्यक्ति का सपोर्ट आपको मिलेगा, बिजनेस बढ़ेगा, पैसे भी मिल सकते हैं. ख्याल रखें किसी दूसरे की बातों में आप ना आए, और प्रॉपर्टी के काम से आज आपको फायदा हो सकता है.
3: वृषिनी टोरस, आज आपके लिए बताया जा रहा है कि परिवार में जो मेंबर्स हैं आपके, बेसिकली जो सदस्य हैं आपकी फैमिली में, ये आपको अपना सपोर्ट जरूर प्रोवाइड करेंगे और इनकी ओर से आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा. बस एक बात का ख्याल रखना है कि लेन देन अगर जो आप कर रहे हैं पैसों की, तो एकदम सावधान हो जाए. चोट या रोग से भी आपको कष्ट पहुंच सकता है, इसलिए अपना ख्याल जरूर रखें.
2: मिथुन यानी जेमिनी, समाज में आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, कॉलीग्स सपोर्ट देंगे. ऐशो आराम के चीजों पर आज कुछ पैसे आप स्पेंड कर सकते हैं, और हो सके कोई रिस्क ना ले और काम करते समय किसी तरह का रश ना करें.
3: और उसके बाद अगर आज देखा जाए तो कर्क यानी कैंसर, आपके लिए कहा गया है कि जो प्लान्स आप बना रहे हैं भविष्य के लिए, एक अच्छा फ्यूचर, एक सिक्योर्ड फ्यूचर जहां पर वो सब कुछ हो जो आपको चाहिए, तो डेफिनेटली ये चीजें आपके लिए काम करेंगी. सही संगत का बहुत ही बड़ा फायदा मिलेगा और नौकरी में चैन की सांस लेंगे आप.
2: सिंह यानी लियो, आज बिजनेस ठीक ठाक चलेगा, दोस्तों के साथ अच्छा समय गुजारेंगे. कोई चोट या दुर्घटना से आपको बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, झगड़ा झंझट में ना पड़े और अनजाने लोगों पर ऐसे ही जरूरत से ज्यादा भरोसा ना करें.
3: और उसके बाद अगर देखा जाए तो आज बताया जा रहा है कन्या यानी वर्गो के लिए, परिवार में आपके जो सदस्य हैं इनका सपोर्ट आपको मिलेगा. इनफैक्ट आप हैप्पी रहेंगे आज के अपने दिन से, और किसी व्यक्ति के खास रूप से उनके सहयोग से, जो भी ये शख्स है, कौन है वो अभी मुझे नहीं पता, लेकिन आप शायद उनको आइडेंटिफाई कर लेंगे. इनके सहयोग से जो आपको मिलेगा, मुश्किल से मुश्किल काम को आप आसानी से कर पाएंगे, एंड यू'ड बी वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट्स यू विल अचीव.
2: तुला यानी लिब्रा, बिजनेस से फायदा होगा, ऑफिस में काफी काम होगा, कोलिग्स का उतना सपोर्ट आज शायद आपको ना मिले, जिससे आप थोड़े अपसेट हो सकते हैं और हेल्थ थोड़ा कमजोर रहेगा आज आपका.
3: और उसके साथ साथ आज वृश्चिक ने स्कॉर्पियो, आपके लिए कहा गया है घर बाहर दोनों ही ओर हैप्पीनेस आप जरूर एक्सपीरियंस करेंगे. पॉजिटिव सोच आज आपको सफलता दिलाएगी. नौकरी में किसी काम को करने की वजह से आज आपकी तारीफ होगी, आपको काफी ज्यादा प्रेज किया जाएगा फॉर द ऑल द हार्ड वर्क दैट यू हैव डन टुडे.
2: धनु यानी सेजिटेरियस, काफी काम होगा आपके पास, लेकिन रिस्क ना ले, पैसे मिल सकते हैं आज आपको. और ख्याल रखें किसी के साथ भी किसी तरह का झगड़ा झंझट अगर हो तो उसे आप बढ़ावा ना दें, अपने हेल्थ का ख्याल रखें.
3: मकर यानी कैप्रिकॉर्न, आपके लिए बताया गया है किस्मत आपका साथ दे रही है, समय का सही इस्तेमाल करें, इससे बहुत फायदा होगा आपका. और आज आपके लिए कहा गया है लेन देन में थोड़ा केयरफुल हो जाए, फायदे के मौके जरूर मिलेंगे, आइडेंटिफाई देम एंड उनसे अपने आप को कैसे फायदा दिलाना है, टोटली डिपेंड्स ऑन यू.
2: कुंभ यानी एक्वेरियस, बिजनेस से आपको फायदा होगा, घर परिवार में कोई शुभ कार्य हो सकता है, कुछ पुराने दोस्तों से आज मिलना हो सकता है, एक्सपेक्ट सम एक्साइटिंग न्यूज, कोई बड़ा काम करने की प्लानिंग जो है ये भी आज आप बनाएंगे.
3: और इसी के साथ साथ मीन यानी पाइसेस, आपके लिए कहा गया है समय बहुत अच्छा है, ये वो राइट टाइम है आपके लिए जहाँ पर इफ यू गॉट सम प्लान्स, जहाँ पर यू वांटेड टू एक्सपेंड, यू वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट, तो आप जरूर कर सकते हैं क्योंकि ये आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा. कुछ लोग हैं आपका बुरा चाहते हैं, थोड़े एक्टिव रहेंगे ये आज, इनसे आपको थोड़ा केयरफुल रहना है. रिस्क से भरे जितने भी काम हैं इनको आज आप जितना इग्नोर कर सके उतना आपके लिए अच्छा है.
2: So, these were your Rashi vibes. थोड़ी देर बाद celebrity alarm भी हम खेलेंगे.
1: Bollywood का असली blockbuster.
4: पूरे शहर पे कब्जा होगा, राज होगा.
1: Playing Bollywood's biggest hits.
5: वो दिन जब मोहब्बत खत्म होती थी.
6: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज.

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: मॉर्निंग मैडनेस आपके लिए जारी है और हम प्लेइंग बॉलीवुड बिगेस्ट हिट्स और अब वक्त हो चुका है सेलिब्रिटी अलार्म का।
1: तो आज देखते हैं कि क्या हमारे जो सेलिब्रिटी हैं सेलिब्रिटी अलार्म में इनकी आवाज को आप पहचान पाते हैं या नहीं। लास्ट वीक फ्राइडे द लास्ट वन विच वी डिड वाज ऑफ बादशाह और आप में से बहुत से लोगों ने उनकी आवाज को पहचाना और हमारे पास अपने अपने आंसर्स भेजे। पर आज जो आवाज आपके लिए हम लेकर आए हैं, अगर ये आप नहीं पहचान पाए तो यही आवाज कल एक बार फिर आपके लिए सेलिब्रिटी अलार्म में रहेगा।
0: आज तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये आवाज हम सिर्फ एक ही बार सुनाएंगे क्योंकि इतना इजी है। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि ऐसा कोई नहीं होगा जो गलत जवाब देगा।
1: ठीक है, तो देखते हैं कि आज जो आपको लग रहा है कि वो सच में होता है या फिर बस आपको ऐसे ही लग रहा है।
0: बहुत छोटा सा एक स्निपेट है जो हम आपको सुनाएंगे, इसीलिए बहुत केयरफुली इसे आपको सुनना होगा। एंड हियर इट इज।
2: मैं तुम्हारे साथ 6 महीने 25 दिन 11 घंटे 20 मिनट रही मगर सुकून का एक पल नहीं देखा।
1: वेरी इजी यार, आई थिंक इट्स वेरी वेरी इजी। एंड आज तो जो आवाज है उसके बारे में ज्यादा बोलने की भी जरूरत नहीं है, सो विल जस्ट गिव यू सम टाइम। आपको हमारे पास अपना आंसर जो ये भेजना है, सबसे पहले BF लिखना है, ब्रेकफास्ट का शॉर्ट फॉर्म, फिर उसके बाद में अपना आंसर लिखना है, अपना नाम लिखना है और 5599 पर आपको भेज देना है।
3: Bollywood's most wanted.
4: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ।
5: मैं लाऊं अपना A game.
3: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

है दिल से होता है शुरू, दिल से होता है शुरू पर कमबख्त सर पे चढ़ा है। कभी खुद से, कभी खुदा से, कभी जमाने से लड़ा है। इतना हुआ बदनाम फिर भी

0: News Headlines।
1: सुबह के मुख्य समाचारों में स्टेट्स न्यूजीलैंड के आंकड़ों के मुताबिक न्यूजीलैंड में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट की संख्या पिछले तीन दशक यानी 30 decades में या 3 decades में सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। इस साल मार्च तक के डाटा के अनुसार यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट पिछले साल के 16% से बढ़कर 17.3% हो गया है। तुरंगी टाउन में पिछले कुछ महीनों में हुई 35 यानी 35 गाड़ियों की चोरी के आरोप में पुलिस ने 2 टीनेजर्स को अरेस्ट किया है जिनकी उम्र 13 और 15 साल है। पुलिस ने सर्च वारंट के दौरान एक गन, एयर राइफल्स और कैनबिस उगाने का सामान भी जब्त किया जिसमें 15 साल के लड़के पर 11 चार्जेस लगाए गए जबकि 13 साल के लड़के को यूथ एड के पास भेजा गया है। इस ऑपरेशन के दौरान 2 बड़े लोगों को भी अरेस्ट किया गया है जिन्होंने अलग से अनलॉफुल पोजेशन ऑफ फायर आर्म्स और प्रोटेक्शन ऑर्डर तोड़ने के चार्जेस का सामना करने का फैसला किया है। सुपर रग्बी कंपटीशन के ग्रैंड फाइनल के टिकट्स आज शाम 6 बजे से बिकने शुरू होंगे। ये फाइनल इसी शनिवार को वेलिंगटन में खेला जाएगा जहां हरिकन्स चीफ्स को होस्ट करेगा। सप्तांत हुए सेमीफाइनल्स में चीफ्स की जीत क्रुसेडर्स के खिलाफ 49-12 से हुई जबकि हरिकन्स ने ब्लूज को 57-21 से हराया। फीफा वर्ल्ड कप के अंतर्गत आज सुबह जो मैच खेला जा रहा था उसमें जर्मनी की शानदार जीत कुरसाओ के खिलाफ 7-1 से हुई। आधे घंटे बाद नेदरलैंड्स जापान से खेलेगा। दिन में 11 बजे आइवरी कोस्ट का मुकाबला इक्वाडोर से होगा और 2 बजे स्वीडन ट्यूनिजिया से खेलेगा। इन मैचेस पर अपडेट्स आपके लिए हम लेकर आएंगे। इसके अलावा FIH वेमेंस हॉकी नेशंस कप आज से शुरू होने जा रहा है। न्यूजीलैंड इस चैंपियनशिप को होस्ट कर रहे हैं और आज दिन में 11:45 पहले खेल में इंडिया USA से खेलेगा। दिन में 1 बजे जापान की भिड़ंत यूरुग्वे से होगी। 3:45 PM पर चिली और फ्रांस का खेल होगा जबकि शाम 6 बजे वेंटेज ब्लैक स्टिक्स और कोरिया का खेल होने को है। इन मैचेस पर भी अपडेट्स आपके लिए हम लेकर आएंगे। ये रहे सुबह के न्यूज हेडलाइंस।

0: birthday to you.
1: 15th of June, आज का ये दिन आपको बहुत बहुत बार मुबारक हो. अगर आज अपनी सालगिरह या शादी की सालगिरह आप मना रहे हैं, सबसे पहले टिया टैटू साउथ में आज कोकिला पटेल जी अपनी सालगिरह मना रही हैं. अ वेरी हैप्पी बर्थडे. रंजीत भागरिया हैं हैंडरसन में, रक्षा गुप्ता जी पापाकुरा में और माया प्रवी साउथ स्ट्रीट में आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. आप सभी को ये दिन अनेकों बार शुभ और मुबारक हो. अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे. मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे आपको हम कहना चाहेंगे. हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी मिस्टर शिव सामी और मीना कुमारी जी मनुरेवा में. प्यार और शुभकामनाएं आज मिल रही हैं. बच्चे हैं आपके सरिता, रोहित, कामिनी और अमित. साथ में दामाद हैं गुरप्रीत और श्री. बहुएं हैं आपकी रेशमा और अनिशा. ग्रैंड चिल्ड्रन सियना, श्रेया, मायरा, जैडन, सभी ने आज आपको याद किया है. आप दोनों को मिस्टर एंड मिसिस शिव स्वामी और मीना कुमारी जी शादी की सालगिरह आपको बहुत बहुत बार शुभ और मुबारक हो. और ट्रेंड के साथ क्रीना पटेल आज आप भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. आपको भी ये दिन बहुत बहुत बार शुभ और मुबारक हो. अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे. मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे. उधर एक और मैसेज आया है, हैप्पी बर्थडे आज बिमल सिंह वियान की ओर से ये मैसेज आया है. तो बिमल सिंह जी सालगिरह आपको बहुत बहुत बार शुभ और मुबारक हो.
2: Morning Madness.
1: 21 मिनट रह गए हैं अभी 8 बजने में. 8 पर न्यूज एंड स्पोर्ट्स अपडेट हम आपके लिए लेकर आएंगे. और आज जो हमारे सेलिब्रिटी जिनको हमने पेश किया आपके लिए सेलिब्रिटी अलार्म में, सारे के सारे आंसर्स करेक्ट एंड शी वाज नन अदर देन जूही चावला.

0: थ्रोबैक की बारी आई है, बट बिफोर वी गेट द थ्रोबैक टू यू, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है हमारे साथ विजेता बनने की, जहां पर बहुत से मौके हम आपको देते रहते हैं, लेकिन इस बार ये मौका खास आपके नाम हम कर रहे हैं। दी FIH हॉकी वुमेन्स नेशन कप ये नॉर्थ हार्बर में होने जा रहा है, इसी सप्ते से इसकी शुरुआत हो रही है, मतलब आज से ये शुरू हो रहा है और टिल द 21st of June तक ये चलता रहेगा। सो वी आर वेरी प्राउड कि हम आपके लिए स्टिक विद हम लेकर आ रहे हैं, विच इज बेसिकली अ चांस फॉर यू टू विन अ पास एंड यू कैन विटनेस दिस FIH हॉकी वुमेन्स नेशंस कप नॉर्थ हार्बर में, एंड यू कैन बी बिहाइंड द वेंटेज ब्रेकस्टिक्स वुमेन। आप उनको सपोर्ट कर सकते हैं, हमारी खुद की न्यूजीलैंड टीम को सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि वो इस टाइटल को डिफेंड कर सके अपने होम ग्राउंड में। 8 डिफरेंट कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं, यू विल गेट टू एक्सपीरियंस वर्ल्ड क्लास हॉकी, विच इज बेसिकली वन ऑफ द बिगेस्ट इंटरनेशनल हॉकी इवेंट्स जो न्यूजीलैंड में होने जा रहा है। सो इफ यू वांट टू बी देयर, इफ यू वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस, ये मौका आपके लिए है। एक तो आप hockeynz.flicket.co.nz, रिमेम्बर hockeynz.flicket.co.nz से टिकट्स ले सकते हैं, और दूसरी ओर यू कैन ट्राई योर लक ऑन विनिंग अ डबल पास एज वेल, और एक डबल पास जो कि आप हमारे साथ जीत सकते हैं, तो इसके लिए एक छोटी सी चीज आपको करनी है।
1: और करना क्या है आपको, बस सिंपली आप हॉकी लिखें सबसे पहले, और उसके बाद अपना नाम लिखें और उसे 5599 पर हमारे पास भेज दें। याद रहे, हॉकी लिखें, अपना नाम लिखें और 5599 पर उसे आप हमारे पास जल्दी से भेज दें। यू बिकम पार्ट ऑफ द ड्रो। आज कई मैचेस खेले जाएंगे, जैसे हमने आपको पहले भी बताया कि इनमें आज इंडिया USA से खेलेगा, जापान यूरोगवे, चिली फ्रांस, और शाम 6 बजे वेंटेज ब्लैक स्टिक्स और कोरिया का मैच जो है ये खेला जाएगा। सो आप हॉकी लिखें, अपना नाम और उसे भेजें हमारे पास 5599 पर।

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: 11 degrees temperature, Auckland में भी आप फील कर रहे हैं आज का हाई 17, overnight कम से कम 10 degrees रहेगा, बादल छाए रहेंगे सुबह के वक्त, कुछ फोग रहेगा, कभी कभार कुछ हल्की बारिश मुख्यतः सुबह के समय हो सकती है, सनसेट शाम 5:12 पर आज होगा।

0: Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton. Trend Patrol.
1: तो आज का ट्रेंड पेट्रोल जो आपके लिए हम लेके आए हैं, एक नाम काफी ट्रेंड कर रहा है, ये है नोरा फातेही. नोरा फातेही इसलिए क्योंकि रिसेंटली इन्होंने कनाडा में जो फीफा वर्ल्ड कप 2026 का ओपनिंग मैच है इसके लिए यहाँ पर परफॉर्म किया. एंड इंटरेस्टिंग चीज ये है कि नोरा फातेही का नाम इसीलिए ट्रेंड कर रहा है क्योंकि इनका एक ओल्ड इंटरव्यू वीडियो जो है ये सामने आया है. यू नो वंस समवन बिकम्स बिग तो उनके बारे में काफी बातें होती हैं और ऑफ कोर्स डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लोग उनके साथ एसोसिएट करने के बारे में भी सोचते हैं, नो डाउट अबाउट इट. बट नोरा फातेही का ये जो वीडियो है ये वायरल हुआ जहाँ पर शी हैज़ बीन सीन लाइक जब वो यंग डेज में थी अपनी एंड शी वॉज स्ट्रगलिंग, शी वॉज स्टार्टिंग हर करियर इन इंडिया. ये आई थी जहाँ पर इन्होंने शुरू किया एंड शी स्पोक अबाउट द फैक्ट कि इनकी जर्नी जो है ये कैसी रही. क्या आपको पता है कि शी स्टार्टेड वर्किंग एट द एज ऑफ 17?
2: नहीं, मुझे नहीं पता था.
1: इन्होंने इस इंटरव्यू में यही बताया, इस वीडियो में बेसिकली यही बोला कि ड्यू टू सम रीजंस थिंग्स हैपेंड इन हर फैमिली जिसके बाद चलकर इट वाज ओनली हर एंड हर ब्रदर फॉर ईच अदर. और शी वाज 17 इयर्स ओल्ड जहां पर जब इनके लाइफ में इतना बड़ा जो एक चेंज हुआ और शी टुक चार्ज ऑफ हर स्मॉल फैमिली एंड एट द एज ऑफ 17 इन्होंने काम करना शुरू किया फॉर हर ब्रदर बेसिकली ताकि वो उनका ख्याल जो ये रख सके. और शी लर्न्ड बेली डांसिंग और दैट वाज द फर्स्ट थिंग जो बेसिकली इन्होंने शुरू किया. उन्होंने अलग अलग इवेंट्स में, फंक्शंस में, सेलिब्रेशंस में जाकर बेली डांसिंग जो है ये परफॉर्म करना शुरू किया. और उसके बाद चलकर शी थॉट कि अब इनको अगर अपना करियर आगे बढ़ाना है तो इन्हें इंडिया मूव होना होगा. एंड दैट्स व्हाट शी डिसाइडेड. सो शी मूव टू इंडिया एंड व्हेन शी केम टू इंडिया तो इनको डिफरेंट साइड ऑफ थिंग्स जो है ये देखने को मिला जहां पर इनको यू नो काफी डिग्रेड किया गया था, डाउन किया गया था बाय डिफरेंट डिफरेंट पीपल फॉर स्पेशली नॉट नोइंग हाउ टू स्पीक हिंदी बिकॉज ये मोरक्कन डिसेंट की है. और शी वॉज बोर्न एंड रेज्ड इन टोरंटो कैनेडा. डिसेंट इनका मोरक्को से है, इनके मम्मी और पापा दोनों के साइड से. एंड बोर्न एंड रेज्ड इन कैनेडा दैट्स व्हाई शी हैड नो आइडिया हिंदी कैसी बोली जाती है. एंड देन स्लोली स्लोली शी ग्रूम्ड हरसेल्फ, शी चेंज्ड हरसेल्फ, शी लर्न्ड हिंदी एंड वहां से धीरे धीरे धीरे धीरे उन्होंने कोशिश की एंड शी बेसिकली वेंट टू प्लेसेस टू पीपल कि वो उनको किसी ना किसी तरह से काम दे. एंड लेट जून 2015 में आई थिंक शी साइंड अ तेलुगु फिल्म जिसका नाम था शेर. और इस तेलुगु फिल्म से कुछ यू नो अपीयरेंस वगैरह इन्होंने किए जिसके बाद चलकर इनके लिए अपॉर्चुनिटी के दरवाजे और खुलते गए. और दिसंबर 2015 में इन्होंने बिग बॉस जो है ये किया. आई थिंक शी एंटर्ड एज अ वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट इन सीजन 9 जिसके बाद चलकर शी स्पेंड 3 weeks नीली इन द हाउस एंड उसके बाद 12th वीक में इनको बाहर कर दिया गया था. बट शी ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन रियलिटी शोज लाइक झलक दिखलाजा सीजन 9 और इन्होंने कुछ मूवीज जो है ये भी किए. बट थिंग्स एक्चुअली चेंज्ड फॉर हर जब उन्होंने कुछ बड़ी बड़ी फिल्मों में गाने जो है ये किए. एंड शी बिलीव्स कि इनके लिए एक टर्निंग पॉइंट था जब इन्होंने बाटला हाउस फिल्म के लिए एक गाना किया था, ओ साकी साकी.
2: That was a very good song.
1: Yes, that was the song जिससे उनको कहीं ना कहीं काफी importance जो है ये मिलना शुरू हुआ और उनके dancing career के लिए in fact काफी अच्छा जो है ये साबित हुआ. So from there she struggled and she made a big name for herself जिसके बाद चलकर आज international stage पर ये perform करती हैं और खुद को जिस तरह से इन्होंने you know groom करते हुए present किया अपने आप को, she says it's definitely a big deal for her.

0: Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: वो इनडेलिबल होम्स वाली कहानी सुनाओ ना.
2: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year master builder guarantee, awards pour in.
3: And award goes to Indelible Homes.
2: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favourite master builder.
4: Kahani of Indelible Homes.
5: I know about framing, but not how to keep our team connected on all the sites.
6: When you're a Spark Business customer, you get the number one mobile network coverage in New Zealand as awarded by Open Signal. Spark, the best bench in business.
7: रेडियो पे गानों की फरमाइश की जा सकती है, अपनों के नाम संदेश भेजे जा सकते हैं, मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना. उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं. कशिश प्रीमियम बासमती राइस. Eat better, live better. For more information, log in to www.kashishfood.co.nz. Available at all leading stores.
8: Professional Financials hai saath aapke. Loan aur insurance ek chhat ke niche. No broker charge, bas trusted advice. Har deal banaye perfect right.
9: Refinance ke liye compare kare different banks. Loan process ho simple and frank.
8: Business finance ya income protection ho. Har step par guidance perfect ho. Sab kuch milega yahi. Apna future secure banaye.
9: Professional Financial Solutions. Your future, our priority. Call 09846-9934 or search PFSL. T's and C's, lending and credit criteria apply.
10: This dry July, do something good for yourself and for others. Go alcohol-free for 31 days and raise funds for Kiwis affected by cancer. Do good, feel good. Go dry this July. Sign up now at dryjuly.co.nz.
11: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
12: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
11: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton.
13: What's your take?
14: What's your take? वक्त अब हो चुका है और आज जो हमारा टॉपिक है इज वेरी वेरी मच इन लाइन विद आज कौन सा डे जो है ये मार्क किया जा रहा है. और आज अगर देखें तो दुनिया भर में वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे, वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे जो है ये मार्क किया जा रहा है. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा एक बहुत बड़ा रिव्यू जो है ये किया गया था, एक रिव्यू किया गया था जिसे WHO ने सपोर्ट किया था, जिसके बाद ये एस्टिमेट सामने आया कि अबाउट 1 in 6 पीपल जिनकी उम्र 60 ईयर्स से ज़्यादा है एक्सपीरियंस सम फॉर्म ऑफ अब्यूज इन कम्युनिटी सेटिंग्स ईच ईयर. डाटा ये सजेस्ट करता है कि साइकोलॉजिकल अब्यूज सबसे ज़्यादा रिपोर्ट किया जाता है, फॉलोड बाय फाइनेंशियल अब्यूज, निग्लेक्ट, फिजिकल अब्यूज एंड सेक्सुअल अब्यूज. एस्टिमेट काफ़ी फार एंड वाइड है क्योंकि रिसर्चर्स जो हैं अलग अलग डेफिनेशंस, मेथड्स, थ्रेशोल्ड्स जो हैं ये इस्तेमाल करते हैं और कई स्थिति में ऐसा होता है कि केसेस जो हैं कभी भी रिपोर्ट नहीं किए जाते हैं. हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उनके साथ दुर्व्यवहार, चाहे हम इससे सहमत हों या इससे सहमत ना हों, दिस हैपन्स इन ऑलमोस्ट एवरी कम्युनिटी. हर कम्युनिटी में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में ये होता है, होता है. तभी तो आज के इस दिन को हम मार्क कर रहे हैं जहां पर बुज़ुर्गों के खिलाफ दुर्व्यवहार पर अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश जो है ये की जाती है. तो आज हमने सोचा इसी के बारे में कुछ बातें जो हैं ये कर लेते हैं. यू नो वर्ल्ड एल्डर अब्यूज डे, इसके बारे में बहुत सारी बातें जो है ये होती रहती हैं. एंड आई थिंक लास्ट ईयर हमने बातें जो हैं ये की थी एडविना पीओ से, जिन्होंने केसेस के बारे में बातें की थी जहां पर हमारे एल्डरलीज जो हैं उनको हमारी ही कम्युनिटी में अब्यूज किया जाता है, उसका एक पोर्शन हम आपको सुनाएंगे, सुना रहे हैं, उसको आप अच्छी तरह से सुने और उसके बाद हम लाइन आपके लिए खोलेंगे और अपनी राय जो है ये आप इस प्रोग्राम में शेयर कर सकेंगे। तो ये डिप्रेशन द साइलेंट किला का एक एपिसोड जो है ये हमने किया था और उसमें एडविना पीओ जी ने खुलकर बहुत सारी बातें जो है ये की थी और उसमें जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनका जो जिस तरह से अब्यूज़ किया जाता है उसके बारे में बहुत सारी बातें जो है ये इन्होंने की थी और वही उसका एक छोटा सा पोर्शन जो है ये आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं।
13: अबाउट हु एडविना पीओ इज फॉर आवर लिसनर्स एंड फॉर ऑल आवर व्यूअर्स।
15: Thank you so much. It's a pleasure to be here and to be interviewed by HUM, Depression, a Silent Killer, which is part of this series where I'm delighted to be a speaker. I received an Officer of the New Zealand Order of Merit last year, and my investiture was in Wellington by the Governor General for my service to ethnic communities. I'm New Zealand's first Professor of Diversity.
13: Wow.
15: I am a Fulbright holder. I've received a Duke of Edinburgh Fellowship. And later this month, I will be traveling to Oxford University. And I will be based at the Oxford Institute of Population Aging.
13: Wow, that's quite an achievement. Now, a little bit about what you've done in the recent past about the Selwyn Foundation. And I believe you've done some research and some work for them.
15: Thank you very much for that question. I'd like to spend a little while talking about the Selwyn Foundation.
13: Yeah.
15: This year is 70 years for them. And they believe in social impact, community, learning, and they have a Selwyn village. They are an independent, Christian, faith-based, New Zealand-registered charity. In Auckland, there are 9,345 Indians who are 65+. Mm-hmm. Now, many of them live well. They are very happy to be in Auckland.
13: Yeah.
15: But unfortunately, many of them do go through abuse. And abuse could be in the form of being depressed because of the way they are being treated.
13: Hmm.
15: It could be their perception in terms of maybe lack of knowledge of English. It could be that they miss their home country, India, and they find Auckland to be wet and dark and cold.
13: Oh. No, just you've elaborated on the possible reasons that could be affecting the elderly, over 9,000 in our community. Now, which of these would be the more prevalent ones in our community particularly? You know, there are a lot of things that the care that they need, the love and support that they need, or the other things that you've mentioned about.
15: Yes, I think in general, I'd like to give a positive spin as well.
13: Yeah.
15: And I think in general, people in Auckland, in New Zealand, Indians, they love Auckland.
13: Okay.
15: That's the first thing. And they say, well, you have clean bathrooms that are public.
13: Yeah.
15: You have great parks. You can do exercises in some of the parks. You can walk around without fear of being attacked.
13: Okay.
15: This is in general. So they love Auckland. There are so many opportunities. There are beaches, there are bushwalks, etc.
13: Mm-hmm.
15: They would also like to be active and engaged. And by active and engaged, I also mean social connections.
13: Yeah.
15: Now, some homes, however, the primary purpose of the older people there is to look after the grandkids, to cook,
13: yeah,
15: for the family who might be working. And sometimes, unfortunately, they are told in winter, you take the children to school, then don't come back home because you might be using the electricity for the heater. You can come back home in the evening when you bring the children back. So sometimes you do find in the malls, which are warm, which are clean, which have bathroom facilities, a lot of elderly people there, unfortunately.
14: So ye ek portion tha depression is silent killer ka, जहाँ पर एडविना पियो से हमने बातें की. शुरू शुरू में आपने उनके बारे में भी सुना होगा कि व्हाट ऑल शी हैज़ डन, एंड इट गोज़ टू शो द क्रेडिबिलिटी. पूरा का पूरा एपिसोड रोवर पर आपको मिलेगा. आज एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे है. जो कुछ भी आपने सुना उसके बाद आपकी जो आपके मन में जो भी है वो आज आप शेयर कर सकते हैं. ओ 800-00 हम और 800-00-4866 ये हमारा नंबर है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं. एंड हमें मालूम है कि अ लॉट ऑफ यू वुड बी रिलक्टेंट टू टॉक अबाउट दिस, बट लेट्स सी. गुड मॉर्निंग. हेलो.
16: हाय, गुड मॉर्निंग विजय भाई.
14: जी गुड मॉर्निंग.
16: आई दैट्स अ वेरी गुड टॉपिक. आई कॉल लास्ट ईयर एज वेल व्हेन आपने ये टॉपिक रेस किया था, एंड यू नो दे कुड दे वुड बी वो होता होगा, बट आई मीन आई वुड जस्ट लाइक टू रिपीट व्हाट आई सेड लास्ट ईयर एज वेल. ये क्या होता है ना, अभी आई लिव विद 270 प्लस पीपल एट होम हु लिव एट होम. दे डू, माय डॉटर कम्स फ्रॉम स्कूल, शी इज बीन लुक्ड आफ्टर बाय हर ग्रैंड मदर, एंड शी कुक्स फॉर अस, क्लीनिंग एंड एवरीथिंग. वी डोंट आस्क हर टू डू, शी इज एल्डरली नाउ. बट यू नो अब्यूज इज जस्ट नॉट दैट ऑल द टाइम. That's right. It rises up at that son or daughter-in-law or bete, betiyan hi abuse karte hai. It could be the other way around as well. Because if you have some, you have got a father-in-law who has always had control over his family and everything. As kids as well, we still go through that as well. He would do what he wants to do. He would not listen. And then, yeah, so abuse sirf unko nahi hota hai. Hame abhi we still... You know, there's times then you feel like hum lekar aaye hain for their betterment. They have been with us for more than 11 years. But yeah, abuse is both ways. Well, sirf unko nahi hota hai. Hame, we have been going through. Buzurg sochkar hum bhi nahi kuch bolte, sochte hain ki kya karenge, sun lete hain. So it's not only ki the bahu ya bete ya betiyan hi karte hain. It is a two-way street.
14: थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच आपके कॉल के लिए. आओ 800-00 हम और 800-00-4866 ये हमारा नंबर है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं. एक मैसेज आया है हमारे पास. गुड मॉर्निंग विजय एंड पूजा. आई हैव अ फ्रेंड हु इज फ्रॉम साउथ अफ्रीका. द सन ब्रॉट द पेरेंट्स इन पेरेंट्स वीजा एंड आफ्टर ईयर ही एंड हिज वाइफ माइग्रेटेड टू मेलबर्न. द एल्डरली पेरेंट्स स्टार्टेड लिविंग विद देयर डॉटर एंड सन इन लॉ. The mother, who is a friend of mine, told me that she is being ill-treated by her own daughter and she is treated as a house girl even though she pays weekly rent and buys her food, but she has been deprived of using any leftover food in the house, and now her doctor has her out on antidepressant tablets and her health is very bad. Now, since she is going through abuse by her own daughter and due to that, her son brought them here, they can't even reach the services that her and her husband can. But she is going through the abuse, but she doesn't want to, since they were brought on parents' visa category. I think they doesn't want to go public or something. Ye aap kehna chahte hain. And kyunki wo parent category visa mein aaye the under her son, and they don't want her visa to be affected by reaching out. They both are in mid-60s and the daughter doesn't even allow them to use the heater. They are both very depressed. Ye kisi ne message kiya hai. Good morning. Hello.
17: Good morning. Hi. How are you?
14: I'm good. Thank you, ma'am. Aap kaisi hain?
17: Bilkul theek.
14: Ji.
17: Thank you for bringing this topic up. It's very sensitive, but at the same time, you know, very, very emotional topic. I was just listening to the other listener before... who called before, and I agree to an extent, but I still feel, you know, I'm a firm believer. I don't know how do I express this, but I'm a firm believer of karma. And I do believe that, you know, aap jo bote ho aap wahi paate ho. So agar aaj aap kisi ko ill-treat karte ho to kal ko wo aapki plate mein aane wala hai aise ya waise, And this goes both ways, like the lady said, ki abuse dono taraf se hota hai. So this goes both ways. Agar elderly aapko ill-treat kar rahe hain, ya aap unko kar rahe ho, to it's karma to your plate. But what I believe is mostly for the parents, you know, I've heard the professor before, and I do agree, you go in malls and you'll see all these people, they're walking on the street, sometimes they're sitting in the mall, they don't know what to do, and they're probably saving electricity, that's been asked for. But what I really think is like, wo yahan isliye nahi aate hain na ki ki unko saaf country mein rehna hai ya unko saaf public toilet use karne hai ya unhe waisi kuch facility chahiye, wo yahan aate hain kyunki unhe apne bachchon ke saath time spend karna hai. Right? Wo apne grandparents ke saath, grandkids ke saath time spend karna chahte hain, to wo company ke liye aate hain. So I guess what kya hota hai, because yahan ki life aisi hai, aap itne busy ho har time, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, आपको काम करना है, तो वो अल्टीमेटली ऑलरेडी काफी लोनली फील करते हैं उस वजह से कि यू नो जिसके लिए वो आए थे वो उनके पास नहीं है, लेकिन वो समहाउ उससे कॉम्प्रोमाइज करते हैं, बिकॉज वो समझते हैं इस बात को कि यू नो लाइफ यहाँ पर ऐसी ही है, सबको काम पे जाना पड़ता है, सबको अर्न करना पड़ता है, यू नो. बट टू इल्ट्रेट ऑन टॉप ऑफ दैट कि वो ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं उस चीज से और आपके साथ रह रहे हैं, या ठीक है वो जिसके लिए आए थे नहीं हो रहा है, लेकिन तू उनको ऐसे घर से बाहर निकाल देना और फिर भेज देना, आई जस्ट डोंट थिंक इट्स राइट. बिकॉज आज नहीं तो कल आप भी तो उनके बच्चे थे, आई एम श्योर उन्होंने आपको घर से बाहर नहीं भेजा होगा सर्दियों में, यू नो कि आप जाओ बाहर बैठो, हम लोग काम पे जा रहे हैं, आप स्कूल जाओ, लेकिन उसके बाद ये मत करना वो मत करना, यू नो. तो इट्स इट्स इट्स कर्मा, आई टोटली बिलीव इन कर्मा. प्लीज ट्रीट anybody, चाहे वो आपके इन लॉज हैं या आपके पेरेंट्स हैं या आपके किड्स हैं, लाइक फॉर एल्डरलीज एज वेल, आपके किड्स हैं, प्लीज ट्रीट ईच अदर विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड विद द सेम सेंसिटिविटी एज यू लाइक टू बी ट्रीटेड. बिकॉज आज नहीं तो कल आपको वो आपकी प्लेट में आ ही जाएगा और आपको सफर करना पड़ेगा. और अगर कोई डिप्रेशन में है, चाहे वो यंग है ना या ओल्ड है, बी सपोर्टिव ऑफ इट रादर देन ब्लेमिंग ईच अदर कि आपने ऐसे किया तो आप ऐसे करो या वो. Just be nice human being to each other, and world probably would be a better place to live in, you know, for us and for our elders. That's all I have to say.
14: Thank you so much, ma'am. Thank you so much aapke call ke liye and aapke views jo aapne hamare saath share kiye hain uske liye. और वैसे अभी वक्त नहीं है और कॉल्स लेने के लिए, आप चाहें तो हमें मैसेज कर सकते हैं. एंड रिमेंबर, अगर आप कुछ मुश्किलों का सामना कर रहे हैं और यू नो ऑफ समवन हु इज़ फेसिंग सम डिफ़िकल्टीज, हेल्प देम रीच आउट. दिस प्रोफेशनल हेल्प आल्सो अवेलेबल आपके लिए, जहां आप जा सकते हैं. दिस रिसोर्सेज अवेलेबल जो आपके लिए अवेलेबल हैं, जहाँ पर आप जाकर जानकारियाँ जो हैं ये हासिल कर सकते हैं. 1737 एक नंबर है जिस पर आप मैसेज भी कर सकते हैं, या फिर mentalhealth.org.nz, और साथ में कई अन्य ऑर्गेनाइजेशंस इस रिलेशन में काफ़ी काम जो है ये करते हैं, जो जहाँ पर सपोर्ट आपको मिल सकता है. आपकी कोई राय है जो कुछ भी आपने सुना या फिर जो आपने समझा उसके बारे में, 5599 पर आप मैसेज कर सकते हैं.
11: Bollywood's most wanted.
18: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ.
19: मैं लाऊं अपना A game.
11: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

करीना, सच बोला था शाहरुख इश्क कमीना, तूने यूं तो किया बर्बाद, तू एक नंबर बाकी तेरे बाद है। टीचर के लेक्चर याद हो ना हो, तुझे बादशाह के गाने सारे याद है।

0: Show with Vijay and Pooja.
1: Chubo jao, papi ho. Chubo jao.
2: Accurate traffic.
3: Like rugby, try ice hockey.
4: Lots of cloud, but fine at times, a high of 18. In on the northern motorway, starting to ease 30 minutes in from Constellation Drive. Slow at Silverdale, heavy patches, Greville to the bridge. Northwestern 36 in from Massey, fine to the causeway, but then heavy there to the city. Southern 48 minutes in from Manukau, slow from Papakura, heavy Otahuhu to Remuera. Southwestern quite slow northbound up to the airport link.
3: Big hits, high speed, non stop action. Try something new this weekend. Search ice hockey tickets.
5: Arey Babita, thank you so much for giving me Guru's number, yaar.
6: Kyun? Kya hua?
5: Mujhe urgent kaam se Fiji jana tha. $20,000 chahiye the. Bank gayi, to itne hi documents maange ki bas pooch hui mat. Ek hafta ho gaya. No response. Phir tumne Guru ka number diya aur bas agle din paise mere account mein. Guru to ho ja shuru wala kaam hai.
7: Guru Kandola of Logic Finance, a household name in finance and insurance industry. Call 0800 Logic G. That's 0800-564-424.
8: At Bunnings Trade, no matter where you are, we're here to help. Our builders team with dedicated account managers has got you covered at every building stage, from the front fence to the back gate. Call 0800 134 872 to find out more. Bunnings Trade, helping business is our trade.
9: Ooh, it's an ad break. Perfect time to be reminded that winter immunizations, including flu, are available now. Schedule them in at bookmyvaccine.nz or with your healthcare provider. And hey, you might get to tick it off your list before the next ad break.
10: It's boarding time with Instant Kiwi. But where will you land? Hamilton or Hamilton Island? You never know. For your chance to win a mystery holiday for two, get a $5 cross-world ticket at your local Lotto NZ store and enter online. R18 T's and C's apply.
11: Get a $100 digital Visa card with AMI. Buy a new comprehensive car policy online before the end of September. Visit ami.co.nz. T's and C's apply. AMI, on your side.
12: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काउ घी जब खाने में होगी इतनी शुद्धता इतना स्वाद तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा
13: मुझे भी
12: कशिश प्योर देसी घी अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड खुशियां पकाएं खुशियां खिलाएं
0: Show with Vijay and Pooja.
2: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
0: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton.
14: रश हवा आपके लिए ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा हम लेकर आ रहे हैं और अभी फिलहाल आपके लिए एक बहुत ही खास खबर ये हम लेकर आए हैं एक बहुत ही बढ़िया मौका आपके लिए हम लेकर आए हैं ट्राई विजन इवेंट्स लेकर आ रहे हैं आपके लिए अ नाइट ऑफ क्यूर एंटरटेनमेंट विद कृष्णा अभिषेक एंड राजीव ठाकुर लाइव इन ऑकलैंड खास आपके लिए आपके सामने ये होने जा रहा है 18th ऑफ जुलाई को मतलब अगले महीने नेक्स्ट मंथ ये रहेगा विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर में और आपको ये बता दें कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कृष्णा अभिषेक और राजीव ठाकुर जो है ये आ रहे हैं सुपर सिटी ऑकलैंड न्यूजीलैंड आ रहे हैं परफॉर्म करने और कुछ भी चीज़ जो पहली बार होती है तो उसका मज़ा उसका एक्सपीरियंस एकदम अलग लेवल का होता है सो दिस इज़ समथिंग दैट यू कैन डेफिनेटली बी पार्ट ऑफ एंड यू नो यू कैन एक्सपीरियंस दिस आइकॉनिक जोड़ी और इनके मज़ेदार से इस कॉमेडी नाइट को आप भी इंजॉय कर सकते हैं और जो कैरेक्टर्स ये बेसिकली डिफरेंट शोज में प्ले करते हैं बिकॉज दैट्स हाउ यू माइट हैव सीन देम आपने इनको डिफरेंट शोज में डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले करते हुए देखा होगा कहीं ना कहीं कुछ किसी एक स्टैंड अप कॉमेडी शो में देखा होगा बट इमेजिन इफ दीज पीपल आर मेकिंग यू लाफ आपके सामने स्टेज पर खड़े होकर तो उसका मज़ा कितना अलग होगा
15: Exactly, opportunity है कि आप इन्हें विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर में देखें टिकट्स bookmyevent.co.nz से आप ले सकते हैं और सबसे ज़रूरी बात इतना ख्याल रखें हम आपको बता रहे थे आई थिंक लास्ट वीक बिफोर लास्ट वीक कि VIP टिकट्स जो है ये आप ले सकते हैं आफ्टर पे भी आपके लिए अवेलेबल हैं तो VIP टिकट्स आर सोल्ड आउट ऑलरेडी
14: बिल्कुल अब सारे के सारे VIP टिकट्स गॉन
15: तो बाकी के जो टिकट्स हैं आप जाकर bookmyevent.co.nz पर चेकआउट करें सो दैट यू डोंट मिस आउट द बेस्ट टिकट्स जो आर स्टिल अवेलेबल इन द हाउस. तो आप जाएं bookmyevent.co.nz और जल्द से जल्द अपने टिकट्स जो है ये आप सिक्योर कर लें द ग्रेट कॉमेडी नाइट के लिए.
14: Absolutely. और once you have got your tickets, तो आपको बस आराम करना है. आराम इस वजह से because आपके पास आपका टिकट आ चुका है. इसका मतलब ये कि बिना किसी problems अब आप इस का मजा जो है ये उठा सकते हैं on the 18th of July at Victory Convention Center. Remember, आप कृष्णा अभिषेक और राजीव ठाकुर को लाइव देख सकते हैं द ग्रेट कॉमेडी नाइट के तहत. बाय द वे ये तो खैर बातें हो गई आपके लिए जहां पर आप टिकट्स जो है ये खरीद सकते हैं bookmyevents.co.nz विजिट करते हुए. बट ऑन द अदर हैंड इफ यू वांट एन अपॉर्चुनिटी टू विन हमारे साथ डबल पासेस तो ये मौका भी है. आपको विजिट करना है हमारा फेसबुक पेज. वहां पर आपको एक पोस्ट जो है बेसिकली ये दिखेगा कृष्णा अभिषेक और राजीव ठाकुर की फोटोज के साथ. आपको बस उस पोस्टर को कैप्शन देना है अपने अंदाज में और आपका कैप्शन थोड़ा फनी होना चाहिए यार, थोड़ा इंटरेस्टिंग होना चाहिए. और यही कैप्शन आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे और वंस यू हैव डन दैट यू विल बी पार्ट ऑफ दिस ड्रॉ जहां पर आप जीत सकते हैं हमारे साथ डबल पासेस.
15: So get that done as quickly as possible so that aapke paas opportunity ho and keep getting your tickets bookmyevent.co.nz se.

0: Jen didn't think she needed a DVS system.
1: Oh, I've got insulation in that.
0: But Jen had forgotten about the mould on her walls and curtains.
1: Ah, yeah.
0: So Jen got DVS home ventilation, and its fresh air in, stale air out technology went to work, making her rooms drier, healthier, plus mould and mildew free. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.
2: With Vijay and Pooja.
3: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
2: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton. Throwback.
4: बस थोड़ी देर बाद लेटेस्ट न्यूज एंड स्पोर्ट्स अपडेट जो है ये हम आपके लिए लेकर आएंगे इस प्रोग्राम में, और साथ ही में अगले घंटे आपको बताएंगे हमारे आसपास हमारी कम्युनिटी में क्या कुछ हो रहा है, इसकी भी जानकारियां आपके लिए होंगी ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। आपको पता है साउथ कोरिया ने कुछ बहुत ही यूनिक किया है।
5: क्या?
4: साउथ कोरिया में अधिकारियों ने वहां पर लोगों को हेल्प करने के लिए एक ऑनलाइन स्टोर जो है ये सेटअप किया है।
5: अच्छा।
4: और ये ऑनलाइन स्टोर जो है इज अ फेक ऑनलाइन स्टोर
5: है।
4: हाँ,
5: फेक लोगों को हेल्प करने के लिए फेक ऑनलाइन स्टोर क्यों सेटअप किया?
4: क्योंकि लोगों को आदत हो गई है ऑनलाइन शॉपिंग की ना, और इसकी वजह से पैसे नहीं बचा रहे हैं। तो जिन लोगों को ये आदत हो गई है, दे कैन गो ऑनटू द ऑनलाइन शॉपिंग, ये जो फेक ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर है वहां पर आप सब कुछ कर सकते हैं एक्सेप्ट बाइंग। हाँ, ऐसा आपको लगेगा कि आप खरीदेंगे बट वो एक्चुअल में खरीद नहीं रहे हैं आप।
5: हाँ,
4: सामान
5: फेकिंग
4: है। हाँ, सामान भी आपके लिए वहाँ पर रखे हुए हैं। यू गो चूज क्या आपको चाहिए, एडिट टू योर कार्ट एंड एवरीथिंग, एंड देन चेकआउट भी आप कर सकते हैं। बट दिस फिजिकली रियली में कुछ होता नहीं है।
5: ये बड़ा वियर्ड सा तरीका है ऑनेस्टली किसी को ऑनलाइन स्टोर की आदत छुड़ाने के लिए। आई फाइंड इट वेरी वियर्ड टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब एक पूरा का पूरा स्टोर सेटअप किया गया है जहाँ पे यू कैन फेक of doing on like fake it कि आप ऑनलाइन शॉपिंग जो ये कर रहे हैं और सब कुछ कर सकते हैं विदाउट बाइंग इट। तो लोग जाएंगे क्यों यहाँ पे डिस्पाइट नोइंग कि आप वो जो कर रहे हो वो बेसिकली वो आप खरीद नहीं सकते।
4: आई एम नॉट रियली श्योर जाएंगे या नहीं जाएंगे, वो तो वक्त बताएगा। बट अपनी ओर से कोशिश उन्होंने की है।
5: वेरी इंटरेस्टिंग आई वुड से।
4: फिलहाल ये थ्रोबैक एंजॉय करें, इसके बाद

0: made today.
1: अरे बबीता, thank you so much for giving me Guru's number, यार.
0: क्यों? क्या हुआ?
1: मुझे urgent काम से Fiji जाना था. $20,000 चाहिए थे. Bank गई, तो इतने ही documents मांगे कि बस पूछो ही मत. एक हफ्ता हो गया, no response. फिर तुमने गुरु का number दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे account में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
2: Guru Kandola of Logic Finance, a household name in finance and insurance industry. Call 0800 Logic G. That's 0800 564 424.
3: Bunnings Trade is here to help get insulation jobs sorted. Save time and money with Earthwall Glasswool R7.0. It's quick and easy to install in a single layer, meeting H1 ceiling compliance. Call 0800 134 872 to arrange a quote and easy on-site delivery at Bunnings Trade.

0: Get $299 deals this week only at Trade Depot. Fridge freezers, $299. Washing machines, $299. Dishwashers, $299. Ovens, $299. Shop online or in store at Trade Depot Nielsen Street, Onehunga. With minimum spends, you can get free home delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply. TradeDepot.co.nz.
1: The Red Hot Sale is on now at Mazda, with great deals across a range of SUVs. But hurry, these prices are too hot to last. Don't miss out. Head to Mazda.co.nz and book a test drive today. Mazda.
2: Time check. Good morning, Isamitik Novaj Rahe Hain.
3: Hum News. Brought to you by Logic Finance Limited. Changing lives with logic.
4: Morning, I'm Grace Cocker with the latest at 9. Public health specialists warn proposed move-on orders will make it worse for homeless youth. A new study estimates around half of the unhoused population is under 25. Author Neville Pearce says it does nothing to lift them out of an already difficult situation.
5: Giving them fines, which they won't be able to pay because if you're homeless you don't have $2,000, and a criminal record.
4: Work has started to biannually rebuild a central Wellington beach. Council first used grit from Golden Bay to make up Oriental Bay, and now it's focused on Dunedin. Marine and Coastal Project Manager Joel De Boer says it needs to be topped up every 10 to 12 years.
6: 10 years later, in 2014-15, they imported sand from Dunedin, of all places.
4: There's been clashes in Switzerland's Geneva as thousands protest the upcoming meeting of G7 leaders. Riot police fired tear gas and water cannons while a car was torched and bank windows smashed. A plane taking people skydiving has crashed in the US, killing 12. It came down in a field adjacent to the Butler Airport. In sport, Ryan Fox is on the charge late in the final round at the PGA Tour's Canadian Open. The Kiwi golfer is the defending champion and made an eagle on the par 4 12th hole to rocket back into contention. A short time ago, Fox was tied for second place, three shots back with two holes to play. And no goals between the Netherlands and Japan at halftime of their FIFA World Cup Group F match in Dallas. Football updates brought to you by Hisense.
7: Sports News.
3: Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
8: World's best, hamari koi branch nahi hai.
3: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
2: 12 degrees temperature ho chuka hai Auckland mein, aaj ka high 17, overnight kam se kam 10 degrees rahega, badal chhayenge, subah ke waqt kuch jagah par fog aur rare kar kuch halki barish bhi ho sakti hai. Sunset aaj ka sham 5:12 par hoga.
3: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
7: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. What's going on?
2: Sabse pehle to a very happy 6th birthday hum kehna chahenge janab aapko. Papa Vimal hai, Mummy Jaslin, Masi hai Roslin, Bhaiya Aryan, Shayan, Virav hai, Aja Aji hai, aur jitne bhi friends and family members hai, to aap school pahunch chuke honge. Janav, aapko a very happy birthday.
7: Kya bakte ho?
9: Are kehna kya chahte ho?
10: तो आपके लिए लेकर आ रहे हैं व्हाट्स गोइंग ऑन. शुरू कर रहे हैं इस घंटे का ये सफर जहाँ के भी आप है साथ हमारे दे रहे हैं. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स.
2: आज क्या बकते हो मैं ये कहानी जब मैंने पढ़ी तो यू नो आई कुड फील समथिंग ऑन माय टेस्ट बड्स
10: है. yeah. कहानी पढ़कर आपको
2: कहानी पढ़ के ही मुझे फील आ गया. लेकिन जो कुछ भी है मेरे नहीं ये मेरे बस की बात नहीं है क्योंकि आपको शहद पसंद है हनी.
10: नहीं, not that much.
2: क्यों? It's so such बहुत अच्छा है उसके लिए ना शायद.
10: I know अच्छा है ये. मुझे ये पता है कि अच्छा है पर मुझे इतना पसंद नहीं है ये. I don't know क्यों पर सच में नहीं पसंद है.
2: तो एंड्री ऑटोल्फ हैं, जर्मनी के एक यंग पर्सन हैं और इन्होंने एक रिकॉर्ड जो है ये कायम किया है और उन्होंने अटेम्प्ट किया जर्मनी में और इन 60 seconds इन्होंने 1,273 grams of honey जो है ये consume किया.
10: 1,273 grams.
2: हाँ.
10: Of honey.
2: Yes.
10: और कितने देर में आपने mention किया?
2: 60 seconds.
10: 60 seconds में खा लिया इन्होंने.
2: हाँ.
10: क्या बात है भाई.
2: Just imagine एक एक आई थिंक दैट वुड बी अराउंड 2 pounds ना,
10: कुछ तो होगा बट सुनने में ही ज्यादा लगता है।
2: अरे भाई आप देख लो 100 gram का एक पैकेट का, कहीं कहीं कहीं कहीं पर आप स्पाइसेस हाँ, वगैरह लेते हैं
10: वो बड़ा होता है, काफी बड़ा होता है।
2: हाँ तो उस तरह के इतने सारे पैकेट्स ऑफ हनी
10: 1273 grams 60 seconds
2: क्या बकते हो, ऐसे कैसे हो सकता है? और वो भी क्या है कि इतना मीठा ना।
10: हाँ उनको पसंद होगा ना, पर उन्होंने शायद वो रिकॉर्ड कायम करने के लिए किया होगा। पहली चीज तो ये उनका इरादा इज बेसिकली टू यू नो बी अ रिकॉर्ड होल्डर इन दिस पर्टिकुलर कैटेगरी, एंड ऑन द अदर हैंड उनको पसंद भी होगा इसीलिए वो कर चुके या कर पाए वो ऐसा।
2: आई एम नॉट रियली श्योर बट हैट्स ऑफ टू हिम, जो कुछ भी इन्होंने किया है और वो भी चम्मच से उन्होंने ऐसे ऐसे करके एक 60 सेकंड्स के अंदर
10: कैसे करके
2: ऐसे ऐसे हाँ खालिया शायद
10: राइट। इंटरेस्टिंग है कि लोग कितने यू नो कमाल के होते हैं, उनकी कैपेबिलिटी कितनी कमाल की होती है और ऐसे ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स जो है ये बना लेते हैं, बेसिकली रिकॉर्ड्स कायम कर लेते हैं वो भी। तो आपके लिए और भी ऐसी बहुत सी शॉकिंग इंटरेस्टिंग क्या बकते हो की कहानियां हम लेकर आते रहते हैं हर रोज ऑन द ब्रेकफास्ट शो हमारे वर्ड्स गोइंग ऑन जो घंटे है इसकी शुरुआत पर।

0: What's going on?
1: What's up?
2: What's up, Auckland?
3: सबसे पहले तो याद रखें कि मुस्कान केयर ट्रस्ट आपके लिए लेकर आ रहे हैं इंटरनेशनल सिकल सेल अवेयरनेस ब्लड डोनेशन ड्राइव, और ये इसी वीक रहेगा 20th ऑफ जून को मैनुकाओ न्यूजीलैंड ब्लड सेंटर में, जहां पर जाकर आप रक्तदान कर सकते हैं, साथ में अवेयरनेस क्रिएट करने में भी हेल्प कर सकते हैं जो थैलेसीमिया है और सिकल सेल एनीमिया है। इसके बारे में डिटेल्स के लिए मुस्कान केयर ट्रस्ट .org.nz या उनका फेसबुक पेज आप विजिट कर सकते हैं।
4: और इसके अलावा आपको हम याद दिला रहे हैं कि खास रूप से होने जा रहा है एक बहुत ही स्पेशल मेडिटेशन प्रोग्राम। और ये जो मेडिटेशन प्रोग्राम है, ये दरअसल डिफरेंट डिफरेंट टाइमिंग्स पर, चार डिफरेंट लोकेशंस पर होता है, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ज़रूर इसमें पार्ट ले सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात ये भी हम आपको बता दें कि ये ख़ास रूप से आपके लिए हो रहा है फॉर एब्सोल्युटली फ्री। सहाजा योगा ग्लोबल मेडिटेशन इसे आपके लिए लेकर आ रहे हैं, फ्री वीकली मेडिटेशन प्रोग्राम जहां पर आप बिल्कुल मुफ्त में इसका हिस्सा बन सकते हैं। मरीज बे में आउटरम होल 478 बीच रोड मरीज बे, एवरी मंडे को 7:15 PM से 8:15 PM ये रहता है। और डिटेल्स के लिए आप मारिया को 022-303-9918 पर कॉल कर सकते हैं। दूसरी ओर माउंट एल्बर्ट में अवरा का सी स्काउट्स होल रेंज व्यू रोड मरी हर्लबर्ग पार्क माउंट एल्बर्ट में ये रहता है एवरी सैटरडे को 10 AM टू 12 PM। और डिटेल्स के लिए आरती से 022-404-8386 पर आप बात कर सकते हैं। हॉविक में द ग्रीन रूम वर्क्स ब्रिज सेंटर 35 वर्क्स ब्रिज रोड हॉविक एवरी ट्यूजडे को 7 PM टू 8 PM। डिटेल्स के लिए 022-566-9445 पर आप कॉल कर सकते हैं। और फाइनली नॉर्थ कोट में ये होता है एवरी ट्यूजडेज को, और 27 लेक रोड नॉर्थ कोट आप पहुंच सकते हैं 7 PM टू 8 PM। डिटेल्स के लिए आप ओमकार को 022-107-4452 या मोहन को 022-657-7266 पर कॉल कर सकते हैं।
3: दिव्य शक्ति चैरिटेबल इसके अलावा याद रखें कि न्यूजीलैंड आर्ट एंड कल्चर चैरिटेबल ट्रस्ट आपके लिए लेकर आ रहे हैं श्री रामलीला। 8th of August को ये होने जा रहे हैं ऑकलैंड में, और इसके लिए तैयारियां ज़बरदस्त चल रही हैं। अगर आप टीम को ज्वाइन करना चाहते हैं एज अ क्रिएटिव विजुअल डायरेक्टर, तो मास्टर अशोक को 021-179-5459 पर आप संपर्क कर सकते हैं।
4: तो आपके आसपास आपकी कम्युनिटी में भी अगर कुछ इवेंट्स हो रहे हैं और आप चाहते हैं कि इनके डिटेल्स हम शेयर करें आप सभी के साथ, स्पेशली आउट देयर इन आवर कम्युनिटी, ताकि वो इसका हिस्सा बन सके, तो आप ज़रूर हमारे पास ये डिटेल्स ईमेल कर सकते हैं buzz@humfm.com buzz@humfm.com पर आपको अपने ईमेल्स जो है ये सेंड करने होंगे। और वंस यू सेंड द ईमेल्स अक्रॉस, तो हम आपके लिए व्हाट्सएप ऑकलैंड के हमारे सेगमेंट में इसे ज़रूर लेकर आएंगे।
3: माँ दुर्गा मंदिर 4x3 अंसलो एफ पापा टोए टोए पर माँ भगवती जागरण इसी शनिवार को होने जा रहा है रात 7 बजे महाप्रसाद, और 9 बजे से ज्योति प्रचंड, और जागरण रात भर आपके लिए जारी रहेगी। अभी 18 मिनट हो रहे हैं 9 बजकर।
2: Punjabi swag is on.

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
2: 22 मिनट हुए हैं एंड 9 बजकर द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा जारी है आपके लिए. हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स 104.2 एफएम और रोवर पर. फीफा वर्ल्ड कप ग्रुप एफ का मैच नेदरलैंड्स और जापान के बीच सेकंड हाफ में खेला जा रहा है. दोनों टीमें अभी एक एक गोल से एक बराबर हैं. और भी अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे, लेकिन आज 15th ऑफ जून आ चुका है और बस 5 और दिन यानी आई थिंक इसी सैटरडे तक ही आपके पास अपॉर्चुनिटी है टू गो एंड वॉच द बलून डॉग एट द क्यू थिएटर ना.
3: एब्सोल्युटली, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है, इसीलिए आप अभी भी ऐसा कीजिए. आज 15th है, 5 दिनों में आपके पास 20th तक का टाइम है. इनफैक्ट आप टिकट्स जो है ये ग्रैब कर लीजिए बलून डॉग के लिए. एंड इसके लिए यू जस्ट नीड टू विजिट द वेबसाइट विच इज iticket.co.nz और यहाँ से आप टिकट्स जो है ये ग्रैब कर सकते हैं. बलून डॉग अगर आप सोच रहे हैं क्या है तो आपको बता दें, बहुत ही जाने माने अवार्ड विनिंग परफॉर्मर है जेकब राजन. इन्होंने बलून डॉग की कहानी जो है ये लिखी है. इनफैक्ट को रिटन है ये बाय जेकब राजन एंड जस्टिन लिविस. और जस्टिन लिविस ने इस पर्टिकुलर प्ले को डायरेक्ट भी किया है. और जेकब राजन इसमें दिखेंगे आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर प्ले करते हुए. इसकी कहानी बेसिकली इज इंस्पायर्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर जी की जो बहुत ही बिलव्ड स्टोरी काबुलीवाला से. लेकिन ये जो कहानी है बलून डॉग, इट्स सेट इन द 21st सेंचुरी इन ऑकलैंड. और यहाँ पर एक 5 साल की बच्ची और एक लोनली माइग्रेंट वर्कर के बीच की जो फ्रेंडशिप है उसके बारे में कुछ आपको देखने को मिलेगा. सो इट्स फिल्ड विद ह्यूमर, इट्स फिल्ड विद लव, इट्स फिल्ड विद करेज एंड कनेक्शन, इट्स फिल्ड विद अंडरस्टैंडिंग एंड डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, जिसमें आपको लाइव ओरिजिनल म्यूजिक, डांस और साथ में प्योर थिएट्रिकल मैजिक ये एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा. सो आज से पहले अगर कभी आपने कोई एक प्ले थिएटर का जो मैजिक है ये एक्सपीरियंस नहीं किया है, दिस इज योर चांस, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी.
2: तो बस फ्यू डेज टू गो, iticket.co.nz विजिट करें, जल्द से जल्द अपने टिकट्स ले लें एंड गो एंड एंजॉय द बलून डॉग एट क्यू थिएटर.
0: बॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड
4: गुंडी खड़ा हो या सीधा अंदर आओ.
5: मैं लाऊं अपना ए गेम.
0: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने।
1: Mary didn't think she needed a DVS system.
2: I've got a heat pump. That should do.
1: But it didn't do it, did it, Mary?
2: No, my windows wouldn't stop crying condensation.
1: So Mary got DVS home ventilation and its fresh air in, stale air out technology went to work, making her rooms drier, healthier and condensation free. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.
3: तैयार हो जाओ एक सूफी रात के लिए। Once upon a time with the legendary Rahat Fateh Ali Khan live in concert along with Shah Zaman Ali Khan Saturday 25th July at the Trust Arena. Book your tickets on drytickets.co.nz or sponsorships call Karam Hundal on 027-514-6477.
4: Absolutely everything is on sale at Freedom. Get up to 60% off absolutely everything. All sofas, all furniture, all mattresses and all homewares. Sale on now, only at Freedom.
5: Thinking about becoming a teacher? Visit the Ministry of Education's Become a Teacher store at the Auckland Showgrounds on the 16th and 17th of June. Discover what teaching involves, explore your study options and find out where a career in teaching could take you.
6: Want more points this week? It's Double Points Week with Everyday Rewards. Scan your Everyday Rewards card at Woolworths, Fresh Choice, BP, Gas, Petstock and Milk Run by Sunday, June 21st to get 2x points on your total spend. See everydayrewards.co.nz for T's and C's.
7: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
8: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
9: What's going on?
10: राउंड अप करते हैं, क्या कुछ हो रहा है या हो चुका है। सबसे पहले तो जो मैच खेला जा रहा है फीफा वर्ल्ड कप का, नेदरलैंड्स और जापान के बीच तकरीबन 15 मिनटों का खेल बाकी रह गया है। नेदरलैंड्स की जीत 2-1 से हो रही है। 11 बजे आइवरी कोस्ट इक्वाडो से खेलेगा। 2 PM स्वीडन और ट्यूनिजिया का मैच जो है ये खेला जाएगा।
11: इसके अलावा एक रिपोर्ट जो है ये सामने आई है, अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट कहा गया है नीली 5% ऑफ कीवीज अर्न मिनिमम वेज बट मेनी आरंट अर्निंग मच मोर। न्यूजीलैंड में मिनिमम वेज जो है ये सिग्निफिकेंटली बढ़ता हुआ नजर आया है इन द पास्ट सो मेनी इयर्स, फ्रॉम $12 एन आवर जो 2008 में था और 2026 में अब ये जाकर $29.90 जो है नीली ये हो चुका है। और या सॉरी मिनिमम वेज जो है ये $23.95 हो चुका है एन आवर, जबकि करंट लिविंग वेज इज $29.90 एन आवर। तो ये कहा जा रहा है कि अबाउट 5% ऑफ न्यूजीलैंड वर्कर्स आर करंटली अर्निंग द मिनिमम वेज एंड अराउंड 122,500 पीपल जो है दे अर्न लेस देन द करंट मिनिमम वेज लास्ट ईयर, जिसमें कई यंगर वर्कर्स या फिर ट्रेनीज ऑन डिफरेंट रेट्स जो है ये शामिल है। मिनिमम वेज इज नाउ इक्वल टू अबाउट 2/3 ऑफ द मीडियन वेज, मेकिंग इट वन ऑफ द हाइएस्ट रिलेटिव मिनिमम वेज इन द डेवलप्ड वर्ल्ड, ऐसा ये माना जा रहा है। एंड इकोनॉमिस्ट का कहना है कि मैनी न्यूजीलैंड जॉब्स आर कॉन्सेंट्रेटेड इन ट्रेडिशनली लोअर पेड इंडस्ट्रीज, जिसमें रिटेल, हॉस्पिटैलिटी, एग्रीकल्चर, केयर एंड सपोर्ट वर्क जो है ये शामिल है। लेकिन एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि स्लो प्रोडक्टिविटी ग्रोथ, वर्कर्स मूविंग टू ऑस्ट्रेलिया फॉर हायर वेजेस और बिजनेसेस रिलाइंग ऑन लोअर लेबर कॉस्ट्स इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग इन टेक्नोलॉजी एंड ट्रेनिंग, ये भी दरअसल एक पॉइंट बन सकता है। तो लिविंग वेज जैसे कि हमने कहा वर्सेस मिनिमम वेज अगर देखा जाए, while the legal minimum wage is $23.95 an hour, the current living wage is $29.90 an hour. Union ka kehna hai ki more employers should aim to pay the living wage kyunki jo ye basically workers ko help karega to cover the living costs aur isse staff retention jo hai ye bhi improve ho sakta hai.
10: जो लेटेस्ट द पोस्ट फ्रेश वाटर स्ट्रेटेजी पोल रिजल्ट्स हैं ये सामने आए हैं। दोनों मेजर पार्टीज ने इस पोल में कुछ सपोर्ट लूज किया है, लेकिन लेबर अभी भी नेशनल से आगे हैं। लेबर की ओर अगर देखें तो लेबर हैज 35% सपोर्ट इन द पोल, डाउन 2 पॉइंट्स। जब लास्ट सर्वे फरवरी में किया गया था, नेशनल इज ऑन 29% डाउन 1 पॉइंट. एक्ट और न्यूजीलैंड फर्स्ट जो है, दे हैव गेन्ड सपोर्ट सिंस द लास्ट पोल. न्यूजीलैंड फर्स्ट 1.12% हो चुका है और एक्ट वॉज अप 2 पॉइंट्स, अब 8% पर है. ग्रीन्स स्टेडी है 10% विद टे पार्टी माउरी ऑन 2%. इस नंबर्स, इन नंबर्स को अगर देखें तो कॉलिशन पार्टीज आसानी से सरकार बना सकेंगी विद 68 सीट्स इन पार्लियामेंट कंपेयर टू 62 द लेफ्ट ब्लॉक. और लेबर लीडर क्रिस हिपकिंस अभी भी प्रिफर्ड प्राइम मिनिस्टर हैं ऑन 44%, लेकिन ये 2 पॉइंट्स डाउन हुआ है सिंस द लास्ट पोल. क्रिस्टोफर लक्सन हैज गेन्ड सपोर्ट, अभी 37% पर है, अब 3 पॉइंट सिंस फरवरी.
11: And the final one from my end, आज दरअसल यूथ अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में है. RNZ पर एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि यूथ अनएम्प्लॉयमेंट जो है, इट हैज हिट हाईएस्ट लेवल इन मोर देन 30 years. नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड यंग न्यूजीलैंडर्स बढ़ चुका है 17.3% से 15 to 24 years के बीच में, हाईएस्ट लेवल इन मोर देन 3 decades अकॉर्डिंग टू स्टेट्स न्यूजीलैंड के कुछ फिगर्स जो सामने आए हैं. In response, government ने ये अनाउंस किया है कि it will double funded trades academy places from 10,000 to 20,000 over the next 4 years, जिसमें scrapping the fees free tertiary study scheme जो है ये fund किया जाएगा इसके द्वारा, और additional places will begin rolling out from 2027. Prime Minister Christopher Luxon ने कहा है कि जो investment है, it is designed to prepare young people for an expected 220,000 new job forecast over the next 4 years. और ट्रेड्स एकेडमिक्स का कहना है कि दे आर ऑलरेडी हेल्पिंग स्टूडेंट्स गेन प्रैक्टिकल स्किल्स, ड्राइवर लाइसेंसेस एंड वर्क एक्सपीरियंसेस. जैसे इनमें कुछ ऑर्गेनाइजेशंस शामिल हैं जिनमें एरा चैरिटेबल ट्रस्ट ये हैं जो रिपोर्ट कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग एम्प्लॉयमेंट आउटकम्स फॉर ग्रेजुएट्स. हाउएवर एजुकेटर्स और यूनियंस का ये कहना है कि द कंसर्न रिमेन्स कि वेदर इनफ जॉब्स विल बी अवेलेबल इन न्यूजीलैंड, warning that many skilled young workers could still be attracted to higher paying opportunities in Australia.
10: और पापामोआ में एक घटना घटी. एक पब्लिक बस में 11 साल के एक लड़के को असोल्ट किया गया, जिसके बाद पुलिस ने एक व्यक्ति पर चार्जेस लगाए गए हैं. लड़के के पिता ने पुलिस को बुलाया आफ्टर द इंसिडेंट ऑन 2B बाय बस. ये जून 9th को घटा था जिसमें लड़के पर को असोल्ट किया गया एंड ही वॉज पुश्ड ऑफ द स्टेशनरी बस, यानी बस जो खड़ी थी उससे बाहर धकेल दिया गया. विच ही जस्ट बोर्डेड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल एट पापामोआ कॉलेज. लड़के के पिता ने बताया कि इलाके में स्कूल बसेस और ज़्यादा अवेलेबल होने चाहिए ताकि बच्चों को पब्लिक बसेस में सफ़र नहीं करना पड़े. पापामोआ कॉलेज के प्रिंसिपल ईवा रोपाती ने स्टाफ को बताया कि स्कूल हैज एडवोकेटेड फॉर स्कूल बस सर्विसेज दैट वी मैनेज दैट डज नॉट इन्वॉल्व पब्लिक यूसेज. एंड उन्होंने कहा कि स्कूल हमेशा स्टूडेंट्स से बातें करता रहता है अबाउट कॉन्डक्ट एंड बिहेवियर ऑन द बस. साइमन बेल जो कि ट्रांसपोर्ट ऑपरेशंस मैनेजर हैं बॉय ऑफ प्लेंटी रीजनल काउंसिल के, उन्होंने कहा कि काउंसिल पापामोआ कॉलेज के साथ मिलकर काम कर रही है कुछ सूटेबल अरेंजमेंट्स के लिए. और शनिवार को पुलिस ने 37 वर्षीय टोरंगा के एक व्यक्ति पर चार्जेस लगाए असोल्टिंग अ चाइल्ड, और उन्हें 19th of June को टोरंगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश किया जाएगा. और साथ ही में इस तरह के और भी कई खबरें आ रही हैं जिन पर डिटेल्स हम आपको बारी बारी से इस प्रोग्राम में देते रहेंगे.

0: आज की पहली बात, कहते हैं कि ये दुनिया बड़ी जालिम है, दिल से फंसाती है और दिमाग से लूटती है।
1: ओके।
0: और दूसरी बात, ईमानदारी की ताकत इतनी बड़ी है कि बेईमान आदमी भी घर का चौकीदार ईमानदार ही रखना चाहता है।
1: This is a really good one. चले इसी के साथ साथ अब आपसे चाहेंगे इजाजत जाने की। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। हमारी आपकी मुलाकात होगी अब कल एक बार फिर 6 से 6 पर द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा लेकर हम आपके साथ जुड़ जाएंगे। अपना बाकी का दिन और बाकी का वीक एंजॉय करें।

बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे

0: Factor.
1: Ladies and gentlemen, dil thaam ke baithiye kyunki aa rahi hai
2: My Time with Kashika.
3: नमस्कार एंड अ वेरी वेरी हैप्पी मंडे टू ऑल ऑफ यू. मैं काशिका स्टूडियोज में आ चुकी हूँ 12 बजे तक आपका साथ निभाने के लिए. आ चुकी हूँ क्योंकि मुझे जानना है कि आपका वीकेंड कैसा गया. आ चुकी हूँ क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि आपने क्या अपने लिए टाइम निकाला या नहीं निकाला. आ चुकी हूँ रिमाइंडर बनकर, आपकी रिमाइंडर क्लॉक बनकर. तो हाउ हैव यू बीन, इन सारे सवालों के जवाब फटाफट फटाफट दो. बारिश हो गई, देखो आपके ऊपर आज बिना बारिश के इन सवालों की. लेकिन हाँ, ये बात तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने लिए कितने इम्पॉर्टेंट है. कल अगर हम नहीं है तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, है कि नहीं. एंड हम अपने लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं. तो सबसे पहले हम अपना ख्याल रखते हैं. फ्लाइट में भी जाते हैं ना तो भी यही कहते हैं ना कि अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, उसके बाद अपने पगल वाले की कुर्सी की पेटी बांधो. तो पहले अपनी कुर्सी की पेटी बांधी कि नहीं बांधी आपने? अच्छा, नहीं बांधी तो भाई बता देती हूँ, हफ्ता भर है, आपको मैं याद दिलाती ही रहूँगी. कशिश फूड्स की ओर से माय टाइम लेकर मैं काशिका 12 बजे तक आपका साथ निभाने वाली हूँ. थोड़ी देर बाद हमारा साथ निभाने के लिए स्टूडियो लाइन पर आ जाएंगे लीगल एसोसिएट से राज प्रदीप सिंह जी. कोई सवाल है तो ज़रूर हमें बताइएगा. एंड साथ साथ याद दिलाना चाहती हूँ कि कशिश फूड्स की ग्रोसरी शॉपिंग तो आपने ज़रूर कर ही ली होगी. हाँ, जहाँ कहीं भी गए होंगे शायद वीकेंड के मूड में, तो शायद रोवा ऐप के जरिए आपने हमें सुना होगा. अब भाई रोवा ऐप के जरिए अगर आपने सुना है तो हमारे म्यूजिक स्टेशंस को ज़रूर आपने सुना होगा, चाहे वो हम रिवाइंड है, जूक बॉक्स है, फीजी कीर्तन संग्रह है, चढ़दी कला है, या फिर फीजी कीर्तन संग्रह के अलावा राहत फतेह अली खान जी. अच्छा भाई, इतने सारे स्टेशन हैं, इन सब स्टेशन में सबसे खुशी की बात तो ये है कि हम रिवाइंड नंबर वन म्यूजिक स्टेशन है पूरे रोवा स्टेशन जितने भी आप देख रहे हो वहाँ पर. है ना फख्र की बात भाई, क्योंकि पुराने गानों से हमारे एक अलग ही लगाव होता है, अलग ही एक बात होती थी उनमें. तो सुनते चले जाइएगा हम प्लेइंग बॉलीवुड बिगेस्ट हिट्स ऑन हम 104.2 FM और साथ साथ रोवा ऐप के जरिए. गुड मॉर्निंग.
0: बचाओ क्या,

0: So,
1: experts adda. My time with Kashika.
2: आजकल चल रहा है बहुत न्यूज़ में. हाफी तो नहीं.
0: ऑल राइट, मैं न्यूज में तो हूँ, लेकिन मुझसे ज्यादा न्यूज में इमिग्रेशन की न्यूज होती है. एंड हमारे साथ निभा रहे हैं स्टूडियो लाइन पर नानददन राज जी फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स. हाउ आर यू सर?
3: वेरी गुड कशिका जी. गुड मॉर्निंग टू ऑल हम एफएम लिसनर्स.
0: सर, ये एक बात बताइए कि ये स्टूडेंट वीजा जो होती है ना, इसकी एप्लीकेशन जो है ये प्रोसीड हो रही है इमिग्रेशन न्यूजीलैंड के साथ. व्हाट आर द काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज डू यू थिंक वी हैव?
3: या करंटली एज यू विल अंडरस्टैंड और आई थिंक काफी सारे लोगों को पता है कि अगस्त दिस ईयर 24th से न्यूजीलैंड इमिग्रेशन जो रेजिडेंस वीजा एप्लीकेशन है या रेजिडेंस वीजा पॉलिसी है उसके अंदर चेंज आ रहा है. इट मीन्स जो न्यूजीलैंड में मास्टर डिग्री जिसने कंप्लीट किया है, दे कैन अप्लाई स्ट्रेट अवे रेजिडेंस वीजा विद ऑफर लेटर विद एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर एंड अ मेडन वेज. तो इसी के लिए गुड अपॉर्चुनिटीज है फॉर स्टूडेंट वीजा.
0: अच्छा.
3: क्योंकि ये जो है जी जो काइंड ऑफ पॉलिसी है ये न्यूजीलैंड इमिग्रेशन ने पहले ही डिक्लेयर कर दी थी. तो इसलिए आई थिंक जो अप्रैल के सेशन थे, मार्च अप्रैल के सेशन, वो काफी बिजी रहे हैं और जुलाई वाला सेशन तो बहुत बिजी है. आई थिंक जुलाई का सेशन पूरा कंप्लीट हो चुका है क्योंकि यहाँ पे लोकल लोग हैं जो आए हुए, चाहे वो एक्रेडिटेड एम्प्लॉय वर्क वीजा पे, पार्टनरशिप वर्क वीजा पे हैं या ओवरसीज में जो भी लोग यहाँ पे रहते हैं. उन्होंने सबसे पहले न्यूज तो न्यूजीलैंड में चलती है, फिर वो अपने रिश्तेदारों को बताते हैं या ऑनलाइन न्यूज इंडिया में रिश्तेदार देखते हैं, वो अपने न्यूजीलैंड के रिश्तेदारों से पूछते हैं क्या अपॉर्चुनिटी आ रही है, किस तरह का ये मास्टर डिग्री वाला है. तो इसके अंदर ना बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट वीजा में. इफ यू आर कमिंग हियर टू न्यूजीलैंड इन अ मास्टर डिग्री, तो सबसे बड़ी ऑप्शन है आपके पास दो की, यू कैन स्टडी फुल टाइम एंड यू कैन स्टडी पार्ट टाइम लाइक 25 आवर्स पर वीक. Or you can study full time and you work full time as well. वो अपना dissertation, thesis या you know offline वाले courses होते हैं जो आप attend करते हो और फिर आपको 3 साल का post study open work visa मिलता है. तो ये बहुत अच्छी opportunity है. दूसरी है green list के जो courses है, whether it's a bachelor degree courses, teaching के हैं, nursing के हैं, IT courses हैं, health related courses हैं जो green list के हैं, तो उनके अंदर भी जो उनके पार्टनर्स हैं उनको पोस्ट स्टडी जिस टाइम वो स्टूडेंट वीजा पे पढ़ रहे थे तो उनको डिपेंडेंट पार्टनर ओपन वर्क वीजा मिलता है. सो देयर इज सो मेनी अपॉर्चुनिटीज हियर इन टर्म्स ऑफ यू नो स्टडीज इन न्यूजीलैंड. और क्यों बोल रहा हूँ मैं, बिकॉज दिस इज काइंड ऑफ अ पाथवे फॉर देयर रेजिडेंस वीजा इन न्यूजीलैंड जिस तरह का ये आ रहा है. एंड न्यूजीलैंड एज यू नो दे आर लुकिंग फॉर स्किल्स इन न्यूजीलैंड, तो स्किल के बेस पे ये सब कुछ हो रहा है. तो अगेन जो लोग हमें सुन रहे हैं, चाहे वो न्यूजीलैंड में हैं या आपके थ्रू हमें ओवरसीज में या इस तरह की इंफॉर्मेशन है, इफ दे वांट टू डिस्कस विद अस देन डेफिनेटली वी कैन गाइड थ्रू हाउ टू क्वालिफाई फॉर अ स्टूडेंट वीजा. एंड स्टूडेंट वीजा इजी नहीं है. सबसे पहले तो कोर्स का जो उनका सिलेक्शन होता है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड साथ में जो उनका मॉनिटरी है, जो पैसे का, हाउ दे पे देयर ट्यूशन फी, हाउ दे शो देयर अकोमोडेशन और प्रिपेयर फॉर FTS. So it's very very important. तो उसके लिए of course कशिका जी, they need to discuss with us our case and any New Zealand citizen or resident, they can sponsor their you know relatives or friends and family या उनके network में कोई भी उनका जानकार है, so they can support the application very well.
0: Oh great. So the number to give a call is 2799439 और book कर सकते हैं आप appointment through legalassociates.co.nz. नहीं तो उनके Auckland office आप इस तमाकी पापा टोयोटा पहुंच सकती हैं, Frankton Hamilton में भी आप पहुंच सकते हैं. अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी सर, एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन थिंग्स टू दी लिसनर्स हियर.
3: योर लिसनर्स.
0: जी जी जी.
3: थैंक यू
0: सर. बाय बाय.
3: बाय बाय.
0: इसी के साथ साथ ऑफिस शाउट आउट का वक्त आ रहा है, जल्दी से मुझे आप 5599 पे टेक्स्ट कर सकते हैं.
1: Get ready New Zealand. Hum is proud to bring you Stick with Hum, your chance to support the Vantage Black Sticks women at the upcoming FIH Hockey Women's Nations Cup. Experience world-class international hockey right here at home as top teams battle for glory. Plus, you could win a double pass to the games. Simply listen for the cue to call from your announcer, then text hockey to 5599 to enter. Stick with Hum and get behind our Vantage Black Sticks women.
4: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार.
5: क्यों, क्या हुआ?
4: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था, $20,000 चाहिए थे. बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत. एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
1: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 0800 LOGIC G, दैट्स 0800 564 424.
6: Sun Tours के सक्सेसफुल मार्च 2026 बेस्ट ऑफ इंडिया टूर के बाद अब बुकिंग्स ओपन है फॉर बेस्ट ऑफ इंडिया सितंबर 2026 टूर. दिल्ली की शॉपिंग, आगरा का ताजमहल, जयपुर अमेर फोर्ट और एलिफेंट राइड, एलपी में हाउस बोट का एक्सपीरियंस और आमचे मुंबई की बॉलीवुड स्टूडियोज विजिट विद ऑल बफे मील्स, फ्लाइट्स और फाइव स्टार अकोमोडेशन, ऑल फॉर जस्ट $8,500 पर पर्सन. कॉन्टेक्ट अनिल ऑन 0800 4 Sun Tours, दैट्स 0800 4 7 8 6 8 6. लिमिटेड स्पेसेस.
7: Roadside drug testing is here. New Zealand police can now test drivers with a saliva test anytime, anywhere. This screens for the recent use of drugs, including cannabis, methamphetamine, MDMA, and cocaine. Learn more at police.govt.nz/drugdriving.
8: Turn up the heat with a Subway 6-inch spicy meal from just $16.50. Get a new peri-peri style chicken sub or a Korean style barbecue steak sub, a drink and a cookie. Subway, good food, good value. Order yours now. T's and C's apply.
9: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
10: Indelible Homes, your building expert.
11: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है. जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है. हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है. We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and On-Site Cremations, 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 0927-88600.
12: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
1: Office Shoutout.
0: तो गुजराती किचन वगार बाय टीना, वहाँ से रिस्पांस आया है. उन्होंने कहा, भाई मैं आपको माउंट रॉस्कल से सुन रही हूँ. आई एम आल्सो लुकिंग आफ्टर माय ग्रैंड चाइल्ड. सो हेलो हेलो, हाउ आर यू? एंड आपका बहुत बहुत स्वागत है हम पर. इसके साथ साथ अभी अभी आपने थोड़ी देर पहले सुना FIH हॉकी वुमेन्स नेशन कप जो है, जो कि नॉर्थ हार्बर में आज से शुरू हो चुका है टिल 21st of June. और स्टिक विद हम एज व्हाट आई कैन से. बट ये जो ब्लैक स्टिक जो है ना वुमेन के, ये हो सकता है ये टाइटल हमारे अपने न्यूजीलैंड में इसको सस्टेन कर ले, इसको रिटेन कर ले. तो भाई 8 countries खेलने वाली, वर्ल्ड क्लास हॉकी होने वाला है. इट्स फर्स्ट टाइम आई थिंक आफ्टर सो मेनी इयर्स दैट वी विल बी प्रॉब्ली गेटिंग अ चांस टू सी समथिंग लाइक दिस. ऑलराइट, सो नाउ इज द टाइम जहाँ पे मैं एक डबल पास देने वाली हूँ. आपको हॉकी लिख के भेजना है 5599 पे, अपना नाम लिखे और बताइए कहाँ से सुन रहे हैं ताकि मैं आपका नाम ऐड कर सकती हूँ इन द ड्रॉ. एंड टू टॉप इट ऑल, इफ इन केस यू वांट टू बाय मोर टिकट्स, देन hockeynz.flicket.co.nz इज द वेबसाइट.
12: टॉप हिट ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स.

0: beat of Bollywood.
1: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
2: या हमारी कोई ब्रांच तो है नहीं, बट एक बात तो ज़रूर है कि थोड़ी देर बाद मैं ड्रीम का कोई आपके कोई ड्रीम है ऐसी जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, डेफिनेटली आप मुझे बता सकते हैं एंड वी विल सी व्हाट वी कैन थिंक अबाउट एंड कम आउट विद. तो जल्दी कीजिए क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा ही टाइम है ताकि मैं उस चीज़ को आपके लिए डिटेल्स निकाल सकूँ.

Better. Eat better, live better. But आपको एक बात बता देती हूँ. एक puppy's prediction for New Zealand's upcoming World Cup game जो है took an unfortunate turn this morning, जहाँ पे a dog went to the toilet under the live TV को टेलीकास्ट चल रहा था. सो यहाँ कुछ ऐसा हुआ जहाँ पर एक गोल्डन रिट्रीवर था, वो स्टूडियो में उनको लाया गया था इन सम प्लेस, एंड फिर वहाँ पे वो जो डॉग could predict the outcome of New Zealand's opening World Cup match against the Iran match. तो ये काफ़ी एक टर्न अलग ही ले गया, एंड ये पपी डैड जो थे एक्चुअली इन्जॉय कर रहे थे इस चीज़ को. बट कभी कभी यू नो वी रियली cannot have these kind of things going on. But यही बताया जा रहा था कि ये जो ऑल वाइट्स का मैच है उसमें क्या हो सकता क्या नहीं हो सकता. तो ये कोशिश थी कि इन एनिमल्स के थ्रू इस चीज़ को पता लगाया जाए. बट थिंग्स डिडंट हैपन, थिंग्स डिडंट वर्क आउट. बट मेरे हिसाब से ये है दैट अगर हमें किसी पपी को लेके ही ऐसी कुछ प्रिडिक्शंस करनी है, आइडिया क्रिएटिव हो सकता है, बट शुड यू हैव लाइव एनिमल्स इन अ स्टूडियो और नॉट. वो डॉग जो था वो जाके डेस्क के अंदर बैठ गया. अब क्या करें, अब भाई जब वर्ल्ड कप ये चालू हुआ तो उस समय क्या हुआ क्या नहीं हुआ, फॉरगेट दैट पार्ट. बट आई थिंक द इंटेंसिटी ऑफ वॉचिंग अ मैच वुड बी मोर. आप पप को देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, गॉड नोज. आई मीन दिस काइंड ऑफ थिंग्स कीप हैपनिंग. अभी सुनेंगे आप थोड़ी देर बाद इस बारे में, हर जगह ये बात फैलने वाली है.

0: हम के दिन चैट 20 को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी, बसेस बिलबोर्ड्स ट्रेन स्टेशन स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव कॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755। मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हो या आप फ्यूचर की तरफ शिफ्ट कर रहे हो, स्मार्ट चॉइस अब सिंपल है। वे सिटी GWM हैवल, हैवल का हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड रेंज पे डिस्काउंट्स और सिर्फ 4.95% फाइनेंस ऑफर्स। आज ही वे सिटी ऑटो ग्रुप पहुँचे और जिमी टेलर और उनकी टीम से मिले। लिमिटेड टाइम ऑफर, टीज एंड सीज अप्लाई। फॉर मोर इन्फो विजिट वे सिटी ऑटो ग्रुप .nz और सर्च फॉर वे सिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल्स।
2: दादी के हाथ की चूरी हो या माँ के हाथ के पराठे, सबका फेवरेट हलवा हो या तवे पे फूली हुई रोटी, हर याद में बसी है कशिश चक्की फ्रेश आटा की वही मीठी खुशबू जो दिल भी जोड़े रिश्ते भी। ईट बेटर लिव बेटर नाउ विद कशिश चक्की फ्रेश आटा एंड मल्टीग्रेन आटा, अवेलेबल इन ऑल लीडिंग स्टोर्स नेशन वाइड। www.kashishfoods.co.nz।
3: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
4: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
3: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800-46-26-26 today.
4: Available at selected branches. T's and C's apply.
5: JB Hi-Fi is celebrating its stunning new store at Newmarket on the 25th of June from 5 p.m. with grand opening specials for 4 hours only. Don't miss out on huge savings only at JB Newmarket, Thursday, 25th June, 5 to 9 p.m. JB, you've done it again.
6: Ready to escape and get rewarded with Singapore Airlines? Book your getaway with special fares to destinations across Europe, Asia and beyond and receive a bonus $150 Prezi card when you book online using your MasterCard. That's an extra $150 to spend in Singapore, Thailand, Vietnam, Delhi, London, and more. Escape the cold and book your 2026 getaway today at singaporeair.com. Hurry, deals end June 26. T's and C's apply.
7: You already share a group chat, now you can share a discount too. Get 50% off Spark group plans for 6 months when you sign up to an eligible pay monthly leader plan. New Spark mobile customers only. T's and C's apply.
8: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better. Dream Diary.
9: All right. Dream Diary में आज आपने बताया that आपको सपना आया that you became a pilot. अरे वाह, fantastic. अच्छा, इससे पहले कि मैं उड़ान भरूं, मैं पहले थैंक यू कहना चाहती हूँ सपना from Browns Bay, North Shore. Have a great day, Kashika ji. Thank you so much, Sapna. This means a lot to me. And six word story के लिए भी आप लोग तैयार हैं तो अगले घंटे पर 6 word की story भी मैं लेकर आऊँगी. Coming back to flying, अगर आप pilot बन के आपको सपना आया है, you're flying a plane, it's a very positive dream symbol. क्योंकि इससे क्या होता है, आपको पता है, your attention is towards your नेक्स्ट डेस्टिनेशन. और ये जो प्लेन होता है, हमें एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन तक लेकर जाता है. और करेंटली आपकी डेली लाइफ के हिसाब से लगता है कि कुछ ऐसा आपके साथ चल रहा है जो हाँ, आप शायद अपनी नेक्स्ट स्टेज ऑफ जर्नी के लिए एकदम से तैयार हो चुके हैं. ऐसा होता ही होता है. एंड हाँ, आपका टेक्स्ट अभी आया, आपने कहा आई कीप ऑन हैविंग अ ड्रीम वेयर I'm an angel and I'm flying and it's just the best feeling. But then I always fall and my wings fall off and my halo dissolves and I wake up. Oh, yes, बहुत सुंदर sound करता है, बहुत frightening भी sound करता है. But I'll come back to you about this soon. But thank you so much. आपका text आया, आप लोगों का text आया. And yes, flying a plane could probably be important कि आपका direction जो है, you're high up in the clouds, आप fly कर रहे हैं, आपके कुछ dreams हैं, aspirations हैं. हो सकता है it's taking you to another level of spirituality as well. आप fly up कर रहे थे, down कर रहे थे, ये भी बता सकते हैं आप. Unconsciously आपका mind tune हो जाता है उन चीज़ों के साथ साथ. अगर आप लो फ्लाई कर रहे हैं टूवर्ड्स द ग्राउंड, इट रिप्रेजेंट्स योर स्ट्रेंथ और आपका जो आपका डिटर्मिनेशन है वो इन योर लाइफ. इफ यू आर फ्लाइंग बैकवर्ड्स, वो सजेस्ट करता है दैट आप किसी पास्ट को दोबारा से यू नो रिलिव करना चाहते हैं. गुड मेमोरीज, गुड एक्सपीरियंसेस. हाउ एवर, आपको अगर लगता है कि आप किसी सिटीज, बिल्डिंग्स, हाउसेस के पास से गुजर रहे हैं, तो ये कॉमन ड्रीम्स होती हैं जहाँ पे जो आपको लगने लगता है आप सुपरमैन बन चुके हैं. ये ड्रीम्स हमेशा सजेस्ट करते हैं यू हैव कंट्रोल ओवर योर माइंड एंड योर सोल. ड्रीम्स जैसे कि आपको लगता है आप बर्ड की तरह फ्लाई कर रहे हैं, एक्चुअली अगर ये देखा जाए इट्स अ फोकस ऑन योर ओन पर्सनल फ्रीडम एंड योर वेल बींग एंड बींग अ फ्री स्पिरिटेड पर्सन. देखिए कितने सारे कॉम्प्लीमेंट्स आप तक पहुंच चुके हैं अब.

सो जब मैं बात कर रही हूँ अबाउट अ सॉन्ग जो मैं दिल से माफ कीजिएगा बताई दिया फिल्म मूवी का सॉन्ग थ्रोबैक में जो आपके लिए गाना लेकर आ रही हैं, इसको एक एवरेज रिस्पांस मिला था इंडिया में जब ये फिल्म रिलीज हुई थी, बट इसको ओवरसीज बहुत सक्सेस मिला था. इट वॉज स्क्रीन एट द एरा न्यू होराइजन फिल्म फेस्टिवल एंड हेलेंसकी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल. ये फिल्म जो थी इसने नेट पैक अवार्ड जीता था एट द बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, 2 नेशनल फिल्म अवार्ड्स और 6 फिल्म फेयर अवार्ड्स. अब ये इंटेंस पोलिटिकल एजेंडा था इस फिल्म का, जहाँ पर यहाँ पे जो ट्रेल्स थी ऑफ द एसमीज ऑन द इंडिया चाइना बॉर्डर, ये एक लव स्टोरी थी जो कोइंसाइड कर रही थी विद द 50th इंडिपेंडेंस एनिवर्सरी, और ये एक मेजर फैक्टर बन गई जिसकी वजह से एक सक्सेसफुल फिल्म बन चुकी थी, पर्टिकुलरली अमंग्स द साउथ एशियन डायस्पोरा इन द वेस्ट. ये पहली इंडियन फिल्म बनी जो इंटर कर गई थी इन द टॉप 10 इन द यूनाइटेड किंगडम बॉक्स ऑफिस चार्ट. और कई महीने की रिलीज के बाद 1998 के बाद ये फिल्म जो थी इसको 5 स्क्रीन्स में फिर से रिलीज़ किया गया, 5 टाइम्स पर डे ऑन एन एवरेज 3,000 स्पेक्टेटर्स वर्ल्ड वाइड. और वेस्ट लंदन में भी इस फिल्म को क्या रिस्पांस मिला था. भाई मैं बातें कर रही हूँ अबाउट द मूवी दिल से. दिल से एक ऐसी फिल्म थी जो बहुत लोगों को शायद अच्छी नहीं लगी, लेकिन बहुत लोगों को बहुत पसंद भी आई. इसके गाने अमेजिंग आई थिंक, एक एक सॉन्ग इस फिल्म का अमेजिंग था. सो मणि रत्नम जी को इसके लिए अवार्ड मिला, सिनेमाटोग्राफी के लिए इस फिल्म को अवार्ड मिला, ऑडियोग्राफी के लिए इस फिल्म को अवार्ड मिला. साथ प्रीति जिंटा फॉर द बेस्ट डेब्यू, AR रहमान फॉर द बेस्ट म्यूजिक, गुलजार फॉर द बेस्ट लिरिसिस्ट, बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर सुखविंदर सिंह फॉर छैया छैया. और इस तरह के अवार्ड्स इनको काफ़ी सारे मिले. मेल प्लेबैक सिंगर में छैया छैया के लिए स्क्रीन अवार्ड्स में भी इनको मिला, मगर हम बात कर रहे हैं इस समय इस ब्यूटीफुल से ट्रैक की. चलिए दिल से का गाना सुनते हैं.

0: driving you home.
1: The Drive Show with Sandy and Rusby.
2: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
3: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
4: वो भी आई लव यू वाला.
3: मैडम ने पकड़ लिया भी यहाँ पे किसने बनाया. वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा.
4: अच्छा आप दिलजीत तो
3: आए आए बताओगे यार.
1: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manuko and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jeku.
5: Sona Sansar Papa Toto ke gehno ke saath, aap bhi chamak jayenge.
6: Chudi, kangan, payal, bali, jhumke aur chokar. ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन्स मिलते हैं, समझे?
5: सोना संसार पापा ट्विटर, जहां था वहां अभी भी है. शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स, पापा ट्विटर.
7: सोना संसार, 138 ग्रेट साउथ रोड, पापा ट्विटर. सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर गोल्ड.
8: Oh, ta-da. Oh, yeah.
9: South Auckland's buses just became a lot better.
8: Grey South Road, now even greater.
9: With better bus routes, more frequent buses, and more.
8: Weymouth Road, way better buses.
9: Search AT, Better South Auckland Buses for more.
10: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है. जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है. हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है. वी आर ऑकलैंड्स वन स्टॉप फ्यूनरल सर्विस प्रोवाइडर वेयर रिस्पॉन्सिबल ऑप्शंस एंड प्राइसेस आर ऑफर्ड. एंड्स फ्यूनरल होम एंड ऑन साइट क्रेमेशंस, 11 बोल्डरवुड प्लेस, बीरी. कॉल 24/7 ऑन 0927 88 600.
11: Buddy, no! Happy is finding the only mud puddle in the park. Animates, we make happy happen.
12: A story of love, memory and longing against the backdrop of the partition of India.
13: ये हो सकता है अपने दिल के अंदर एक लड़की को रखना जिसे 78 years से देखा तक नहीं.
12: Director Imtiaz Ali's romantic period drama मैं वापस आऊंगा, starring Diljit Dosanjh, Nasiruddin Shah, Shalmari Bagh and Vedang Raina.
13: ये प्यार जहर की तरह होता है पता है, इसकी एक भी बूंद अंदर रह गई ना तो ये आखिरी समय में चैन से मरने भी नहीं देता.
12: मैं वापस आऊंगा, now showing in cinemas.

0: Distribution partner Forum Films. Rating TBC. Time check. To you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
1: Morning, I'm Glenn Stewart with the latest at 11. Starting overseas, and Iranian officials have also now confirmed a peace deal has been approved with the US. President Trump confirmed the news earlier on Truth Social, telling ships to start their engines and let the oil flow, with the Strait of Hormuz being reopened. Iran's state media reports the country's deputy foreign minister is saying the deal includes Lebanon. It's expected to be signed later on this week. Back here, and a spotlight has been shone on this year's World Elder Abuse Awareness Day. Age Concern supported over 3,000 cases last year. CEO Karen Billings says many are still going under the radar.
2: Really just a great opportunity to get the issue in front of people, in front of people's minds.
1: A facelift is underway for an artificial beach in Wellington Central. The council shifts in imported sand that makes up Oriental Bay. Marine and Coastal Project Manager Joel De Beer says there's unwanted build-up.
3: Some is lost and some might be walked off or in people's talks, and we do replenish it once every 10 years.
1: And back overseas, the European Union is officially considering whether to welcome Ukraine and Moldova. Figureheads are going into the first round of deliberations in Luxembourg tomorrow. In sport, a late goal has seen Japan draw 2-2 with the Netherlands at the Football World Cup in Northern America. Earlier, football giants Germany flexed their muscles with a 7-1 win over Curaçao. Manager Julian Nagelsmann.
4: After the game, there was a song, "The Train Has No Brakes." It's a German song. And we tried to do that, to move on with no brakes, and was at least not that bad.
1: Football updates brought to you by Hisense. And in golf, Kiwi Ryan Fox has come up short in his title defence at the Canadian Open. He tied for 8th behind Bud Cawley.
0: Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill.
5: हम पर शोक सूचनाएं आप तक लाते हैं. Anne's Funeral Home and On-Site Cremations.
6: सोचित किया जाता है कि मोटा गुजरात के स्वर्गीय भीकू भाई टेलर की पत्नी महेंद्र चंद्रकांत सुशीला बेन हेमलता बहन और चंद्रिका की माँ लिनफील्ड की मंजुला बेन भीकू भाई टेलर की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई. अंतिम संस्कार कल दोपहर 1 बजे एन्स फ्यूनरल होम में किया जाएगा. ज्यादा जानकारी के लिए 0274202441 पर आप संपर्क कर सकते हैं. सूचना दोबारा सुने. मोटा गुजरात के स्वर्गीय भीकू भाई टेलर की पत्नी महेंद्र चंद्रकांत सुशीला बेन हेमलता बहन और चंद्रिका की माँ लिनफील्ड की मंजुला बेन भीकू भाई टेलर की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई. अंतिम संस्कार कल दोपहर 1 बजे एन्स फ्यूनरल होम में किया जाएगा. जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 0272022441 पर संपर्क कर सकते हैं. शैलेंद्र सैम नीव इश्वनी के पिता बिंदमती के पति सिंकाटोगा फिजी के भूतपूर्व निवासी तथा सिंग्स लॉयर के मंगल सिंह की मृत्यु हो गई है. अंतिम संस्कार बुधवार 17 जून को दोपहर 1 बजे एन्स फ्यूनरल होम में किया जाएगा. ज्यादा जानकारी के लिए 0216631 पर आप संपर्क कर सकते हैं. सूचना दोबारा सुने. शैलेंद्र सैम नीव इश्वनी के पिता बिंदमती के पति सिंगाटोगा फिजी के भूतपूर्व निवासी तथा सिंग्स लॉयर के मंगल सिंह की मृत्यु हो गई है. अंतिम संस्कार बुधवार 17 जून को 1 बजे दोपहर एन्स फ्यूनरल होम में किया जाएगा. ज्यादा जानकारी के लिए 0216631 पर आप संपर्क कर सकते हैं. लाउटका फिजी के भूतपूर्व निवासी शक्ति एंड कंपनी के मालिक न्यूलिन ऑकलैंड के स्वर्गीय शक्ति प्रसाद की पत्नी माला रक्षा और सीमा की मां सत्यवती प्रसाद की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई. अंतिम संस्कार आने वाले शुक्रवार 19 जून को 1 बजे दोपहर एन्स फ्यूनरल होम में किया जाएगा. जानकारी श्रद्धांजलि के लिए आप 0216475200 पर संपर्क कर सकते हैं. सूचना दोबारा सुने. लाउटोका फिजी के भूतपूर्व निवासी शक्ति एंड कंपनी के मालिक न्यूलिन के स्वर्गीय शक्ति प्रसाद की पत्नी माला रक्षा और सीमा की मां सत्यवती प्रसाद की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई. अंतिम संस्कार शुक्रवार 19 जून को दोपहर 1 बजे एन्स फ्यूनरल होम में किया जाएगा. ज्यादा जानकारी के लिए 0216475200 पर आप संपर्क कर सकते हैं. सूचित किया जाता है कि रवि बाफीजी के भूतपूर्व निवासी माउंट वेलिंगटन के ऑकलैंड के रामकरण के भाई मैंगरी के नवनीत करण पिंकी नीली और पूनम के पिता मैंगरी ऑकलैंड के जय करण प्रसाद की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई. अंतिम संस्कार बुधवार 17 जून को दोपहर 1 बजे मैंगरी लॉन सिमिट्री में किया जाएगा। जानकारी श्रद्धांजलि के लिए 0210-834-3575 पर आप संपर्क करें। सूचना दोबारा सुने। रवि बा फिजी के भूतपूर्व निवासी माउंट वेलिंगटन ऑकलैंड के रामकरण के भाई, मैंगरी के नवनीत करण, पिंकी, नीली और पूनम के पिता मैंगरी ऑकलैंड के जय करण प्रसाद की मृत्यु हो गई है। अंतिम संस्कार आने वाले बुधवार के दिन दोपहर 1 बजे मैंगरी लॉन सिमेट्री में किया जाएगा। जानकारी श्रद्धांजलि के लिए 0210-834-3575 पर आप संपर्क करें।
5: शोक सूचनाएं वीकडेज पर सुबह 6 तथा 11 बजे, शाम 6 बजे और वीकेंड्स पर दोपहर 12 बजे पर प्रसारित की जाएगी।

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: The highs of 17, overnight temperature of 10. आज का फोकस बताया जा रहा है क्लाउडी डे रहेगा. आइसोलेटेड शावर्स एक्सपेक्टेड है. सनसेट 5:12 पे बताया जा रहा है. इट फील्स लाइक 14 डिग्रीज राइट नाउ.

0: जो कि आ रही है।
1: My time with Kashika.
2: नमस्कार एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू पीपल। हाउ आर यू? हाउ इज एवरीथिंग गोइंग ऑन? वैसे आपकी कम्युनिटी में क्या खास हुआ? आपने इस कम्युनिटी में कुछ जरूर किया होगा, लेकिन buzz@hamfm.com पे आप हमें अगर ईमेल भेजते हैं तो, और कोई फ्री इवेंट है आपकी कम्युनिटी में, तो डेफिनेटली हम चाहेंगे कि हम आपकी कम्युनिटी के लिए आपकी आवाज़ ज़रूर बन जाएं। तो buzz@hamfm.com पे आप हमें ईमेल ज़रूर कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ आपको कई ऐसे मौके हम देते हैं जहाँ पे आपको जीतने जिताने के भी मौके मिलते हैं, और ये जीतने जिताने के मौके आपके लिए हम कंटिन्यूसली लेके आते चले जाते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। वैसे बातें करेंगे अबाउट रेस्क्यू मी, रिसाइकिल में आज किस चीज़ को रिसाइकिल करेंगे, किस चीज़ को रेस्क्यू करेंगे, चलो वो बातचीत हम फिर करेंगे। लेकिन सिक्स वर्ड स्टोरी भी आपकी जल्दी जल्दी पहुंच जानी चाहिए, इसलिए मैंने अभी पहले ही आपको बता दिया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में और आप सबको याद करते हैं हम प्लेइंग बॉलीवुड बिगेस्ट हिट्स में। मैं काशिका आपका साथ निभा रही हूँ, कशिश फूड्स के सौजन्य से आपके लिए माई टाइम लेकर आ जाती हूँ मंडे टू फ्राइडे 10 से 12 बजे के दरमियान।

0: लिव बेटर और ये मेंस हेल्थ वीक है जो 15 जून से 21 जून तक चलने वाला है. इट्स अ टाइमली रिमाइंडर. एक छोटा सा चेंज अगर आप कर लेते हैं ना, तो हो सकता है कि आप उन्हें, अब वो मेन जो है उन्हें इग्नोर ना करें. सो डेफिनेटली ट्राई एंड सी व्हाट आर द कॉमन वार्निंग साइंस जो मोस्टली जो मेन होते हैं वो इग्नोर करते हैं. लो एनर्जी, ग्रम्पीनेस, लैक ऑफ मोटिवेशन, जनरल मलेस, यानी कि मतलब एक यू नो दे आर नॉट पेइंग अटेंशन टू थिंग्स, कभी जॉइंट पेन्स, कभी स्टिफनेस, राइट काइंड ऑफ एन एटीट्यूड, इस तरह से चीज़ें होती हैं. एक जो हेल्थ हैबिट होती है जो मोस्ट प्रोबेबली हमेशा ओवरड्यू रहती है वो है एनुअल वॉफ. एनुअल वॉफ गाड़ी का होता है लेकिन हमारा भी हो सकता है, स्पेशली फॉर मेन. तो डॉक्टर्स के पास जाके ब्लड प्रेशर, वेस्ट सरकमफेरेंस का, आपकी पेट कितना बड़ा छोटा है, ब्लड टेस्ट, ये सब चीज़ें कराना इंपॉर्टेंट है. एक कॉन्वर्सेशन आपकी जीपी या आपके नर्स के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है. इट बिकम्स मीनिंगफुल और ये बेसिक नंबर से आपको पता चल जाता है यू आर ऑन द राइट ट्रैक. ऐसी चीज़ें अगर आप करते रहें, एक अपॉइंटमेंट अगर बुक कर लें. बट मोस्टली क्या होता है, कुछ लोग होते हैं एक फिटनेस भी अपनी रखने के लिए नहीं सोचते हैं. एक 10 मिनट वॉक जो है आपको काफ़ी हद तक हेल्प कर देती है. एंड द बेस्ट थिंग इज दैट यू शुड आस्क देम. और एक्चुअली अगर ये देखा जाए तो यू शुड बी क्यूरियस टू नो कि भाई क्या किया तुमने, क्या हुआ, टेक सम इंटरेस्ट. ये कभी कभी बहुत लो खेलते हैं मैन, और इन्हें हमें इनकरेज करना होता है. एंड कोशिश कीजिए कि चार ऐसी कोर चीज़ें होती हैं, 4 things: ईट, मूव, स्लीप, लाफ. ईट, मूव, स्लीप एंड लाफ. अगर इन चीज़ों को, चार चीज़ों को आप याद रखें तो देखिए घर में और खुशहाली बढ़ेगी. और एक मेन मेंटल हेल्थ जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है. अच्छा, इनका हंसना हंसाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. और जब मैं हंसने हंसाने की बात करती हूँ तो आपको बता देती हूँ, ऑकलैंड तैयार हो जाइए, फेसबुक के पेज पर पहुँच जाइए. आपके लिए कृष्णा अभिषेक एंड राजीव ठाकुर लाइव परफॉर्म करने वाले, पहली बार न्यूजीलैंड में आने वाले हैं और VIP सीट्स जो हैं ऑलरेडी बिक चुकी हैं. चांस मिस आउट मत कीजिए इन कॉमेडी लेजेंड्स को देखने के लिए. एक लाफ आउट लाउड वाला मोमेंट आपका 18 जुलाई को हो सकता है विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर में. bookmyevent.co.nz के जरिए टिकट खरीद सकते हैं. कोई ट्रबल है ऑनलाइन या आफ्टर पे का ऑप्शन चाहते हैं तो 02104327200 पर धर्मेंद्र राम से आप बातें कर सकते हैं. नाउ किस तरह से आप इसे जीत सकते हैं पास को, हमारे फेसबुक के पेज पे पहुंच जाएं, शो अस योर फन साइड, एक फोटो कैप्शन कीजिए और आपका नाम हम ड्रॉ में ऐड कर देंगे फॉर अ डबल पास. है कि नहीं इंटरेस्टिंग, है ना? आई हैव गॉट अ स्माइल ऑन योर फेस ऑलरेडी. चलिए जाइए फेसबुक के पेज पे, क्योंकि कृष्णा अभिषेक राजीव ठाकुर लाइव परफॉर्म करने वाले हैं द ग्रेट कॉमेडी नाइट. कृष्णा अभिषेक एंड राजीव ठाकुर कमिंग फर्स्ट टाइम टू ऑकलैंड और इनका हंस के स्वागत करेंगे.
1: वो दिन जब मोहब्बत खतों में होती थी,
2: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना हो,
1: और गानों में जब

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता, महसूस

0: रिवाइंड सिर्फ रोवा पर।
1: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार।
2: क्यों, क्या हुआ?
1: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था, $20,000 चाहिए थे। बैंक गई तो इतने ही डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत। एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स। फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में। गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है।
3: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री। कॉल 0800 LOGIC G, दैट्स 0800-564-424।
4: दादी के हाथ की चूरी हो या माँ के हाथ के पराठे, सबका फेवरेट हलवा हो या तवे पे फूली हुई रोटी, हर याद में बसी है कशिश चक्की फ्रेश आटा की वही मीठी खुशबू, जो दिल भी जोड़े रिश्ते भी। ईट बेटर लिव बेटर नाउ विद कशिश चक्की फ्रेश आटा एंड मल्टीग्रेन आटा, अवेलेबल इन ऑल लीडिंग स्टोर्स नेशन वाइड। www.kashishfoods.co.nz।
5: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम।
1: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
5: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
1: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
5: और दैट्स नॉट गुड। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
6: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18।
7: होम लोन के साथ थोड़ा कैश भी पाना चाहते हैं? नया होम लोन लेना हो या मौजूदा लोन का रिव्यू करवाना हो, स्क्विरल आपको दिलाएगा एक ऐसी जबरदस्त डील कि आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले। जानिए पावर ऑफ द स्क्विरल इफेक्ट, squirrel.co.nz।
8: Bunnings Trade is here to help you get indoor projects sorted with 134 Trade. For stock queries, order and delivery updates, quick quotes and pricing, or general inquiries, call the team on 0800 134 872. Bunnings Trade, helping business is our trade.
9: Oakland, तैयार हो जाओ एक सूफी रात के लिए। Once upon a time with the legendary Rahat Fateh Ali Khan live in concert along with Shah Zaman Ali Khan, Saturday 25th July at the Trust Arena. Book your tickets on drytickets.co.nz. For sponsorships, call Karam Hundal on 0275146477.

0: मैं बिना माइक ऑन के बात कर रही हूँ. ऑल राइट, तो सिक्स वर्ड स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ. इन्होंने कहा, वेल आई थॉट इट वॉज फनी. ओके, आई ऑल्सो थॉट इट वॉज फनी. आई थिंक दोज पीपल वर फनी. जब मैं बात करती हूँ कृष्ण अभिषेक एंड राजीव ठाकुर, चलिए ये तो फनी है. एक बात तो है जहाँ पे मैं आई एम नॉट गुजराती, बट आई लव टू सी गुजराती प्लेस. आई लव द कल्चर ऑल्सो, वेरी रिच, वेरी ब्यूटिफुल, वाइब्रेंट, खाना इज अमेजिंग. तो ऐसे में सिद्धार्थ रंधेरिया का मैंने एक जो पहला प्ले आया था वो देखा था. अब ये दोबारा आ रहे हैं एंड सिद्धार्थ रंधेरिया का गुज्जू भाई प्रोडक्शंस आपके लिए लेकर आ रहे हैं. वहाँ पर आपके लिए परफॉर्म करने वाले हैं कुछ हिलेरियस मिसअंडरस्टैंडिंग्स, अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट, हंसने हंसाने का मौसम जो है वो आपके लिए गुजराती ह्यूमर में ये लेकर आने वाले हैं. पूरी फैमिली का एंटरटेनमेंट है जहाँ गुज्जू भाई ने एक्सचेंज ऑफर, आप जाकर देख सकते हैं. लेजेंडरी सिद्धार्थ रंधेरिया परफॉर्म करने वाले हैं 3 जुलाई के दिन 7:30 बजे शाम को एट द विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर. यू कांट मिस दिस. ही, उनको आप देखते हैं, ही इज गॉट सच अ बिग फैन फॉलोइंग. उनका नाम सुनते ही लोग कहते हैं अरे सिद्धार्थ रंधेरिया आ रहे हैं. तो भाई सिद्धार्थ रंधेरिया गुज्जू भाई प्रोडक्शंस के साथ एक नया ट्विस्ट, एक नई कहानी फुल ऑफ लाफ्टर लेकर आने वाले हैं गुज्जू भाई ने एक्सचेंज ऑफर विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर में. premierTickets.co.nz के जरिए आप जाके ये टिकट्स भी खरीद सकते हैं. 3 जुलाई के दिन 7:30 बजे विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर में ये परफॉर्म करेंगे. डोंट मिस दिस आउट. आई नो ये टिकट्स बहुत जल्दी बिकने वाली हैं. फिर मत कहिएगा काशिका तुमने हमें रिमाइंड नहीं कराया. चलो भाई मैंने आपको रिमाइंड तो करा ही दिया है. premierTickets.co.nz पर जाइए और जाके टिकट जरूर खरीदिए.
1: टॉप हिट ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स. बिल्ड योर ड्रीम्स.

अनफिल्टर्ड ड्राइव जो है एक बहुत ही ऊंचे मुकाम पे पहुंच चुका है। 3 साल हो गए इनको एशियन पॉडकास्ट का अवार्ड जीते हुए, बड़ी मैट्रिक है। लेकिन अभी बता देती हूँ, इनके कई कई टॉपिक्स ऐसे हैं जो आप बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। मैं बात कर रही हूँ अबाउट थैलेसीमिया, जहाँ पर ये इम्पैक्ट साउथ एशियन कम्युनिटी को पड़ जाता है। एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया विद निवेदिता, जहाँ पर इसके बारे में बातचीत की गई, द रोल ऑफ जेनेटिक्स, फैमिली हिस्ट्री, कॉमन सिम्टम्स के बारे में, किस तरह से आप रेगुलर मॉनिटरिंग कर सकते हैं चीज़ों की, ongoing support of patients and family के लिए, और क्या एक स्टिग्मा है जो हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसके बारे में बहुत ही खूबसूरत बातचीत की गई। 5599 पे आप टेक्स्ट कर सकते हैं अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, और ब्रेकफास्ट के कुछ प्यारे हसीन पल अगर आप सुनना चाहते हैं दोबारा से, तो डेफिनेटली आप 5599 पे BF लिखकर भेज सकते हैं एंड ड्राइव लिख के भेज सकते हैं टू हेयर कॉन्वर्सेशन ऑन अनफिल्टर्ड ड्राइव विद रुस्पे एंड सैंडी।

0: Kashika.
1: Wah.
2: How?
1: I'm good.
3: आज मुझे लगता है मैं कुछ प्लांट्स के बारे में ही बात करूं. और जब मैं बात करती हूं प्लांट्स के बारे में, डू यू नो, एक ऑकलैंड के डेवलपर थे जिनको कन्विक्ट किया गया क्योंकि इन्होंने कुछ प्रोटेक्टेड ट्रीज जो थे हटा दिए. अब ये एक कंस्ट्रक्शन साइट थी जहां 6 टेरेस ड्वेलिंग जो थी, दो बिल्डिंग की प्रॉपर्टी नॉर्थ शोर की तरफ इन द मिल्फर्ड ऑन द सिटी जो नॉर्थ शोर की तरफ है वहाँ पर था. काउंसिल ने इनको कंसेंट ग्रांट कर दिया था. इसके बाद ये कंसेंट ने इनको अलाउ किया कि आप रिमूव कर सकते हैं या ऑल्टर कर सकते हैं अप टू 148 यू नो पार्ट ऑफ द वेजिटेशन विद इन 10 मीटर्स ऑफ द स्ट्रीम जो प्रॉपर्टी के बगल से निकल रही थी. इट केम विद द कंडीशन कि सेवरल ट्रीज मस्ट बी रिटेन्ड. ओके, नाउ हियर मी आउट. ये एरिया जो है, अभी मैं फोटो भी देख रही हूँ इसकी, 2023 में ऑकलैंड काउंसिल ने इन्होंने एडवाइस किया एंड उन्होंने कहा चलो काम शुरू कर देते. द थिंग व्हाट हैपेंड वाज, इसकी मीटिंग के बाद मीटिंग से पहले ही वेजिटेशन को क्लियरेंस उन्होंने अपने आप ही कर दी. काउंसिल के एक मेंबर ने जब विजिट की प्रॉपर्टी तो उन्होंने डिस्कवर किया 3 ट्रीज जो थे जिन्हें रिटेन करना था उन्हें हटा दिया गया. इमेजिन. एंड द 4th ट्री वाज द मैच्योर्ड पोहोटू कावा ट्री जो बहुत ज़्यादा डैमेज्ड पाया गया. नाउ काउंसिल ने इन्हें चार्ज किया क्योंकि इन्होंने रिसोर्स कॉन्सेंट को फॉलो नहीं किया. अब इस तरह की चीज़ें जब होने लग जाती है ना तो डेफिनेटली यू नो काउंसिल तो एक्शन लेगी ही लेगी. लेकिन जहाँ पे वो जो डेवलपर थे उन्होंने भी काफ़ी बैक एंड फोर्थ किया. बट दिस इज़ वेरी क्लियर, इट वाज वेरी क्लियरली मेंशन कि ये डेवलपमेंट जहाँ पे भी होगा वी हैव टू मेंटेन द ग्रीन्स, जो भी हमारी ग्रीनरी है, जो हमारे पेड़ हैं उनको. सो ये एक बहुत हेफ्टी फाइन सा इन्होंने अभी पे किया. मेक श्योर आपके घर में भी कभी कभी इस तरह के जो पेड़ होता है आपको लगता है काटना है करना है कुछ नहीं, डोंट डू दैट. बट माय सजेशन विल बी टू कॉल द काउंसिल एंड जस्ट टेक एन अपडेट क्योंकि उन्हें एग्जैक्टली पता है आपके कौन कौन से पेड़ आपके कंपाउंड में लगे हुए हैं या आपके आसपास लगे हुए हैं.
4: 80s के रेट्रो गाने

वैसे आज के लिए एक ही बात कहना चाहती हूँ दैट अगर हम कहते हैं किस तरह से हम रेस्क्यू कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं कुछ चीज़ों को, ये देखा जाए तो हमें थिंक ग्रीन, जब आप कभी कभी शॉपिंग कर रहे होते हैं, कोई आप जो जाते हैं कुछ खरीदने के लिए, कोशिश कीजिए प्लांट्स को खरीद के लेकर आइए। अब जब ये प्लांट्स को खरीद के लेकर आते हैं तो समझ लीजिए आपके लिए किस तरह रिसाइकिल होगा, बिकॉज वो ऑक्सीजन छोड़ेंगे, आपके लिए आपके घर के लिए कितना अच्छा रहेगा। सो ये पोल्यूशन से भी फाइट करने का अलग बहुत ही खूबसूरत तरीका है। सो मोस्टली आई डू रिकमेंड दैट आप लोग जब भी जाएँ तो ये प्लांट्स जो आप देखते हैं नर्सरीज में, इन्हें रेस्क्यू करके लेकर आए अपने घर पे, इनको लुक आफ्टर करें, इनको देखिए। जब आप ये बड़े होने लग जाते हैं ना प्लांट्स, तो इनमें जब कोई फ्रूट निकलता है या कोई फ्लावर निकलता है, ओ माय गॉड, द पहला चीज़ जो मैं करती हूँ वो करती हूँ कि इन फूलों के साथ, इन फ्रूट्स के साथ एक सेल्फी ज़रूर लेती हूँ, क्योंकि ये हमारी खुद की मेहनत होती है। और ये सोच सकते हैं अगर इस तरह की मेहनत जब हमारे फार्मर्स करते होंगे तो उन्हें कितनी खुशी होती कि जब उनके खेत खलिहान एकदम से लहलहा रहे होते हैं और यू नो उनकी फसल अच्छी निकल कर आती है, तब वो कितने खुश होते हैं और कितना नाचने लगते हैं। हम एक फूल जब हमारे गार्डन में निकलता है या एक फ्रूट हमारे गार्डन में निकलता है, हम कितने खुश हो जाते हैं उस चीज़ से। और अब बिग थैंक यू टू ऑल आर एग्रीकल्चर पीपल फ्रॉम द एग्रीकल्चर। दिस रिमाइंड्स मी फील्ड्स डे, आपने अगर नहीं गया या गए, कैसा था आपका एक्सपीरियंस बताइएगा ज़रूर।

0: तो चलिए फिर कीजिए स्वीकार कशिका का नमस्कार। रहनो, मैंने जब आई थी स्टूडियो में, जब मैं आई थी तो मैंने आपको थोड़ी बहुत डांट लगा दी थी, किस तरह के सवाल पूछे थे, क्या आपने ये किया, क्या आपने ये किया, क्या आपने ये किया, एकदम यू नो जैसे कोई वो क्राइम पेट्रोल होता है। बट थैंक यू सो मच, आपने मेरा साथ निभाया और अब भी के लिए चलती हूँ, कल सुबह 10 बजे मिलती हूँ। लेकिन जाने से पहले यही कहना चाहती हूँ, आपके लिए हफ्ता आने वाला और भी ज़ोरदार, दमदार और शानदार बना रहे। मुलाकात होगी कल, वो दिन कहलाएगा मंगलवार। आपके दिन को मंगलमय बनाने के लिए मैं सुबह 10 बजे कशिश फूड्स की ओर से माई टाइम लेकर हाजिर ज़रूर हो जाऊँगी। लेकिन अभी के लिए लंच बॉक्स के लिए नॉक नॉक कर रहे हैं केतन, इनका साथ आप जरूर दीजिएगा। सो लुक आफ्टर योरसेल्व्स, दिस इज कशिका साइनिंग ऑफ। हैव अ ग्रेट एंड अ लवली डे अहेड एंड स्टे वार्म। बाय बाय।
1: हेलो 9821026212 BPL। अरे 9820026235 Max Touch।

0: Gotilo, Gotilo.
1: Mid-morning Maza.
2: Breakfast show with Vijay and Pooja.
3: Buri planning se aaye hain. Shat pratishat tumko subah yahan se le jayenge.
4: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
5: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, एंजॉय करते रहे आप। वेस्ट साइड है ना, वेस्ट साइड ऑफ ऑकलैंड है ये। I have lots of fun basically with the cold weather।
4: कौन है?
5: हुनुआ और वेटाकरे।
4: अच्छा हुनुआ वेस्ट में?
5: किधर है हुनुआ?
2: The Breakfast Show with Vijay and Pooja,
6: brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
2: Weekdays 6 to 10 a.m.
7: If you want a good restaurant, you look for a queue. If you're looking for a new show, you watch what everyone's talking about. And when you're choosing a KiwiSaver fund, you look for the smart money. With thousands of Kiwis switching to the ANZ KiwiSaver High Growth Fund, search ANZ KiwiSaver to see if it's right for you. ANZ New Zealand Investments Limited is the issuer and manager of the ANZ KiwiSaver scheme. Find a copy of our product disclosure statement at anz.co.nz.
8: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा। न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काऊ घी। जब खाने में होगी इतनी शुद्धता, इतना स्वाद, तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा।
9: मुझे भी।
8: कशिश प्योर देसी घी, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड। खुशियाँ पकाए, खुशियाँ खिलाए।
10: फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है। हाँ।
11: अच्छा
10: बताओ, तो आड़ा फोकस फोकस साड़ा कुछ नहीं।
11: मिसेस सिंह
12: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
6: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहुहु। कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।
13: Nissan Big Deals सिर्फ 22 जून तक। Select new Navara models पर पाइए $5,000 तक की बचत, plus accessories भी। Take advantage with the big one on X-Trail and discover the Patrol V8, backed by Nissan's up to 10-year warranty. T's and C's apply.
2: हम time check. हम news brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
14: Good afternoon, I'm Glenn Stewart with the latest at midday. The Foreign Minister is welcoming progress towards a US-Iran peace deal. Alexandra Bogdanova with more.
15: Winston Peters calls it a critical first step towards reducing tension in the Middle East. He says countries are still feeling the impacts after the Strait of Hormuz closure. Going forward, Peters is encouraging dialogue and diplomacy. The agreement had been confirmed by US President Donald Trump earlier today.
14: And the UK's Prime Minister is welcoming the peace deal. Sir Keir Starmer